बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

0: हमारी शादी को कितने दिन हो गए?
1: 2 हफ्ते।
0: अब भी बताना होगा क्या जी चाहता है, क्या जी चाहता है, क्या जी चाहता है, क्या जी चाहता है, क्या जी चाहता है।

0: आप सुन रहे हैं CMRX 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM. स्टे ट्यून्ड. बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस. एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो. 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो. नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स. एशियंस 416-438-6568. ईस्ट और वेस्ट, एशियंस is the best.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
0: आप सुन रहे हैं CMRX 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM. स्टे ट्यून्ड.

0: आप सुन रहे हैं CMRF 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM. स्टे ट्यून्ड.
1: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स द केयर.
2: कैशपॉइंट, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स. हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स. दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल. दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू. कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड. अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू. लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000.
3: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त है, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी. अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 months एट 4.69% विद $4,900 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.

0: आप सुन रहे CMR at 9, Monday to Friday, 9 a.m. to 11 a.m. Stay tuned.
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
2: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
1: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Don Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Don Platinum, the better grease getter.
0: आप सुन रहे हैं CMR at 9, Monday to Friday, 9 a.m. to 11 a.m. Stay tuned.

0: आप सुन रहे CMR at 9, Monday to Friday, 9 a.m. to 11 a.m. Stay tuned.
1: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन, तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट ले, कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर।
2: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट। Asians is the best.
3: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.

0: आप सुन रहे CMR at 9, Monday to Friday, 9 a.m. to 11 a.m. Stay tuned.
1: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर अते उन्हां दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तिया नाल आमना सामना इस च साथ देण के चिप्स चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा ऑयल चेंजेस ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी.
2: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.

0: आप सुन रहे CMR at 9, Monday to Friday, 9 a.m. to 11 a.m. Stay tuned.
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
0: कैश पॉइंट, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैश पॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैश पॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैश पॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000, 416-284-7000.
2: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ ही ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere, or visit mymechanicauto.ca.

0: आप सुन रहे CMRR 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM. स्टे ट्यून्ड.
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी. अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
5: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस. एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो. 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो. नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेंस ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स. एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट. Asians is the best.

0: आप सुन रहे CMRX 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM. स्टे ट्यून्ड.
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त है, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी. अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 months एट 4.69% विद $4,900 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
0: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs. Jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers. Reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
2: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें. वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स. नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ ही ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी. और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री. सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील. कॉल 9046-1000 for Midland and Sues and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.

0: आप सुन रहे CMR at 9, Monday to Friday, 9 AM to 11 AM. Stay tuned.
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना. साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर.
5: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर.
4: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स. बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी.

0: आप सुन रहे हैं CMRX 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM. स्टे ट्यून्ड.
1: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन, तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर.
2: Another Don clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Don Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Don Platinum, the better grease getter.
5: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.

this message, eh?

0: आप सुन रहे CMRF 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM. स्टे ट्यून्ड.
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना. साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर. ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर. वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स. बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी.
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Don Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Don Platinum, the better grease getter.
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना. साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर.
5: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर.
1: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स. बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी.

0: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस वे योर कार गेट्स अ केयर. It deserves
2: another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
6: Your business on CMR at 11. Reach the South Asian community.

0: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ ही ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं। और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील, कॉल 905-946-1000 फॉर मिडलैंड एंड सियूस एंड 416-757-1000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट mymechanicauto.ca।
1: कैशपॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000, 416-284-7000.
2: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त है, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 months एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: Turn

0: listen to us around the universe. www.cmr.fm. इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
1: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
0: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Don Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Don Platinum, the better grease getter.
0: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
5: Oh-ho!

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs, jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
2: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस, साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर. It deserves.
3: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद ए मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
2: Another Don clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।

0: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
1: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
0: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी। लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.

0: another Dawn clean with the Dawn Ducks.
1: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
2: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
1: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
2: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
1: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
2: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
1: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
0: Dawn Platinum, the better grease getter.
3: लेक डे दा प्लान सी पर टोयोटा टंडरा दे बिना सगुन नहीं शोर मिलिया जेकर तुसी अपने स्थानक टोयोटा डीलर तो टंडरा ले आओ ता एस दी 11,000 पाउंड्स तक दी टोइंग कैपेसिटी दे नाल तुसी फैसला करोगे कि रुकना किथे है रेड टेक डेज दा लाभ लाओ लीज करो 2026 टंडरा 4x4 क्रू मैक्स डीआरडी ऑफ रोड $172 वीकली तो 36 months लाई 4.29% APR ते $5,800 डाउन दे नाल विजिट shoptoyota.ca जा अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जाओ
4: You're tuned into CMRF 11.

0: You're listening to CMR FM 101.3. Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, jahan news, views, sports, entertainment ki khabrein hongi bilkul unlimited. Entertainment to bahut hai, lekin yahan par milega aapko bilkul unlimited. News aur views to har jagah milenge, lekin yahan par milega bilkul unlimited.
2: Yahan bhi hoga, wahan bhi hoga, ab to saare jahan mein hoga kya? Mera hi jalwa.
1: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
3: है आदत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
1: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 PM.
4: और म्यूजिक स्टार्ट करो भाई.
1: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 PM. स्टे ट्यून्ड.

0: The advertisements, views, and opinions expressed in the radio show are that of the sponsors, guests, and callers, and are not necessarily those of the South Asian Unlimited show, host, and its producers. The show is for entertainment purposes only and does not advocate any sponsors' messages. It is solely the responsibility of the advertiser or sponsor.
1: नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज़, व्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती हैं बिल्कुल अनलिमिटेड। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055 और बाहर का तापमान राइट नाउ 21 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम टेम्परेचर्स विल हिट 22, रात का टेम्परेचर होगा 11 डिग्री एंड नाइस ब्यूटिफुल सनी डे। जून 1st, छठे महीने की शुरुआत हो चुकी है 2026 में, 5 महीने गॉन एंड बस पता ही नहीं चलता है यहाँ पर किस तरह से हफ्ते, महीने, साल जो है भागते हैं, दौड़ते हैं। एंड टुमारोज़ टेम्परेचर्स 26 डिग्रीज, 13 इज द मिनिमम एंड वेंसडे 29, थर्सडे 29, फ्राइडे 30, वीकेंड को होगी बारिश। सो बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर है, इस ब्यूटीफुल वेदर को इन्जॉय कर लीजिए क्योंकि कुछ हफ्ते बाद फिर कहानी बदल जाती है। एंड 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। 12:15 की हमारी हेडलाइंस बिल्कुल तैयार है। आज स्काईलेक इमिग्रेशन से मनन गुप्ता जी 1:15 यानी 12:45 हमारे साथ होंगे एज ऑलवेज मंडे के दिन विद द लेटेस्ट प्रोविंशियल, म्यूनिसिपल, लोकल and federal updates as well as the immigration update by Skylake Immigration. The segment is also brought to you by cholebature.ca, jo ki 4 locations se serve karte hai. Dilli wale authentic chole bature, 2 in Brampton, 1 in Vaughan, 1 in Mississauga. All locations are takeout and dine-in option aapke liye available hai. And aage chalkar Win Lifetime Trading se Mohammed Saab will be with us. We will talk to him as well. Free seminar attend karein Saturday afternoon 12:30 to 3:30, par apni seat zarur reserve karwa lijiye. Don't walk in. 905-206-1008. Kafi busy ho jata hai Win Lifetime Trading on that Saturday seminars. So it's better to always reserve your seat. 905-206-1008. And ek infant ke marne ki khabar jo hai, मृत पाया गया इन्फेंट की खबर आई है फ्रॉम द विलियम पार्कवे कैनेडी एरिया इन ब्रैम्पटन एंड 23-year-old सस्पेक्ट जो है हैज़ बिन ऑब्वियसली चार्ज्ड द इट्स द गर्ल द मदर दैट हैज़ बिन चार्ज्ड एंड टेकन टू इनटू हॉस्पिटल राइट नाउ फॉर सम मेडिकल टेस्ट एंड स्टफ लाइक दैट। उसकी जानकारी भी आपको देंगे। सनी, सीजनेबल एंड ड्राई थ्रू ऑल द वे टिल फ्राइडे, वेदर रेन रिटर्न्स। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो रिमेन्स टॉप रैंकिंग स्कूल इन कैनेडा, ये खबर आई है बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के लिए। इट रिमेन्स नंबर वन। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो प्लेसेस 23rd ऑन द न्यू लिस्ट फ्रॉम सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो है नंबर 23 पर है। कैनेडा में बात करें, इट इज एट नंबर 1। CMR 101.3 FM, Monday to Friday, 12 to 2 PM, South Asian Unlimited Radio, जहां पर हमारी कोशिश होती है कि हर दिन आपको रिपोर्टिंग सारी की सारी पहुंचाएं, अनबायस्ड पहुंचाएं, दुनिया भर की खबरें आप तक पहुंचाएं। एंड पिछले एक हफ्ते से बात चल रही थी US ईरान की कि थिंग्स आर प्रॉबली गेटिंग बेटर, निगोशिएशन चल रही हैं, बट इट जस्ट सीम्स लाइक द निगोशिएशन अगेन उस पर कुछ ना कुछ एक पॉज बटन जो है हो चुका है, लग चुका है, एंड थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड अगेन। बट गैस प्राइसेस आर लुकिंग लिटिल बिट बेटर देन जो हम पे कर रहे थे, अबाउट $1.67, $1.66 भी मुझे कई पंप्स पे नजर आया। सो टेक एडवांटेज ऑफ दैट। ऑब्वियसली नाइट टाइम, आई रिमेंबर ऑन द वीकेंड, आई थिंक फ्राइडे रात की बात है, मिसागा में $1.59, $1.58 तक गैस पंप्स पर देखी गई है गैस की कीमत। सो यू नो, make sure you check your tank and fill accordingly, save whatever you can, kyunki jab aamdani nahi badh rahi hoti hai aur kharcha is tarah se crazy ho jata hai, to this is what we can do, is save here a little bit and save there a little bit. Chaliye aise karte hain, chhoti si break lete hain, 12:15 ki headlines lekar foran aate hain wapas.
2: At Wayne's Auto Group, aap hum par rely kar sakte hain for everything automotive. Chahe ho daily commute ya weekend scape, hamara promise will always remain the same. Har

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: कैंपिंग दा प्लान तां मस्त सी, पर टोयोटा टकोमा दे बिना सारे लोग जिथे तुसीं भी पहुंचे उत्थे। जेकर रेड टैग डेज च तुसीं टकोमा ले आओ, तां इस दी जबरदस्त समर्था अते दमदार आई फोर्स इंजन तुहानू ले जावे थोड़ा होर दूर, सकून दे होर नेड़े। रेड टैग डेज दा लाभ लाओ। लीज करो 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 $114 वीकली तो 36 मंथ्स लई 4.69% ते $4900 डाउन दे नाल। विजिट shoptoyota.ca या अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जाओ।
6: गुड आफ्टरनून, शुरू करते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस।
7: Welcome back, friends, and the headlines are brought to you by Brampton TV and Appliances, Clear Optical by Varun Kanda, Kavya Homeo Care, McVean Dental Care, Rajdhani Sweets and Restaurant, Win Lifetime Trading. Shuru karte hai taza tareen headlines. US chopper crash mein Indian origin pilot ki hui maut. He got married just few hours ago. New York Mayor Zoran Mamdani ne Israel ko celebrate karne wali key parade ko skip kiya aur kaha, I've made my views very clear. टॉप ईरानियन नेगोशिएटर की एक कंडीशन है टू साइन यूएस डील, अपहोल्ड ईरान्स राइट्स, रिलीज फ्रोजन एसेट्स। यूक्रेन ने ड्रोन वॉरफेयर को वीडियो गेम में बदला, डिस्ट्रॉय मोर एंड गेट मोर। एआई ने 80 साल पुरानी मैथ प्रॉब्लम सॉल्व की that stumped experts for decades, a question that challenged mathematicians since 1946 got solved by AI. Russian forces ne handheld Yolka system ka istemal kiya to take down drones, aur medical report ke anusar Donald Trump ki health report is better than what is typically expected for someone his age. Report ke anusar Chinese missile ne US F-15 fighter jet ko Iran mein destroy kiya tha, and Turkey mein pirate party boat doobi jisme 148 tourists sawar the, passengers jump into the sea. Trump ne kaha Iran has agreed to no nuclear weapons. US Iran launch attacks on each other on negotiation as negotiations stall, aur Israel ne Lebanon mein strategic castle ko capture kiya in the deepest incursion since 26 years. Local samacharon mein, Toronto ke west end mein road cross karte waqt pedestrian ki hui maut, aur infant found dead inside Brampton.

होन महिला हिरासत में ली गई। फेटल ब्रैम्पटन क्रैश में चार्ज किए गए शख्स को मिसागा में स्टंट ड्राइविंग के लिए पकड़ा गया और हाईवे 401 पर हुए क्रैश के बाद महिला की हुई मौत। फीफा वर्ल्ड कप ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए टोरंटो एम्प्लॉयज आए वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस। भारतीय समाचारों में सुप्रीम कोर्ट ने वॉलंटरी सेक्स वर्क वर्सेस ट्रैफिकिंग को लेकर कहा कंसेंट इज द की। सूत्रों के अनुसार के अन्नामलाई बीजेपी को क्विट करके खुद की पार्टी बनाएंगे। गौतम अडानी ने शेयर होल्डर्स को लेटर में एआई ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का वादा किया एंड सूत्रों के अनुसार अभिषेक बैनर्जी के असॉल्ट के एक दिन बाद टीएमसी को लगा एक और बड़ा झटका। ममता बैनर्जी के घर की मीटिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 टीएमसी एमएलएज ही पहुंचे। टॉप इंडिया यूएस नेगोशिएशंस की 4-day ट्रेड टॉक्स आज से दिल्ली में शुरू हुई और बीजेपी कोर ग्रुप मीट एट पीएम्स रेजिडेंस टुडे। एजेंडा पर था राज्यसभा पोल्स। लद्दाख के टूरिस्ट स्पॉट्स पर जल्द ही लिकर भी अवेलेबल होगी, इससे पहले सिर्फ ले सिटी में ही लिकर अवेलेबल थी। पोल बॉडी ने मणिपुर में इलेक्टोरल रोल रिविजन की शुरुआत की, फुल लिस्ट बाय सितंबर। एंड रिपोर्ट के अनुसार मुन्ना जिंगाड़ा एलायस सईद मुदस्सर हुसैन दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड है एंड वॉज एट द सेंटर ऑफ प्लानिंग अटैक्स इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पॉक्सो अप्लाई होता है इफ माइनर अटैक्ड बाय कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। और केंद्र ने पेट्रोल एक्सपोर्ट टैक्स और डीजल एविएशन फ्यूल लेवी को जून से 50% कम कर दिया है। और इंडिया ओमान के ट्रेड पैक्ट ने अल्टरनेटिव रूट को ओपन किया टू गल्फ बियॉन्ड हॉर्मुज एंड सुप्रीम कोर्ट गेट्स 5 न्यू जजेस, टोटल स्ट्रेंथ राइजेस टू 37। पाकिस्तान की खबरों से, 40 दिन बाद भी पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स हेल्ड बाय सोमाली पायरेट्स अफेक्टेड फैमिलीज ने गवर्नमेंट से गुहार लगाई है टू स्टेप अप एफर्ट्स फॉर हॉस्टेजेस रिलीज। केडब्ल्यूएससी का कहना है कि के इलेक्ट्रिक केबल फॉल्ट के बाद कराची फेसेस वाटर शॉर्टफॉल। अगर इस मसले को फौरन रेक्टिफाई ना किया गया फॉर परमानेंट बेसिस तो पॉसिबिलिटी होगी ऑफ फर्दर शॉर्टेज इन वाटर सप्लाई। कराची हिल के पार्क के पास हुआ इंक्रोचमेंट रेजेस फ्रेश क्वेश्चंस। कराची मेयर मुर्तजा वहाब का कहना है कि हिल पार्क की जमीन का एक इंच भी हमने किसी को नहीं दिया। आउटेजेस के बीच कराची रेजिडेंट्स ने डिमांड किया एंड टू अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक डिनाइज कैरिंग आउट लोड शेडिंग एक्सीडिंग 10 आवर्स। यूरोपियन यूनियन फॉरेन पॉलिसी चीफ कैलस टू विजिट पाकिस्तान फॉर द स्ट्रेटेजिक डायलॉग टुडे। पाकिस्तान की लीडरशिप से हाई लेवल टॉक्स भी होंगी। IMF ने पाकिस्तान से कहा टू रेज GST टू 19% इन बजट 2026-27। एस्टिमेटेड इंपैक्ट ऑफ GST हाइक कुड बी 250 to 300 billion rupees इन रेवेन्यू। और टैक्स कलेक्शन टारगेट के शॉर्टफॉल के चलते IMF ने ये इंक्रीज प्रपोज किया है। गिलगित बल्तिस्तान में व्हीकल के रिवीन में गिरने से 7 टूरिस्ट की मौत हुई। रेस्क्यू टीम्स कंटिन्यू रिकवरी ऑपरेशन। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क के जनरल इलेक्शंस के साथ गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर पोल्स की मांग की है। दूसरी ओर स्पोर्ट जगत से, RCB ने IPL को 5 विकेट से जीता। गुजरात टाइटन्स मेड 155 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। RCB मेड 161 फॉर द लॉस ऑफ 5। विराट कोहली स्मैशेस हिज फास्टेस्ट IPL 50। वैभव सूर्यवंशी ने कहा मेरी फियरलेस बैटिंग के पीछे सुनील गवास्कर है, माई डैड लव्ड गवास्कर। IPL हार्टब्रेक के बाद वैभव सूर्यवंशी ट्रेवल्स टू अहमदाबाद टू विटनेस RCB वर्सेज गुजरात टाइटन्स फाइनल्स। और ऋतुराज गायकवाड़ नेम्ड इंडिया ए वाइस कैप्टन, रिप्लेसेस इंजर्ड रियान पराग। और दूसरी ओर वैभव टू को IPL में मिली ऑरेंज कैप, विराट ने किया कंग्रेचुलेट। बॉलीवुड खबरों से, माधुरी दीक्षित को लगता है कि कॉमेडी इज ऑफ्टन टफर देन इंटेंस रोल्स। बॉबी डियोल ने किया खुलासा अबाउट फीलिंग हार्ट ब्रोकन आफ्टर लूजिंग जब वी मेट और कहा आई वेंट थ्रू ऑल इमोशंस। कांस अपीयरेंस के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन को किया गया बॉडी शेम्ड। माधुरी दीक्षित ने ऐश्वर्या के डिफेंस में कहा यू कैंट रिड्यूस ऐश्वर्या टू दैट। मनोज वाजपेयी ने कहा घूसखोर पंडित कंट्रोवर्सी के दौरान उन्हें थ्रेट्स मिली थी, पीपल ट्रोल्ड मी, अब्यूज्ड मी एंड माय फैमिली। वरुण धवन ने प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनालिटी राइट्स वाली सेलिब्रिटी लिस्ट को ज्वाइन किया। AR रहमान टू कंपोज म्यूजिक एंड को प्रोड्यूस शेखर कपूर मासूम द न्यू जनरेशन। एंड सोनाक्षी सिन्हा ने अपने मुंबई अपार्टमेंट को रेंट आउट किया टू कुवैत काउंसलेट एट 16 lakh rupees पर मंथ। ये थी साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइन। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055, 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है। आज कल एक्चुअली डेथ एनिवर्सरी थी KK की, इसी वजह से हमने KK के गीत से आज के दिन की शुरुआत की थी, रिमेंबर करते हुए व्हाट अ टैलेंट ही वाज। 2022 में एक कोलकाता में कॉन्सर्ट करते वक्त
He had a cardiac arrest. He was 53 and he passed away. What a talent, KK. And KK ka hi agla geet Kites film se filmaya on none other than Hrithik Roshan. Zindagi do pal ki enjoy kare. Brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant.

0: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
1: Hi Anju, कैसी हो? How's your son doing?
2: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
1: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
3: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 9054573232 Clear Optical by Varun Kanda.
4: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से।
5: अच्छी याद है, याद है। अच्छा उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से।
4: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो।
6: choleBhature.ca बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे choleBhature.ca। कॉल 9054582448.
0: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga, and 1 by Vaughan Mills. This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को side income provide करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं. Flexible schedule है, surety with full confidence के साथ minimum $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं. Free seminars attend करें हर Saturday afternoon. Make sure please make your appointment. Walk in ना करें. 12:30 PM to 3:30 PM होता है seminar, and call करके अपनी seat reserve करवा लें. 905-206-1008 905-206-1008. Mittal CPA Professional Corporation for all your tax related matters. 289-748-4040 289-748-4040. काव्या होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है. काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर. 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। और हम पहुंच चुके हैं काव्या होम्यो केयर गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ मीता ओजा पिनाक ओजा जी, 10 कॉट्रेल बुलेवार्ड यूनिट 104 ब्रैम्पटन से आपको सर्व करते हैं। एंड द मेजर इंटरसेक्शन इज नॉर्थ पार्क एंड एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। क्लिनिक फॉर योर कन्वीनियंस इज ओपन 6 days a week, मंडे टू सैटरडे 10 AM इन द मॉर्निंग टू 6 PM, 10 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक। नंबर टू कॉल काव्या होम्यो केयर 6477602779 6477602779। मीता जी आपका स्वागत है।
1: थैंक यू सनी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, एंड सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो
0: जी, मजा मा, गुड आफ्टरनून मीता जी। एंड आज इस स्पेशल सेगमेंट में, हेल्थ सेगमेंट में, हम किस टॉपिक को लेकर करेंगे बातचीत?
1: IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे।
0: बिल्कुल जी।
1: तो ये एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है और IBS में मेनली आपकी लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और इसके साथ आपको एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन रहती है, आपको ब्लोटिंग सी रहती है, गैस जैसे भरी हो, ज्यादा गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया। लेकिन इसका जो टिपिकल सिम्टम है कि खाना खाने के साथ ही राइट वे या थोड़ी देर बाद आपको टॉयलेट जाना पड़ता है। तो ये ऑन गोइंग क्रोनिक कंडीशन है। कुछ एक लोगों में काफी सीवियर हो सकते हैं सिम्टम्स, लेकिन ज्यादातर लोगों में आप इसको डाइट के साथ, स्ट्रेस लेवल मैनेज करके या लाइफस्टाइल को मैनेज करके आप इसको मैनेज कर लेते हैं इस कंडीशन को। अब ये जो सिम्टम्स इसके आते हैं वो मेनली इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस की तरह, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज की तरह ही होते हैं। लेकिन जब आपकी कॉलोनोस्कोपी होती है उसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है कि इंटेस्टाइन के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सारा कुछ नॉर्मल आता है, तब आपको बताया जाता है कि आपको IBS की प्रॉब्लम है। तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो यहाँ समथिंग टू डू विथ योर नर्वस सिस्टम, कि जो लोग कंटिन्यूअस लॉन्ग टाइम से किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस चल रहा है तो उन लोगों को ये आगे जाके डेवलप होता है। सप्रेशन ऑफ इमोशन, किस तरह सप्रेशन ऑफ एंगर, गुस्सा दबा दिया हो, फैमिली में किसी की डेथ हुई हो, नया जॉब है या जॉब पे किसी कारण से आपको स्ट्रेस है, फाइनेंशियल लॉस है, तो ये सारे स्ट्रेस करके इसके सिम्टम्स ट्रिगर हो जाते हैं। और ऑलरेडी जिनको एंग्जाइटी इश्यूज या डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, अब्यूज की हिस्ट्री रही है, तो उनमें भी IBS ये पाया जाता है। और एक बार IBS हुआ तो जैसे भी आपने कोई खाने के साथ ये ट्रिगर होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं कि कोई भी मिल्क प्रोडक्ट्स लिया तो उसके साथ वो ट्रिगर हो गया, तो ये अक्सर होता रहता है। और फिर इनको एक बार स्टमक फ्लू हो जाता है या डायरिया हो जाता, इन्फेक्शन हो गई तो उसके साथ भी इसके सिम्टम्स जो है ये ट्रिगर हो जाते हैं। और जैसे ही ये ट्रिगर होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, और उसके साथ साथ काफी सारी ब्लोटिंग, आफरा सा रहता है, एंड गैस की कंप्लेन है, बार बार टॉयलेट जाना पड़े, कुछ भी खाया पिया तो थोड़ी देर में जाना पड़ेगा, या ऑल्टरनेट चलता है कि समटाइम्स डायरिया हो जाना तो कुछ दिन आपको कॉन्स्टिपेशन की ट्रबल रहती है, टॉयलेट में म्यूकस जाना। तो ये पूरे साल भर ऑन एंड ऑफ ये सिम्टम्स आप फील करते रहते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग कंडीशन है। तो ऐसे में आपको कहा जाता है कि इसको मैनेज करते रहो या ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेते रहें, लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इन होम्योपैथी वी डू हैव ट्रीटमेंट, और ये आप स्टार्ट करोगे उसके साथ ही आपके सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट होके कुछ टाइम जैसे आप कंटिन्यू लेते हो ना, तो यहाँ पे इंटेस्टाइन की जो वॉल मसल से बनी होती है तो वो एक पर्टिकुलर रिदम में कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है, जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो ये ज्यादा स्पीड अप हो जाती है जिस करके आपको डायरिया होता है, या स्लो डाउन होने से कॉन्स्टिपेशन की ट्रबल आती है। तो ये सिम्टम्स माइंड एंड गट के जो नर्वस कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है उसको सही करने में ये ट्रीटमेंट आपको हेल्प करेगा, और फिर आपको लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ दिखेगी। सो IBS की प्रॉब्लम है, डायरिया की कंप्लेंट रह रही है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी या ज्यादा गैस ब्लोटिंग की ट्रबल है, सो ऐसे में ये ट्रीटमेंट आपको हेल्प करेगा। फील फ्री टू कॉल अस काव्या होम्यो केयर से कोई भी एक्यूट क्रोनिक डिजीज के लिए, एंड इसके साथ मसाज थेरेपी इज अवेलेबल। सो बॉडी में कहीं पे भी पेन्स हो रहे हैं, आपको दरन की प्रॉब्लम आ गई है, या फिर एंग्जाइटी, स्ट्रेस करके आपको सिर दर्द वगैरह की प्रॉब्लम है, सो उसके लिए थेरेपी इज ऑल्सो अवेलेबल।
0: जी बिल्कुल, काव्या होम्यो केयर गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ मीता ओजा पिनाक ओजा जी, 10 कॉट्रेल बुलेवार्ड यूनिट 104 ब्रैम्पटन से सर्व करते हैं. नॉर्थ पार्क और एयरपोर्ट रोड का मेजर इंटरसेक्शन है. मंडे टू सैटरडे द क्लिनिक इज ओपन 10 AM इन द मॉर्निंग टू 6 PM इन द इवनिंग. और आप अपनी दवाई जो है फोन पर कंसल्टेशन कर सकते हैं अगर काफी दूर रहते हैं. यू कैन ड्राइव एंड ऑल अक्रॉस US कैनेडा दवाई शिप की जाती है. सो 6477602779. And for even the massage services, you can get your appointments made 6477602779 per 6477602779. Meeta ji, bahut bahut shukriya.
1: Thank you so much, sir.
0: Thank you, ji. Kavya Homeo Care, 6477602779 is the number. And Clear Optical by Varun Kanda, Brampton, Georgetown, two locations se serve karte. Eye exams ke liye, doctors available 7 days a week. Chhoti si break lete, 12:45 hamare saath Manan Gupta ji honge, Skylake Immigration se kai topics hai jinko humne discuss karna hai. Kal Dajit Dosanjh ka show tha yahan par, Toronto mein, Rogers Centre mein, and it was crazy. Kai families that I know were at the show. Crazy matlab in a good way. There's a lot of... मतलब बिल्कुल सोल्ड आउट शो है. आजकल तो ये हाल है कि दलजीत का शो अनाउंस बाद में होता है, सोल्ड आउट पहले हो जाता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग एंड ही मेक्स अस प्राउड. नॉट ओनली सब साउथ एशियंस को, मतलब नॉट ओनली पंजाबीज को, बट ओवरऑल जो लोग हम रहते हैं नॉर्थ अमेरिका में एंड वर्ल्ड वाइड, दलजीत दोसांझ इज़ वन पर्सन जिसको देख कर जो है मान महसूस होता है बहुत ज़्यादा. एंड चलिए छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आप आते हैं वापस. चेहरे की हंसी दिखावट सी हो रही है, असल जिंदगी भी बनावट सी हो रही है. अनबन बढ़ती जा रही है रिश्तों में भी, अब अपनों से भी बगावत सी हो रही है. पहले ऐसा था नहीं जैसा हूं मैं आजकल, मेरी कहानी कोई कहावत सी हो रही है. दूरी बढ़ती जा रही मंजिल से मेरी, चलते चलते भी थकावट सी हो रही है. शब्द कम पड़ रहे मेरी बातों में भी, खामोशी की जैसे मिलावट सी हो रही है. और मशवरे की आदत ना रही लोगों को, और मशवरे की आदत ना रही लोगों को, अब गुजारिश भी शिकायत सी हो रही है.

वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है. और कल डेथ एनिवर्सरी थी द ग्रेट सिंगर केके की. एंड उन्होंने नॉट ओनली हिंदी में बट बीइंग फ्रॉम केरला हिमसेल्फ एंड बॉर्न इन दिल्ली, उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, अलग अलग भाषाओं में गीत गाए. और केके और सुनित्रा की आवाज़ में ये तमिल सॉन्ग है. एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. और हमारे टेक्निकल डायरेक्टर कार्तिक, जो खुद तमिल हैं, तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनसे मेरी अक्सर बात होती है कि किस तरह से कुछ ये सिंगर्स जो हैं, जिन जो बॉलीवुड में इज़ अ बिग नेम, वर अ बिग नेम, उन्होंने किस तरह से अलग अलग भाषाओं में जब गाना गाया है वहाँ पर भी वो उतने ही पॉपुलर थे. के बीइंग दैट पर्सन, चाहे वो हरिहरन है, एसपी बालासुब्रमण्यम साहब है, बट व्हाट अ ग्रेट टैलेंट के वॉज. ये तमिल गीत इन्जॉय करते हैं.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940.
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर everything ऑटोमोटिव. चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप, हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम. हर जर्नी को बनाए खास. Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही विजिट करें waynesautogroup.com.
2: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है. 3 bedroom 2.5 वाशरूम हन. हाई एंड दे फर्नीचर ना फुली फर्निश्ड है. $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 फीट दा पैड भी बनया है. 2 साल दी नवी कॉटेज $100,000 दी इनकम जनरेट करदी है. 12x30 फुट दा डेक है, प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है. मस्कोका रूम भी फर्निश कीता गया है. पिछे पानी है अते खूबसूरत है. क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होगा. बीच भी नजदीक है. जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222.
3: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर्स अते उन्हां दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना. इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा. ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलण लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप. अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होण वाला है तूफानी.
4: Real estate is not easy business. Aur jo easy nahi, use easy banate hain Realtor Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley. Ghar khareedna ya phir ghar bechna, first time home buyers ya phir investors, sabki pasand ka rakhte hain khayal. Ye hai Raj Joshi, Realtor bemisal. Call Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley Realty 647-866-1086 647-866-1086. Raj Joshi, sirf naam hi kaafi hai.
5: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.
8: लेक डे दा प्लान सी, पर टोयोटा टंडरा दे बिना सकून नहीं. शोर मिलिया. जेकर तुसी अपने स्थानक टोयोटा डीलर तो टंडरा ले आओ, ता इस दी 11,000 पाउंड्स तक दी टोइंग कैपेसिटी दे नाल तुसी फैसला करोगे कि रुकना किथे है. रेड टैग डेज दा लाभ लाओ. लीज करो 2026 टंडरा 4x4 क्रू मैक्स DRD ऑफ रोड $172 वीकली तो 36 months लाई 4.29% APR ते $5,800 डाउन दे नाल. विजिट shoptoyota.ca जा अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जा.
9: 3 meter, बस इन्ना को याद रखो. तुहानू उपरों लंघ दियां बिजली दियां पावर लाइन्स तो घट्टो घट 3 meter दूर रहना चाहिदा है. ओंटारियो विच बिजली तो होण वाली मौतां दा एक प्रमुख कारण पावर लाइन्स हन, अते बिना छुए भी तुहाडी मौत दा कारण बन सकदियां हन. जेकर तुसी बाहर काम कर रहे हो तां उपरों लंघ दियां पावर लाइन्स वल ध्यान दिओ. अपने आप नूं अते अपने उपकरणां नूं इन्ना तो घट्टो घट 3 meter दूर रखो. इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वालों स्नेहा esasafe.com/stoplooklive ते होर जानो.
10: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
11: जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना. वाकई जिंदगी बहुत ही सुहाना सफर है और कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता. एक सुझाव मैं आपको देता हूँ कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के लिए जैसे ऑटो, होम, लाइफ एंड कमर्शियल इंश्योरेंस, एक भरोसेमंद नाम पूजा गुप्ता जी को कॉल करें 647-628-0040. दैट इज 647-628-0040.

0: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040, दैट इज 416-451-0040, और विजिट skylakeimmigration.com।
1: Skylake Immigration।
2: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एंड स्काईलेक इमिग्रेशन से मनन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। 416-451-0040 इज द नंबर, 416-451-0040 फॉर एनी इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर, यू नो हु टू कॉल, व्हेन टू कॉल, एंड नंबर मैंने आपको दे दिया है। मनन गुप्ता जी से इस सेगमेंट के बाद आपने संपर्क करना है, लेकिन उससे पहले मंडे का जो सेगमेंट हमारा होता है जहां पर हम सारी की सारी लेटेस्ट खबरों को डिस्कस कर लेते हैं और एंड में इमिग्रेशन अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। कोई सवाल है आप स्टूडियो के नंबर पे कॉल करें 416-593-0055। मनन जी आपका स्वागत है।
3: थैंक यू वेरी मच सनी जी, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम सुन रहे सभी लिसनर्स परिवारों और शुभचिंतकों को बहुत प्यार भरी नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, आदाब, थैंक यू सो मच
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हमने नए हफ्ते नए महीने में एंट्री कर ली है। होप यू हैड अ वंडरफुल वीकेंड।
3: एब्सोल्युटली जी, और वीकेंड का जब यू नो वीकेंड बढ़िया सनी वीकेंड था आपके नाम के साथ मिलता जुलता और बड़ा बिजी रहा यू नो, और साथ ही जब वीकेंड खत्म हुआ तो नया हफ्ता नया महीना और जून महीना स्टार्ट हो गया। सो फर्स्ट डे ऑफ द जून मंथ है, वी आर वेरी प्लीज्ड एंड एक्साइटेड टू बी विद द कम्युनिटी जी।
2: बिल्कुल जी, बड़ी एक ट्रेजिक न्यूज आज सुबह को सामने आई है। महिला को हिरासत में लिया गया है मनन जी, एंड आफ्टर अ न्यूली बॉर्न इन्फेंट वॉज फाउंड डेड इनसाइड ब्रैम्पटन होम। आई वुड लाइक कि इसको लेकर आप थोड़ी सी।
3: डेफिनेटली जी, इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव, वेरी ग्राफिक स्टोरी जो यू नो अभी डेवलपिंग स्टोरी है। वेरी ट्रेजिक अपडेट मिल रही है। ब्रैम्पटन के कैनेडी रोड नॉर्थ और विलियम्स पार्कवे का जो एरिया है वहां पर बताया जा रहा है कि कल रात को तकरीबन 8:30-9 बजे के समय जब पुलिस को कॉल गई, उसके बाद जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक न्यूली बॉर्न इन्फेंट चाइल्ड यू नो द चाइल्ड वॉज यू नो डिसीज्ड, और इसी सिलसिले में उसकी जौन सी मदर है, न्यूली जौन सी मदर थी वो 23 साल के सिमरन कौर, उनको चार्ज किया गया है। उनको मेंटल हेल्थ सर्विसेज भी मिल रही हैं, उनका यू नो प्रॉपर मुआयना हो रहा है कि किस हालात में ये वेरी वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट अकर हुआ। लेकिन साथ ही पील पुलिस ने ये रिक्वेस्ट की है कि किसी भी शख्स परिवार को इस इंसिडेंट के संबंध में कोई भी जानकारी हो तो स्पेशल विक्टिम्स यूनिट को कॉल करके अपनी जानकारी अवश्य दें। कॉल करने के लिए नंबर है 905-453-2121 और एक्सटेंशन है 3460। कुछ एक मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है सनी जी कि इस घर में तकरीबन 10 से 20 यानी कि ऑलमोस्ट यू नो मोर देन अ डजन पीपल वर लिविंग इन दिस हाउस। तो उस घर का हाल क्या होगा, वहां पर किस तरह के यू नो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस होंगे, वी कैन जस्ट एज्यूम एंड वी कैन जस्ट यू नो मेक इट अ क्वेश्चन मार्क, बट डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी सैड रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन आवर कम्युनिटी।
2: मनन जी, इज इट ऑल्सो ट्रू दैट सम न्यूज इन रिगार्ड्स टू इसी खबर से जो मेरे हाथ लगी थी, इज इट ऑल्सो ट्रू दैट पुलिस ने जब इस घर में पुलिस पहुंची है तो रेंटर्स जो थे उनके गद्दे जो हैं, मैट्रेसेस हैं, वो गराज में भी पाए गए? देवर लाइक सम पीपल।
3: बिल्कुल, ये खबर मैंने भी पढ़ी है जी, क्योंकि सेंस पील पुलिस ने ऑफिशियली इसका जिक्र नहीं किया अपनी किसी रिलीज में, सो वी आर ट्राइंग टू यू नो मेक अंडरस्टैंड कि सीरियसली क्या कुछ वहां पर हुआ। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो नेबर्स बता रहे हैं कि इस घर में इट वॉज लाइक अ रिवॉल्विंग डोर और 10 से 20 जाने इस घर में रहते थे। सो वी डोंट नो उनका क्या स्टेटस था, क्या उनका लीगल स्टेटस था, इमिग्रेंट था, बट एक न्यूली बॉर्न बच्चे की जान चली गई है, विच इज अगेन अ वेरी वेरी ट्रेजिक सैड एंड टू दैट चाइल्ड्स फ्यूचर। जी
2: जी, मनन जी, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन सेलिब्रेट कर रहा है सीनियर्स मंथ, इस पर थोड़ी सी कुछ रिपोर्ट दें।
3: बिल्कुल जी, जून का महीना सीनियर्स मंथ के तौर पर मनाया जाता है और सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और इनफैक्ट बहुत सारी और म्यूनसिपैलिटीज और राज्य सरकार की तरफ से भी इस महीने में काफी सारी एक्टिविटीज प्लान की गई हैं टू एक्नॉलेज एंड ऑनर द कंट्रीब्यूशंस मेड बाय आवर सीनियर्स। सो सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने खास करके जून 12 को एक स्प्रिंग फेस्ट एक्सपो का ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किया है जिसको मैनेज किया जा रहा है। इवेंट को सेंचुरी गार्डन्स रिक्रिएशन सेंटर जो कि वार्डन स्ट्रीट के ऊपर है, इस इवेंट के ऊपर आपने जाना है तो सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के साथ आप संपर्क कर सकते हैं। डेफिनेटली देर आर लॉट्स ऑफ एक्साइटिंग इवेंट्स happening. Picnics hain, barbecues hain, free transit to already seniors ko Brampton jaisi municipality deti hai. So we also want to thank our seniors for making all those critical contributions.
2: Ji. And Ontario expands access to apprenticeship training across the GTA. इसके बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज.
3: दी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, देखिए सनी जी, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक कड़ी है, स्टेप है, जिसमें हमें सीरियस वर्कफोर्स मिलती है. और खास करके अगर हमने कनाडा में और स्पेशली अगर हमने ओंटारियो में आने वाले समय में ट्रांजिट की इंप्रूवमेंट्स करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना है, नए घर बनाने हैं, तो वी नीड दो स्किल्ड वर्कफोर्स. और इसीलिए ओंटारियो सरकार की कोशिश है कि यू नो स्किल्स डेवलपमेंट्स की तरफ हम फोकस करें, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें. और पता चला कि ग्रेटर टोरंटो एरिया में अलग अलग 6 प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिली है, जिसमें तकरीबन $2 million की फंडिंग डेविड पिचिनी, जो कि इमिग्रेशन और लेबर मंत्री हैं, उन्होंने जारी किए हैं. खास करके डरहम कॉलेज, शेरिडन कॉलेज को भी इस फंडिंग का बड़ा हिस्सा माना उसको हासिल हुआ है. सो उम्मीद करते हैं कि इस सारी अप्रेंटिसशिप कैपिटल ग्रांट प्रोग्राम से जो लोग सीरियसली स्किल ट्रेड्स की तरफ आना चाहते हैं वो इसका स्वागत करेंगे, ताकि हमारा आने वाले फ्यूचर में हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जौन सा डेफिसिट है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिले चलते रहते हैं, उसको किसी ना किसी तरह से कवर अप और स्पीड अप किया जा सके.
2: जी. एंड ये खबर अच्छी नहीं है, अगली वाली, कि क्रिकेट कैनेडाज मेंबरशिप विद इन आईसीसी सस्पेंडेड immediately. तो क्या, what exactly is this?
3: जी जी, क्रिकेट कैनेडा सुर्खियां काफी बटोर रहा है. कई बार इनकी इंटरनल मिसमैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आपस में नहीं ज्यादा तालमेल होना, फिर रिसेंटली कुछ है कि इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के घर के ऊपर यू नो गोलीबारी की इंसिडेंट्स आए, यू नो टेररिज्म से रिलेटेड कुछ एक्सटॉर्शन रिलेटेड भी इंसिडेंट्स का इनका लिंक किया जा रहा है. लेकिन फाइनली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, अलग अलग कंट्रीज के क्रिकेट बोर्ड्स को वो गवर्न करती है, उनको यू नो रेगुलेटरी पैरामीटर में कन्फाइन करती है, उसने आज ये फैसला किया है कि वी आर गोइंग टू सस्पेंड क्रिकेट कैनेडा फॉर ऑल द मिस गवर्नेंस विच हैज बीन हैपनिंग. सो इसका सीधा इम्पैक्ट क्रिकेट कैनेडा के फ्यूचर के ऊपर पड़ गया है. इट इज द सुप्रीम बॉडी विद इन कैनेडा, लेकिन अगर इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, उसको सस्पेंड कर रही है, तो दाल में बहुत कुछ काला है. दे रियली नीड टू कम अप क्लीन to improve the stature of cricket in Canada.
2: Ji, well, let's hope is kuch better outcome hota hai, because Cricket Canada has just been in the news for all the wrong reasons. Dosto, koi sawal hai Manan Gupta ji ko, aap directly pooch sakte hain 416-593-0055 pe. Municipal elections update, snapshot of Brampton candidates so far. Manan ji, kya exactly is par khabar hai?
3: देखिए, आज 1 June है और ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है म्यूनिसिपल इलेक्शंस का बिगुल बजते हुए ओंटारियो में. 1 मई को नॉमिनेशन पीरियड स्टार्ट हुआ था. सो अलग अलग म्यूनिसिपैलिटीज, इनफैक्ट 444 म्यूनिसिपैलिटीज हैं एंटायर ओंटारियो में, जिसकी इलेक्शन होनी है 26 अक्टूबर मंडे वाले दिन. लेकिन कैंडिडेट्स कैसे अपना नाम आगे पेश कर रहे हैं, कौन कौन से पब्लिक सर्विस में सीरियसली आना चाहते हैं, इसका अंदाजा आप जिस भी म्यूनिसिपैलिटी में रहते हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की बात करें, जहां पर 10 काउंसलर्स और 1 मेयर यानी कि 11 मेंबर्स काउंसिल है. इंटरेस्टिंग इसमें जो ऑब्जर्वेशन सनी जी देखने को मिल रही है कि 11 में से सिर्फ 3 एग्जिस्टिंग जो उनसे काउंसिल मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी रीनॉमिनेशन के पेपर्स फाइल किए हैं, जिसमें पैट फुटीनी है वार्ड 7 और 8 के रीजनल काउंसलर, और सिमिलरली वार्ड 1 एंड 5 के बोथ रोवेना सेंटर्स और पॉल विसेंटी. बाकी जो उनसे काउंसलर्स हैं और मेयर पैट्रिक ब्राउन ने अभी नॉमिनेशन फाइल नहीं किए. किसकी वो वेट कर रहे हैं, किस चीज का वो इंतजार कर रहे हैं, किस शुभ मुहूर्त की वो वेट कर रहे हैं, ओनली दे कैन टेल बेटर. लेकिन ब्रैम्पटन के रेजिडेंट्स के पास अभी भी मौका है अगस्त 21 तक, अगर दे वॉन्ट टू पुट देयर नेम फॉरवर्ड एंड रियली सर्व द कम्युनिटीज इन ब्रैम्पटन, नॉट जस्ट फॉर फोटो ऑप, नॉट जस्ट फॉर ऑन देयर वेस्टेड इंटरेस्ट, बट रियली अगर वो पब्लिक सर्विस को करना चाहते हैं तो वी इनकरेज देम. अगस्त 21 तक आप अपने आप को रेडी रखें, अपने नॉमिनेशन पेपर्स हैं 2 बजे तक सिटी क्लर्क ऑफिस में दाखिल कराएं. लेकिन मौजूदा काउंसिल के सिर्फ 3 मेंबर्स ने अभी तक पेपर्स फाइल किए हैं. वी डोंट नो द फ्यूचर ऑफ द रेस्ट ऑफ द 8 यट. जी
2: जी, हमारे एक लिसनर हैं, आपको बड़ा पसंद करते हैं, उन्होंने कहा कि व्हाट इज मनन जी वेटिंग फॉर.
3: देखिए, बहुत ही ये आपका मिलियन डॉलर क्वेश्चन है. अगेन, मैंने पहले भी यू नो जितने भी लिसनर्स और शुभचिंतक हमेशा कॉल करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट उनसे यही होती है कि देयर इज डेफिनेटली सो मेनी एवेन्यूज टू सर्व पब्लिक. इस प्लेटफॉर्म पर आकर आपसे हर मंडे जो बातचीत होती है 1:15 बजे, जिसका क्रेडिट सनी जी को जाता है, वो भी एक तरह से पब्लिक सर्विस ही है. बट डेफिनेटली डाउन द लाइन कभी भी मौका मिला, कभी भी इस तरह के आसार हुए, तो दिस प्लेटफॉर्म वुड बी द फर्स्ट टू नो व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स.
2: एक्सलेंट. हमारे प्यारे लिसनर जिन्होंने ये मैसेज किया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया. सुनील जी उनका नाम है. सुनील जी बड़े ध्यान से सुनते हैं, कभी कॉल नहीं करते. वो कहते हैं आई नेवर कॉल बट जस्ट अ मैसेज दैट ही सेंट. मनन जी, फेडरल मिनिस्टर्स लेब्लैंक और हॉडसन मीट विद ऑयल एंड गैस सेक्टर लीडर्स अहेड ऑफ द अपकमिंग कुसुमा जॉइंट रिव्यू. कुसुमा पर बहुत निगाहें हैं सबकी, कुछ लोग थोड़े पेसिमिस्ट भी हैं कुसुमा को लेकर, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे?
3: देखिए, दोनों तरफ के जो उनसे खेमे हैं दे आर वेट एंड वॉच कर रहे हैं. जो पेसिमिस्ट हैं वो अपनी यू नो नेगेटिविटी को लेकर चल रहे हैं, जो ऑप्टिमिस्ट हैं उनको यही लग रहा है कि भी कुसुमा विल बी रिवाइव्ड एंड फ्यूचर विल बी बेटर. बट अगेन हैविंग सेड दैट, इसमें कोई शक नहीं है कि कुसुमा इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर. जो उसका रिव्यू 1 जुलाई को शुरुआत होना है फॉर्मल, उसकी जौन सा रुख है उसमें जो पॉजिटिविटी आएगी उसी के चलते हुए, जैसे अभी हमने देखा कि पिछले दिनों में जो टेक्निकल रिसेशन की चर्चा हो रही थी कि जी कनाडा में 2 लगातार क्वार्टर्स में जौन सी जीडीपी नहीं बढ़ पा रही तो इसलिए वी आर इनटू टेक्निकल रिसेशन. ये टेक्निकल रिसेशन कब प्रैक्टिकल रिसेशन में बदल जाएगा ये कुसुमा के रिव्यू के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी बहुत सारी जौन सी इंडस्ट्री है, खास करके हमारा ऑटो सेक्टर, हमारा आयरन एल्यूमिनियम और ये सारी जौन सी यू नो जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज हैं, उसके ऊपर बहुत सा अंकुश लगा हुआ है ड्यू टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स टैरिफ वॉर. सो देखते हैं कि आने वाले जो उनसे अगले 3-4 हफ्ते हैं, स्पेशली एज अ रन अप टू July 1st, किस तरह की पैरवाई सरकारें करती हैं. लेकिन फिलहाल पता चला है कि जो डोमिनिक लेब्लॉन्क हैं, जो कि कैनेडा यूएस ट्रेड के उनको डिपार्टमेंट का यू नो फाइल को वो हैंडल कर रहे हैं बड़े करीबी से, वन कैनेडा इकोनॉमी के भी वो इंचार्ज हैं उनकी, और जो मिनिस्टर ऑफ एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैं ऑनरेबल टिम हॉडसन, उन्होंने आज ऑयल एंड गैस सेक्टर के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स से बातचीत की है. क्योंकि देखिए एनर्जी जौन सा एक सेक्टर है ना, वो दोनों देशों को बहुत करीबी से जोड़ता है. यू नो हमारी जौन सी भी एनर्जी आउटपुट होती है, हमारा सबसे बड़ा खरीदार हमारा पड़ोसी अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो अगर हम इस सेक्टर को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से हैंडल कर सकें, जिससे यहां पर जॉब्स भी यू नो रिटेन हो, जनरेट हो, और खास करके हमारी जौन सी एनर्जी की जौन सी ट्रेड है उसमें जीडीपी को कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि कनाडा और यूएसए का जो संबंध है वो बहुत ही करीबी है. इट हैज बीन प्रूवन फॉर डेकेड्स एंड डेकेड्स. वी जस्ट नीड टू क्रॉस ओवर सम ऑफ द माइनर और सो कॉल्ड मेजर हर्डल्स एंड द फ्यूचर विल बी आवर्स टू एंजॉय एंड एम्ब्रेस. जी
2: बिल्कुल जी, आपसे इमिग्रेशन की अपडेट जरूर लेंगे. हफीज भाई लाइन पर है, उनका क्वेश्चन भी ले लेते हैं. हफीज भाई आप ऑन एयर हैं, प्लीज गो अहेड.
4: सनी भाई गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू?
2: गुड आफ्टरनून ब्रदर, फर्स्ट क्लास, आप सुनाइए.
4: सनी भाई एक 10-15 दिन ठहर जाए आप, मनन जी जो है खुशखबरी देंगे सरप्राइज सडनली.
2: अच्छा आपको लग रहा है?
4: लग रहा है और आना चाहिए, उनको आना चाहिए किसी भी हाल. और आप देखना, आप ही अनाउंस करेंगे और नेक्स्ट टाइम फिर सनी भाई का नाम आएगा.
2: गॉड विलिंग. थैंक यू हफीज भाई. और आप ब्रैम्पटन में रहते हैं, आपको तो मनन जी का नाम खुद जो है आगे प्रमोट करना चाहिए कि ऐसे लोग जो है सिटी में, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में नजर आए, मतलब इन द काउंसिल, यू नो.
4: सर लाइन में हम सबसे पहले खड़े होंगे.
2: थैंक यू मनन जी, आपके एक और फैन है.
3: सर मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हफीज भाई आपका, और ऑल द यू नो वेल विशेस जो हमेशा टाइम टू टाइम एनकरेज एंड मोटिवेट करते रहते हैं. लाइक आई सेड, नेवर से नेवर, बट अगेन द राइट टाइम, द राइट मोटिवेशन, द राइट एनकरेजमेंट एंड द राइट ग्राउंड वर्क नीड्स टू बी डन. नो डाउट पब्लिक सर्विस का एक पैशन है, जो पैशन कभी जाएगा नहीं टिल द एंड ऑफ यू नो ह्यूमन लाइफ, बट अगेन उसके एवेन्यूज अलग अलग हो सकते हैं. वंस अगेन आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड इंडेटेड टू एवरीबडी हु इज एनकरेजिंग.
2: बिल्कुल, स्काईलेक इमिग्रेशन के कर्ता धर्ता मनन गुप्ता जी और उनकी टीम, मैं ऑलवेज इसे नंबर 1 कंपनी कहता हूं फॉर ऑल योर इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर्स इन कनाडा. स्काईलेक इमिग्रेशन, दुनिया के किसी भी कोने से आपके जो रिश्तेदार हैं, लव्ड वंस हैं, फ्रेंड्स हैं, कनाडा मूव होना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा कोई भी और स्पाउजल वीज़ा होता है, सुपर वीज़ा होता है, विजिटर, अलग अलग चीज़ें जो होती हैं, उसके लिए स्काईलेक इमिग्रेशन का नंबर नोट कर लीजिए, 416-451-0040, 416-451-0040, एंड जिस पर आप मनन गुप्ता जी और उनकी टीम से संपर्क कर सकते हैं. टीम चाहे जितनी बड़ी हो, अच्छी बात यह है कि मनन जी मेक श्योर करते हैं कि हर फाइल पर उनकी निगाह होती है. सो ऐसा नहीं है कि टीम का मतलब यह है कि मनन जी को पता नहीं है व्हाट्स गोइंग ऑन. ही इज टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी फाइल विच हिज टीम इज डीलिंग विद. मनन जी, इमिग्रेशन की क्या है लेटेस्ट अपडेट?
3: बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द अपॉर्चुनिटी वंस अगेन. और देखिए इमिग्रेशन को लेकर सनी जी, इट हैज बीन अ रोलर कोस्टर राइड. बहुत सारी चेंजेस पिछले डेढ़ दो साल में आई हैं, इतनी चेंजेस आई हैं कि हमें भी उसको मॉनिटर और उसको एक एनालाइज करना काफी मुश्किल हो जाता है. बट हैविंग सेड दैट, दीज ऑल चेंजेस आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ ब्रांड कैनेडा, क्योंकि पिछले पांच छह सालों में जिस तरह के यू नो फ्लड गेट्स खोल दिए गए थे फॉर इमिग्रेशन इन ऑल द कैटेगरीज, उससे सिस्टम का अब्यूज भी बहुत हुआ है. और ये सब हम भली भांति जानते हैं, ये अब्यूज क्यों होने दिया गया, ये सरकार अब जिम्मेवारी उठाए ना उठाए ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन न्यू गवर्नमेंट, अब सिंस प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी कह रहे हैं जी दिस इज द न्यू गवर्नमेंट, तो वी आर होपिंग कि ये जो से नए रिफॉर्म्स आए हैं पिछले एक डेढ़ साल में, इससे कुछ ना कुछ बेहतरी होगी. जहां तक लेटेस्ट ट्रेंड्स की बात है, पिछले हफ्ते दो बड़े ड्रॉज जिसे कहते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज आए हैं. एक ड्रॉज कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का है जिसमें तकरीबन 3,000 लोगों को इन्विटेशन टू अप्लाई की ईमेल आ गई है. CRS स्कोर, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम का स्कोर अभी भी हाई चल रहा है 518 के करीब. लेकिन सिल्वर लाइनिंग बिहाइंड द सीन्स यही है कि अगर आप फ्रेंच में प्रोफिशिएंट हैं, अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का शौक है और सीख रहे हैं और आपने लेवल 7 की प्रोफिशिएंसी प्राप्त कर ली है रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग में, तो आपके लिए 409 का स्कोर भी मैजिक फिगर बन जाएगा. क्योंकि इसी हफ्ते, जहां सा पिछला हफ्ता बीत कर गया है, तकरीबन 4,500 लोगों को सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच इमर्जन का जो ड्रॉ है, फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का ड्रॉ है, फोकस ड्रॉ है, उसमें इन्विटेशन टू अप्लाई की ईमेल आई है और उनका स्कोर था सिर्फ 409. सो एक तरफ 409 स्कोर पर लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी मिल रही है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने कनाडा में आकर पढ़ाई की, मेहनत की, एक्सपीरियंस गेन किया, वो अभी भी 518 स्कोर पर यू नो कम्पीट कर रहे हैं. सो यू कैन वेल इमेजिन कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है. गवर्नमेंट अभी भी फ्रेंच लैंग्वेज वालों को प्रायोरिटी दे रही है फॉर ऑल द पॉलिटिकल एंड अदर रीजंस. बट यही है कि आने वाले समय में अगर आपने अपनी फाइल को रिव्यू करवाना है, किसी भी तरह के आपको कोई कंसर्न है अपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल को लेकर, या किसी भी लव्ड वंस को आप यहां पर विजिटर वीजा, सुपर वीजा, या अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को यू नो रीयूनाइट करना चाहते हैं, तो वी आर हियर टू गाइड यू, हेल्प यू एंड ऑफर यू द बेस्ट ऑफ प्रोफेशनल लीगल एथिकल सर्विसेज.
2: बिल्कुल जी, द वन एंड ओनली मनन गुप्ता एंड हिज टीम एट स्काईलेक इमिग्रेशन. नंबर टू कॉल 416-451-0040. एंड फॉर ऑल योर इंश्योरेंस रिलेटेड मैटर्स, पूजा गुप्ता जी से संपर्क कर सकते हैं 647-628-0040 पर. पूजा गुप्ता जी 647-628-0040, मनन गुप्ता जी का नंबर फॉर ऑल योर इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर्स 416-451-0040. मनन जी बहुत बहुत शुक्रिया. वेंसडे को इमिग्रेशन अनलिमिटेड वाले सेगमेंट में फिर होती है मुलाकात.
3: एब्सोल्युटली जी, लुकिंग फॉरवर्ड. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सभी लिसनर्स का जो दे आर ऑलवेज ओवरवेलमिंग विद देयर लव एंड अफेक्शन.
2: थैंक यू ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. 416-451-0040, मनन जी की तरफ से एक प्यारा सा गीत आपको सुनाते हैं. एंड अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल की आवाज में, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की, ये बहुत ही ब्यूटिफुल सी कहानी की कहानी है इस सॉन्ग में. तुम क्या मिले, इंजॉय करें. आते हैं वापस. बाहर का तापमान 21-22 डिग्री तकरीबन हो चुका है.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940.
1: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते अनादी टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना. इस च साथ देण के चिप्स चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, ए टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा. ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक इजी स्टॉप. अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी.
2: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਮੋਰਟਗੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੋਰਟਗੇਜ, ਪਰਚੇਸ ਔਰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ,
3: ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨੀਲਮ ਸਿਡੋਵ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ.
2: ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ, ਇੰਪੇਅਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ.
3: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਏ ਬੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰਸਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰਸ.
2: ਯੂ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਨੀਲਮ.
3: ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨੀਲਮ ਸਿਡੋਵ ਨੂੰ
2: 647-739-8710. License number M200-3450.
4: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
5: Hi, I'm Realtor Sikhi. Jee tusi ghar bechan ja khareedan bare soch rahe ho, ta ik var mainu phone zarur karo. Main tuhanu professional advice deke tuhada ghar list karangi sirf $1,000 vich. Ji haan, bilkul theek sunya. Only $4,000. No hidden fees, no surprises. Call me at 647-408-7066. That is 647-408-7066. Just remember, you say sell and I say sold.
6: क्रेडिट कार्ड, जीएसटी या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद. क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद. सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस जीटीए. ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक, 416-671-0577, 416-671-0577, alldebtsolutions.ca.
7: Another Don Clean with the Don Ducks.
8: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
9: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
8: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
9: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
8: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
9: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
8: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
7: Dawn Platinum, the better grease getter.
0: मॉर्गेज का कोई भी काम, याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी. फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक. बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी. 647-863-1940 647-863-1940.
10: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 pounds की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 months एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
11: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड

0: Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर एंड विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग से मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं. और याद रखें दोस्तों, द फ्री सेमिनार आपके लिए स्पेसिफिकली ये डिजाइन किया गया है संडे आफ्टरनून 12:30 to 3:30. आपने कॉल करके अपनी सीट जरूर रिजर्व करवा लेनी है. प्लीज डोंट वॉक इन. 905-206-1008. इस सेगमेंट को ध्यान से सुने. बाकी मोहम्मद साहब बताएंगे कि विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग पे क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है. मोहम्मद साहब आपका स्वागत है.
2: थैंक यू सो मच सनी जी. हमारे सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से और विन लाइफ टाइम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो एंड गुड आफ्टरनून जी. जी सनी जी, पिछले 18 साल से एक ही काम है हमारा कि अपनी कम्युनिटी को लिफ्ट अप करें एक ऐसे स्किल के लिए, कि एक ऐसे स्किल की तरफ जो इस वक्त दुनिया में मोस्ट इफेक्टिव, फास्टेस्ट एंड ईजिएस्ट वे टू मेक मनी थ्रू इंटरनेट है. देखें, हर बंदा चाहता है कि वो ईजी वे से पैसा कमाए. हर बंदा चाहता है कि उसकी लाइफ चेंज हो. देखें, अब दुनिया स्मार्ट हो चुकी है, हर चीज अब ऑनलाइन हो रही है. अब जितने भी दुनिया के आप डिपार्टमेंट्स उठा लें तो हर जगह पे एआई काम कर रहे हैं. आप जरा ये सोचिए और समझें कि अगर आप सख्त तरीके से, हार्ड वे से पैसा नहीं कमा सकते तो स्मार्ट वे सीखे ना जी, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने के लिए जिसमें आपको कल की फिक्र ना हो. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि अपने टैलेंट को अपनी कमाई के लिए यूज करें और जो आपका टैलेंट है उसकी वर्थ का आपको आउटकम मिलना चाहिए, जो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जिंदगी में. और हर बंदा चाहता है कि बहुत कम वक्त में उसको ज्यादा से ज्यादा कमाई हो. देखिए, हम लोगों ने ना एज अ कम्युनिटी बल्कि ये सीखा हुआ है कि जो तीन चीजें हैं ना, वो हमारी सक्सेस की सबसे बड़ी दुश्मन है. और वो आज सब एग्री करेंगे कि सबसे पहला जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो है कंफर्ट जोन. और कंफर्ट जोन कहां के क्या है कि जहां पे लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं और वो उसमें से निकलना नहीं चाहते एंड दे डोंट वांट टू चेंज देयर लाइफ. और 80% लोग, याद रखिएगा, लिटरली वो रीजन ढूंढते हैं कि अपनी लाइफ ना चेंज करें. हम इवन के वहां पे चेंज सर्टन हो, इवन वो पॉजिटिव हो और उनके लिए बेनिफिशियल भी हो ना, तो सनी जी वो चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि वो उसमें बड़े खुश होते हैं.
1: बिल्कुल.
2: सेकेंड जो सबसे बड़ा उनका दुश्मन है वो है लर्न हेल्पलेसनेस, जो मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग चेंज नहीं करना चाहते इसलिए कि हमने सीखा है कि हम कर ही नहीं सकते. ये इतनी बड़ी साइकोलॉजी है सनी जी कि ये लोगों को बहुत कम को समझ आती है. और लास्ट आता है कि जो लास्ट रेजिस्टेंस हमारे रास्ते में आती है कि हम हमेशा एक रीजन ढूंढ रहे होते हैं कि मेरे पास ये रिजल्ट अचीव नहीं हो रहा तो नहीं, ये मेरे लिए नहीं है. देखें, एक हर दुनिया में जो काम है ना वो हार्ड वे से आता है और अपने फेलियर से बंदा सीखता है. और यहाँ पे जो लोगों को, जो मोस्टली लोगों को चीज स्टॉप करती है ना, वो है व्हाट आई वांट, व्हाट दे वांट. और याद रखिएगा, जिंदगी में देयर इज नो सच थिंग इज व्हाट आई वांट, यू ऑलवेज गेट व्हाट यू आर. देखें, आपने अपनी वर्थ का लेना है. आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो ना तो आपको फैक्ट्री वर्कर जैसा ही मिलेगा. आप वहां से निकलोगे, ऊपर जाओगे.

0: सुपरवाइजर करते करते आप ऊपर जाते हो, आप जो हो उसका मिल रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आए आके एक दफा हमारा सेमिनार अटेंड कर लें और आप बिलीव करें, आप सोचेंगे कि यार ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। देखिए हमारे पास जो लोग आते हैं ना, तो बड़ी दफा कहते हैं जी हमने बहुत जी सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, लेकिन हमारी लाइफ नहीं चेंज हो रही। प्रॉब्लम बड़ा सोचने की नहीं है, प्रॉब्लम है उस पर एक्शन नहीं लेते।
1: Exactly.
0: और सेकंड चीज क्या है कि सब लोग सोचते हैं, छोटा सोचते हैं, उसको हासिल कर लेते हैं, उसी पे खुश हो जाते हैं। आज हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि घर पे बैठ के आप दुनिया, बल्कि घर आपका दुनिया में कहीं पे हो, आपको किसी का वो यानी डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने कंप्यूटर के सामने 90 मिनट बैठना है एंड यू आर मेकिंग 1.5 आवर जो पैसा बना रहे हो, जो लोग वीक्स में बल्कि महीने में बनाते हैं। देखें स्विमिंग सीखना चाहते हैं ना, आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लें, आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लें, जब तक आप पानी में नहीं उतरते ना, उस वक्त आप नहीं सीख सकते।
1: बिल्कुल।
0: तो आए आके हमारा सेमिनार अटेंड करें, माइंड ब्लोइंग। अभी लास्ट हमारा प्रेजेंटेशन हुई है, लोग बाहर बैठे हुए, यानी हमारा पूरा हॉल फुल था, वो बाहर बैठे हुए, और जब फिनिश हुआ तो कहते हैं यार हमने अपनी जिंदगी के इतने साल वेस्ट कर दिए। तो अभी मैं सबसे कहूंगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, कॉल करके अभी अपनी सीट बुक कर लें। यू विल गेट कि आपने जिंदगी में ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देखी होगी जो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। हमारा फोन नंबर है 905-206-1008, 905-206-1008, या आप जाएं winlifetime.com पे, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
1: एक्सलेंट दोस्तों, मोहम्मद साहब ने बड़े ब्रीफ तरीके से समझाया है व्हाट एंड हाउ, बाकी पहला कदम आपने उठाना है। और ये इन इस जिस अनसर्टेन टाइम से हम गुजर रहे हैं, देयर इज ऑलवेज वो एक ही बात होती है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो हम आमदनी को, इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये जानने का आपको मौका मिलेगा। फ्री सेमिनार आपके लिए डिजाइन किया गया है, हर एक के लिए, हर सैटरडे आफ्टरनून 12:30 to 3:30। प्लीज प्लीज कॉल एंड रिजर्व योर सीट, टेक योर फ्रेंड्स अलोंग, टेक योर स्पाउस अलोंग, और जितने आपके क्वेश्चंस है उसका जवाब देंगे विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग पर मोहम्मद साहब और उनकी टीम। 905-206-1008, 905-206-1008। मोहम्मद साहब बहुत बहुत शुक्रिया,
0: अप्रिशिएट,
1: थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। 905-206-1008। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बाहर का तापमान जो है तकरीबन हो चुका है 21 degrees Celsius, और आज सनसेट होगा 8:53 PM पर। एंड एक बहुत ही प्यारा सा गीत है, आपकी रिक्वेस्ट है, प्ले करते हैं। कुमार सानू अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, दिल है कि मानता नहीं, गीत का फिल्म का टाइटल ट्रैक एंड गीत फिल्माया ऑन आमिर खान एंड पूजा भट्ट। फूड बैंक कनाडा ने पॉवर्टी रिपोर्ट में ओंटारियो को दिया है डी माइनस। फूड बैंक कनाडा पॉवर्टी रिपोर्ट गिव्स ओंटारियो डी माइनस, और फूड बैंक्स को एट द प्रेजेंट मोमेंट बहुत ज़्यादा डोनेशंस की ज़रूरत है। थिंग्स आर रियली रियली नॉट लुकिंग गुड। सो जो भी आप अपने स्तर पे थोड़ा भी जो कर सकते हैं, एक ब्रैम्पटन में देर इज़ अ प्लेस नाइट स्टेबल करके, अगर आप ब्रैम्पटन में रहते हैं और वहाँ पर आप ड्रॉप कर सकते हैं, 73 Hale Road पर लोकेटेड है नाइट स्टेबल। सो व्हाटएवर लिटिल बिट दैट यू कैन डू फॉर द फूड बैंक, इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू अ लॉट ऑफ फैमिलीज दैट रियली आर इन नीड ऑफ हेल्प राइट नाउ। तो चलिए गीत एंजॉय करिए, फिर उसके बाद आते हैं बहुत ही जल्द वापस।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940.

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 9054586808
1: और विजिट pujahut.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।
3: एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, एक घर सिर्फ सपनों से नहीं बनता, एक घर बनता है इरादों से, जी जान मेहनत से। अपने इरादों को एक नया मुकाम दें, अपनी मेहनत को अंजाम दें। कॉल करें रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली रियल्टी के राज जोशी को, जो काम करते हैं आपके लिए विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन। 6478661086 6478661086। राज जोशी, नाम ही काफी है।
4: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। और रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली के नॉलेजेबल रियल्टर राज जोशी जी हमारे साथ हैं। राज जी से करते हैं बातचीत। राज जी, आपका स्वागत है।
5: संजय जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आपको और प्यारे लिसनर्स को, वेरी गुड आफ्टरनून
4: जी आपको।
5: आज कमर्शियल और मेडिकल यूनिट्स की इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ सनी जी। आने वाले महीनों में जो भी भाई बहन कमर्शियल या मेडिकल यूनिट की तलाश में है, उनके लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। 2000 स्क्वायर फीट से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट तक अवेलेबल है टू ओन। स्टोवल का बिजनेस पार्क है, ये रेयर प्री कंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी है टू ओन अ फ्लेक्सिबल इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूनिट बिल्ट फॉर द वे यू वर्क। आप अपने बिजनेस को ओन भी कर सकते हैं और यूनिट को भी ओन कर सकते हैं। सो इट कट्स आउट द मिडल मैन, यानी कि द लैंडलॉर्ड। तो जो ओवरहेड है वो आपका रेंट का नहीं, आपके लिए एक वेल्थ भी बिल्ड हो रही है बाय पेइंग इनटू द मॉर्गेज फॉर दैट यूनिट। मॉडर्न फ्लेक्स और इंडस्ट्रियल कॉन्डोमिनियम यूनिट्स हैं ये इन द हार्ट ऑफ यॉर्क रीजन। और जो हाइट है वो है 24 फुट की और ड्राइव इन डोर्स हैं 10 फुट बाय 14 फुट। फ्लेक्सिबल जोनिंग है और फोर्थ क्वार्टर 2026 में आपकी ओनरशिप हो सकती है। इसमें मेडिकल क्लिनिक, रेक्रिएशन, फिटनेस स्टूडियो, प्रोफेशनल ऑफिस, शोरूम, वेयरहाउस डिस्ट्रीब्यूशन, फूड प्रोडक्शन, पेट सर्विस, प्रिंट एंड साइनेज, मैन्युफैक्चरिंग, मच मच मोर। हमें कांटेक्ट कर लें अगर आप इसकी और इंफॉर्मेशन चाहते हैं। वेरी क्लोज टू 404 और GTA का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस कम्युनिटी है ये। तो अगर आप इसको अपना एड्रेस बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली डोंट मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी। 9 मिनट्स टू 404 है और 407 मार्कम से 15 मिनट की दूरी, स्टोविल गो स्टेशन से 5 मिनट की दूरी, डाउनटाउन टोरंटो से 45 मिनट। बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, कॉल कर लें एंड वी कैन शेयर द डिटेल्स विद यू। तनी जी, हमेशा हम इस प्लेटफॉर्म का शुक्रगुजार करते हैं जहां से हम साउथ एशियन कम्युनिटी के भाई बहनों से जुड़ते हैं, वेदर रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, वी आर ऑलवेज देयर टू सर्व यू 24/7। हमें आप किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं और स्पेशल पैकेज लिसनर्स के लिए होता है होम, फ्री होम एवेल्युएशन का, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। हमें कॉल करें एंड वी कैन डिस्कस द डिटेल्स एंड ड्रॉ प्लान्स फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया, विशिंग एवरीवन अ वंडरफुल आफ्टरनून।
4: जी बहुत बहुत शुक्रिया राज जी। एंड 6478661086 6478661086 राज जोशी जी का नंबर है, बहुत ही नॉलेजेबल रियल्टर है। राज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
5: थैंक यू सर जी।
4: थैंक यू सर। 6478661086 6478661086 इज द नंबर। और अगली रिक्वेस्ट जो आपकी आई है वो ज़रूर आपके लिए प्ले करते हैं। और आगे चलकर ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से सुल्तान जी भी हमारे साथ होंगे एंड उनसे भी बातचीत हो करेंगे। कैनेडा पोस्ट यूनियन रिप्रेजेंटिंग 55,000 वर्कर्स से दे हैव वोटेड इन फेवर ऑफ द न्यू ईयर न्यू 5-year कॉन्ट्रैक्ट। सो गुड, आज की तारीख में जो है लोगों के पास जॉब्स हो और मुश्किलें ना आए ज़्यादा, दैट्स व्हाट एवरीबडी वुड वांट। चलिए एनीवेज, केके की आवाज़ में अजब सी ब्यूटीफुल सॉन्ग आपके लिए, आप ही की रिक्वेस्ट लाइन अप कर दिया है।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940।
1: हाय अंजू, कैसी हो? हाउ इज योर सन डूइंग?
2: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
1: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
3: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 9054573232। क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कैंडा।
4: कॉन्डो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है? बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे डे वन से। कॉन्टेक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ। 416-666-2745।
5: Another Don Clean with the Don Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.
8: अक्सर घर खरीदे में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है। ऐसा क्यों?
9: नया इलाका और नया घर, अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं। घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान। फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सहगल, 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट paulsecurity.com। प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन।
0: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। Brampton Crematorium and Visitation Center and Ajax Crematorium and Visitation Center में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brampton Court in Brampton, 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcvc.info और 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 और acvc.info।
10: अब घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान की सर्विस हो गई बिल्कुल टेंशन फ्री। अप्लायंस टू फिक्स है आपका भरोसेमंद सर्विस पार्टनर। फ्रिज, ओवन, चूल्हा, डिशवॉशर, वॉशिंग मशीन या ड्रायर, सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान की सर्विस एक ही जगह। तजुर्बेकार टेक्नीशियन, समय पर काम का वादा। अप्लायंस टू फिक्स, अभी कॉल करें हरविंदर 6474071470, 6474071470। आपके घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान अब रहे हमेशा फिट।
11: कैंपिंग दा प्लान ता मस्त सी, पर टोयोटा टकोमा दे बिना सारे लोग जिथे तुसी भी पहुंचे उथे। जेकर रेड टैग डेज च तुसी टकोमा ले आओ ता इस दी जबरदस्त समर्था ते दमदार आई फोर्स इंजन तुहानू ले जावे थोड़ा होर दूर, सकून दे होर नेड़े। रेड टैग डेज दा लाभ लाओ। लीज करो 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 $114 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.69% $4900 डाउन दे नाल। विजिट shoptoyota.ca या अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जाओ।
12: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और हमारे साथ रियल्टर जितेंद्र गंदम है। एक मस्कोका में बहुत ही ज़बरदस्त कॉटेज प्रॉपर्टी है और सेलर इज़ वेरी वेरी हाईली मोटिवेटेड। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली जितेंद्र जी से इस सेगमेंट के बाद संपर्क करें। नंबर है 416-265-2222, 416-265-2222। जितेंद्र जी, थोड़ा स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर।
13: हैलो, सत श्री जोशी भाजी, गुड आफ्टरनून। तो अब आप अपने स्रोतों लिए मस्कोका के कॉटेज लैके आए हैं। यह जी कॉटेज है 2 एकड़ के लॉट के बनी हुई है। 2 साल तो घट समा हो इस कॉटेज में बने हुए। 3 बैडरूम ने, 3 वाशरूम ने, प्लस थोड़े को अनफिनिश बेसमेंट है जिद एक्सट्रा बैडरूम बना सकते हो। फुली अपग्रेड प्रॉपर्टी है। यह प्रॉपर्टी एयरबीएनबी से चल रही है पिछले 1.5 साल तो। लास्ट ईयर 2025 के लगभग $1,00,000 के लगे शगे एयरबीएनबी तो रेवन्यू से, प्लस ओनर आप भी उत्थे जाके रह रहे हैं। जे तुसी इस प्रॉपर्टी नूं लेना चाहुंदे हो इदां दी कॉटेज, ते साडे नाल गलबात कर लिओ। साडा नंबर 416-265-2222। री स्टेट की मार्केट दे विच कोई भी प्रॉपर्टी बाय करना चाहुंदे हो जां सेल करना चाहुंदे हो, कॉल 416-265-2222। थैंक यू वेरी मच।
12: ਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ 416-265-22 416-265-22 416-265-2222 ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਕਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਬਾਕੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇ ਲਈ ਆਪ ਉਨਸੇ ਸਭ ਫੌਰਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਐਂਡ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਂ ਗਲਤੀ ਸੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਮੇਂ ਔਰ ਯੇ ਮਿਸਟੇਕ ਜੋ ਹੈ ਜੱਗਾ ਜਾਸੂਸ ਕੇ ਵਕਤ ਮੁਝੇ ਲਗਤਾ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਸੇ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਜਬ ਉਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਹੈਡ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਕੋ ਬਣਾਤੇ ਬਣਾਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਬਾਸੂ 3-3.5 ਸਾਲ ਲਗਾ ਦੇਂਗੇ ਔਰ ਗਲਤੀ ਸੇ ਐਸੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਗੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬਰਫੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਆਈ ਥੀ ਵਿਦ ਰਣਬੀਰ ਐਂਡ ਅਨੁਰਾਗ ਬਾਸੂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰਕ ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਐਸੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜੋ ਹੈ ਗਲਤੀ ਸੇ ਮਿਸਟੇਕ ਸੇ ਚਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਟ ਦਾ ਸੌਂਗ ਰਿਲੀ ਡਿਡ ਵੈਲ ਇੰਜੋਏ ਦਾ ਸੌਂਗ ਆਤੇ ਹੈ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਵੀ ਹੋਂਗੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940.

0: जोशी
1: सुनदे हो, मेरे प्रादी अज फ्लाइट है इंडिया तो।
2: ओ याद है पर उनू कहीं कि आउंदा होया एक प्लेट छोले भटूरे दी फड़ लियावे।
1: इंडियन स्वाद वाले छोले भटूरे खा ले, इंडिया दे सुपने ना देखो। choleBhature.ca ते चलो।
3: choleBhature.ca बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे ते होर भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड ले पहुंचो। choleBhature.ca कॉल 9054582448।
4: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga, and 1 by Vaughan Mills.

0: Unlimited Radio on CMR 101.3 FM, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. Welcome back, friends. Ek baar phir se aapka swagat hai. Hum pahunch chuke hain Brampton TV and Appliances, 801 Bovade Drive West, at the corner of Bovade and Chinkusi, and Brampton TV Appliance Laundry ke Sultan. Sultan ji hamare saath hai. Open 7 days a week, 11 a.m. to 7 p.m. And the number to call is 905-450-2828. Kai gharon ki dosto closings chal rahi hain. Aur closings mein sabse pehle jo cheez aapko chahiye hoti hai, appliance, laundry. And main sochta hoon ki wahin se shuru kar lete hain. Sultan ji se sultanic deals aap को आपकी क्लोजिंग से पहले दिलवा देते और आप जो है पहुंच जाइए ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस पर. सुल्तान जी आपका स्वागत है.
1: थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई. और जैसे आपने बताया जी, बहुत सारे घरों की क्लोजिंग हो रही हैं अभी. आप बिलीव करें कि हमें किचनर, कैम्ब्रिज, स्टोनी क्रीक, वेलेंट और नियाग्रा फॉल साइड की इतनी क्लोजिंग्स आ रही हैं और कस्टमर इतना फायदा उठा रहे हैं. उसकी रीजन ये है कि अगर वो ले रहे हैं फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, थ्री पीस किचन बंडल, तो $5,000 वाला उन्हें मिल रहा है $29.99 में. $2,000 कस्टमर सेव करेंगे. किचन स्टेनलेस स्टील किचन का बंडल है ये. और अगर लॉन्ड्री ऐड करते हैं जी, तो टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर $1,700 वाला सिर्फ $10.99 का है. और अगर स्टैकेबल वॉशर एंड ड्रायर चाहिए, वॉशर नीचे ड्रायर ऊपर स्टैक हो जाएगा, $2,200 वाला $14.99 का है. $700 लॉन्ड्री सेक्शन में और $2,000 किचन सेक्शन में सेव करने के बाद टोटल सेविंग $2,700 बनती है. और कस्टमर फ्री डिलीवरी हम करेंगे कस्टमर्स को. और कस्टमर 6 मंथ में पे कर सकते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, फ्री होम डिलीवरी के साथ. इसके लिए आपको विजिट करना है 801 Bovade Drive West, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी, ऑन Bovade है जी. Brampton Appliances, ये वन वर्ड है, BramptonAppliances.com. हमारी वेबसाइट से डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी ले सकते हैं, प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. और वॉक इन कस्टमर को जो एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो कि अप टू 40% तक का डिस्काउंट है, उसका भी फायदा उठा सकते हैं. 905-450-2828 हमारा नंबर है जी. 905-450-2828 जी.
0: 905-450-2828. यहाँ पर अप्लायंस लॉन्ड्री के सेक्शन में मैं क्विकली ये भी चाहूंगा कि कुछ हमारे पास रेंटल प्रॉपर्टीज भी लिसनर्स के पास होती हैं, तो उनके लिए कोई स्पेशल्स अगर आप बताना चाहें, क्योंकि रेंटल प्रॉपर्टी जब टेनेंट आता है, नया टेनेंट आता है, तो लॉट ऑफ टाइम्स वी नीड द एंटायर सेटअप टू बी चेंज्ड, तो उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें.
1: जी बिल्कुल, डेफिनेटली जी. अगर कोई भी एग्जिस्टिंग घरों के लिए या रेंटल प्रॉपर्टी के लिए कोई भी होम अप्लायंसेस लेना चाहते हैं, सिंगल वॉशर चाहिए 649 में मिल जाएगा, सिंगल ड्रायर चाहिए 549 में मिल जाएगा, सिंगल डिशवॉशर चाहिए आपको किचन में $900,000 वाली 499 में मिल जाएगी, सिंगल स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव चाहिए $1,200 वाला 799 का स्पेशल प्रमोशन पे आया है, 30 इंच अपराइट फ्रीजर के साथ फ्रिज चाहिए आपको तो वो भी $1,400 वाला 899 में स्टेनलेस स्टील का मिलेगा. कुछ भी होम अप्लायंसेस में चाहिए आपको तो बिल्ट इन किचन के साथ भी हमारे पास 40% का डिस्काउंट है, जिसमें बॉश का बिल्ट इन कुकटॉप, बॉश का बिल्ट इन वॉलवन, बॉश का बिल्ट इन माइक्रोवेव, बॉश कंपनी का ही बिल्ट इन काउंटर डेप्थ फ्रिज, पूरे का पूरा बिल्ट इन किचन जो है $16,000 वाला सिर्फ $9,900 में है. $6,100 आप बॉश के बिल्ट इन किचन पे भी सेव करेंगे. ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 Bovade Drive West, जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी, ऑन Bovade है जी. 905-450-2828, 905-450 28 जी.
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस. दोस्तों मैं ये जरूर बता दूं कि जो डील्स हमारी कम्युनिटी को डेकेड्स हो गए, मतलब ये कोई 5-10 साल की बात नहीं है, डेकेड से जो डील्स हमें ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस से मिल रही हैं, सुल्तान जी से मिल रही हैं फॉर टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री, आर कम्युनिटी नोज दैट. और जिस तरह से एक हर हफ्ते, हर महीने, हर त्योहार पर, फेस्टिवल्स पर अमेजिंग डील्स मिलती है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हमने उतना ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस को सपोर्ट करना है, because Brampton TV and Appliance ne hame always amazing deals diye. सुल्तान जी टीवी सेक्शन पर थोड़ी सी रोशनी डालें, क्या अमेजिंग डील्स है फॉर दिस वीकेंड?
1: सनी भाई टीवी सेक्शन में फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर रहा है जी सैमसंग, उसकी वजह से सैमसंग ने एक्सक्लूसिव डील्स दी हैं अपने हाई एंड डीलर्स को, जिसमें 801 बोवे ड्राइव वेस्ट ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस टॉप ऑफ द लिस्ट आ रहा है जी इस वक्त। इसीलिए 85 इंच का QLED क्वांटम डॉट क्वांटम प्रोसेसर के साथ 85 इंच QLED हाई एंड टेक्नोलॉजी सैमसंग ब्रांड में आपको $2000 वाला स्पेशल प्राइस पे सिर्फ $1299 में मिलेगा। $700 आप 85 इंच बिग स्क्रीन टीवी पे सेव करेंगे, क्योंकि सैमसंग पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है जी इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप को, तो इसको मिस ना करें, इसका जरूर फायदा उठाएं। इतनी प्राइसेस ड्रॉप कभी भी नहीं सैमसंग कंपनी में अपने हाई एंड टेक्नोलॉजी पे की, जितनी फीफा वर्ल्ड कप की वजह से बिग स्क्रीन टीवी में ड्रॉप किया गया है, और वो भी आपने 6 मंथ में पे करना है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। इवन 55 इंच चाहिए सिर्फ $399 में मिल जाएगा, 65 इंच चाहिए सिर्फ $699 में मिल जाएगा, 79 इंच आपको मिलेगा, सॉरी 95 इंच ये हमारे पास स्पेशल पे आया है जी सैमसंग का, 98 इंच जो $3500 वाला सिर्फ $1999 में मिलेगा। सो 98 इंच द बिगेस्ट स्क्रीन फ्रॉम सैमसंग आपको मिल रहा है सिर्फ $1999 का, बोवेड एंड चिंकूजी पे ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ जी, $3000 तक की भी शॉपिंग करें तो $500 अ मंथ करके पे कर सकते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्यों ना फिर 98 इंच बिग स्क्रीन टीवी वो भी $1999 का अपने घर में लगवाएं, और फीफा वर्ल्ड कप पे स्पोर्ट्स के शौकीन जो हैं इस स्पोर्ट्स इवेंट को बिग स्क्रीन टीवी पे एंजॉय करें। हमारे पास स्पेशल प्राइस है, स्पेशल डिलीवरी फ्री है, और स्पेशल ही आप 6 मंथ में पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। 905-450-2828 905-450-2828 जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान जी,
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया
0: जी। 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। उसे हम याद आते हैं फकत फुर्सत के लम्हों में, उसे हम याद आते हैं फकत फुर्सत के लम्हों में, मगर ये बात भी सच है कि उसे फुर्सत नहीं मिलती, मगर ये बात भी सच है कि उसे फुर्सत नहीं मिलती।

जी हाँ दोस्तों, यहां पे लेते हैं आपसे इजाजत। अब मुलाकात आपसे होगी कल 12 बजे ऑन सीएमआर 101.3 एफएम। शो के बाद बातचीत करनी है, नंबर एक ही है 6478631940। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm. The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
2: क्या आप सुन रहे हैं?
3: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं.
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए.
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए. रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए.
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा. कॉल 416-303-3639. इट्स 416-303-3639.
5: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, और मैं हूँ शालिनी और आपका वेलकम करती हूँ मैं सीएमआर एफएम 101.3 पर. और आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सी नई शुरुआत होने जा रही है. मेरी प्यारी बहन शिवानी और मेरे अच्छे दोस्त आमिर लेकर आ रहे हैं दिलों को जोड़ने वाला शो, लवी डवी शो, जो आपका चहेता शो है. कितने सालों से आप ये शो सुनते हैं और अब ये शो सुनेंगे आप हर दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक, और उसके तुरंत बाद आपकी अपनी शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी चलेगी 3 से 4 बजे तक, ढेर सारी मस्ती, हंसी, गाने और एंटरटेनमेंट के साथ. कहते हैं ना दोस्तों, जहां प्यार की बातें खत्म होती हैं वहीं दोस्ती और मस्ती का सफर शुरू होता है. तो दोस्तों, पहले 1 घंटा दिल की बातों के नाम और फिर 1 घंटा दिल खोलकर हंसने और गुनगुनाने के नाम. लवी डवी आपको सिखाएगा रिश्तों की मिठास और मस्ती की रेलगाड़ी भर देगी आपके दिन में हंसी और उल्लास. एक शो दिलों को करीब लाएगा और दूसरा चेहरों पर मुस्कान सजाएगा. तो याद रखिएगा दोस्तों, 2 से 3 बजे शिवानी और आमिर के साथ लवी डवी और 3 से 4 बजे शालिनी के साथ शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी. तैयार हो जाइए दोस्तों, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी मस्ती, ढेर सारा धमाल और अनगिनत मुस्कानें लेकर आ रहे हैं आपके पास सिर्फ और सिर्फ आमिर और शिवानी. लवी डवी शो का हम करते हैं स्वागत 2 से 3 सीएमआर एफएम 101.3 पर. गुड आफ्टरनून.
3: आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो टोरंटो कनाडा, हवा के दोष पर आप तक पहुंचती हुई ये आवाज आमिर तुफैल की है. कबूल कीजिए मेरा अकीदत भरा अस्सलाम वालेकुम, स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी नमस्कार और दिल की अथाह गहराइयों से निकलती हुई सत श्री अकाल. मैं रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से आपका स्वागत करता हूं. आपका खैर मकदम है. लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड डॉल्स, दिस इज लवी डवी शो एंड टुगेदर वी विल किस The airwaves of Toronto this afternoon. Mwah.

0: हो, आपका बेनिफिट हो, आपकी भलाई हो, आपकी बेहतरी हो, और कोई भी कारोबार हो जिसमें आपकी बेहतरी, आपकी भलाई छुपी हुई है, उसको प्रमोट करना, उसको आप तक पहुंचाना, उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत पैशनेट, एक बहुत एक्साइटेड और एक बहुत ही स्किलफुल लड़की से मेरी मुलाकात हुई, मेरी बात हुई। वो अपने काम में बहुत कमिटेड हैं। इनका ये कहना है कि काम तो सभी करते हैं, लेकिन वो काम जिसमें लोगों की भलाई और बेहतरी और नेकी और बेनिफिट शामिल हो, वो इंसान को सुकून बहुत देता है। आज हम इनसे बात करेंगे। आपके फाइनेंसेस को देखती हैं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखती हैं, आपके हालात को देखती हैं, और उसके बाद फिर आपको बेहतरीन सलाह और बहुत अच्छा मशवरा देती हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लवजोत जी। वेलकम करते हैं मैडम आपको।
1: हाँ जी, थैंक यू आमिर जी, आपका और आपके सभी लिसनर्स को वेरी गुड आफ्टरनून.
0: गुड आफ्टरनून जी।
1: यस
0: सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, गाहे बगाहे आपसे इस प्रोग्राम के दौरान बात होती रहेगी। बहुत से काम थे, आप रियल स्टेट के हवाले से बात करें, मोर्टगेज के हवाले से बात करें, या और भी बहुत से काम थे दुनिया में, तो व्हाई डिड यू चूज इंश्योरेंस, क्यों?
1: इट्स समथिंग लाइक आई फेल्ट इट लाइक इंश्योरेंस, क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं मार्केट में. इट्स नॉट लाइक कि मैं अकेली हूँ,
0: जी
1: बट द थिंग विच आई फेल्ट इन द मार्केट इज़ लाइक कि समटाइम्स लाइक इंश्योरेंस को जो आपको एक ट्रू एडवाइस चाहिए वो मिसिंग है, जहाँ फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आपको एक्चुअल में चीज़ चाहिए वो नहीं मिल रही. समटाइम्स एडवाइजर्स अपनी कमीशन, अपने फ़ायदे के लिए आपको वो प्रोडक्ट नहीं देते, जहाँ कई बार हमें अभी भी कॉल आती है, वो कंप्लेन करते हैं कि हमने इंश्योरेंस ली थी किसी से 2 साल पहले, अब वो काम छोड़ चुके हैं, जहाँ वो अब हमारा कॉल नहीं पिक करते. तो इंश्योरेंस इज़ समथिंग कि अगर आप इंश्योरेंस सेल कर रहे हो, साथ ही साथ आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि जब उन फैमिली को उनको आपकी ज़रूरत होगी तो
0: जी
1: यू विल बी द फर्स्ट वन टू हेल्प देम.
0: बिल्कुल सही।
1: सो दिस इज़ द रीज़न आई फेल्ट लाइक कि इट्स नॉट लाइक कि आई एम डूइंग लाइक सम डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस, इज द सेम थिंग आई एम डूइंग जो बाहर मार्केट में सभी कर रहे हैं. द ओनली डिफरेंस इज लाइक आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू प्रोवाइड द सर्विस टू द पीपल, कि इंश्योरेंस के साथ साथ जब उनको मेरी ज़रूरत है आई एम जस्ट अ कॉल अवे, जब उनको उनकी फैमिली को मेरी ज़रूरत है तो वो कॉल करें, तो वो आपको इट्स लाइक कि इट्स अ पीस ऑफ माइंड कि वी आर देयर फॉर देम. जब उन्होंने इंश्योरेंस लिया और दे नो कि हमने इंश्योरेंस कराई है, कि उनकी फैमिली को सपोर्ट होगी जब वो अराउंड नहीं है और उस टाइम हम अराउंड है.
0: बिल्कुल ठीक। यहाँ नंबर है लवजोत कौर को, फोन जरूर कीजिए, बात कीजिए। शी इज अ वंडरफुल पर्सन एंड शी विल टेल यू हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस एंड How to make your life safe and secure. 416-877-8134. इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। खुदा ना खास्ता फैमिली में कोई बीमार हो जाए और वही ब्रेड विनर हो, वही घर का करता धरता हो, वही पैसा बना रहा हो, वही बीमार पड़ गया है, तो ऐसे में मैंने फैमिलीज को स्ट्रगल करते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए, तड़पते हुए, परेशान होते हुए देखा है, तो आप ऐसी सिचुएशन में कैसे हेल्प करती हैं फैमिलीज की?
1: सो बेसिकली ये होता है कि जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, इंश्योरेंस इज समथिंग कि हमें अपने रिस्क कवर करने हैं. जब ऐसा सिचुएशन होता है कि मेन ब्रेड अर्नर जो है वो काम पे नहीं जा सकता, स्पेशली अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उनको ये रिस्क पहले से ही कवर रखना चाहिए अपना, क्योंकि हम इतना हार्डवर्क इस कंट्री में इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी फैमिली को, हमारे बच्चों को एक बेटर फ्यूचर मिले, कंफर्टेबल लाइफ मिले, और वो चीज़ जब हम इजीली एज अ मनी अर्न करके प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेक श्योर करना है कि अगर हम उनके अराउंड नहीं है तो वो भी हम रिस्क कवर करें और वो लाइफ और वो सारा जो भी कंफर्ट जोन है उनकी वो कंटिन्यू रहे.
0: बिल्कुल
1: तो
0: ठीक।
1: ये चीज़ है कि जब मान लो कि आपको कोई इंजरी हो जाती है तब आप काम पे नहीं जा रहे, उसके लिए आप डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ले सकते हो. अगर आपको कोई सिकनेस हो गई है, सिकनेस के कारण आप काम पे नहीं जा रहे, उसके लिए आप क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस ले सकते हैं.
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही।
1: ये चीज़ है।
0: यहाँ नंबर है एक बार फिर से लवजोत कौर जी का, नंबर दे रहे हैं आपको, ये नंबर मिलाइए, बात जरूर कीजिए, बात करेंगे, कोई रास्ता, कोई तरीका, कोई मेथड जरूर निकलेगा आपको सेफ और सिक्योर कराने का। आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि एक आध कॉफी का कप जिस पर एक दो डॉलर आप खर्च करते हैं, सिर्फ इतना ही पैसा खर्च करें तो आपका घर

सेफ हो सकता है, सिक्योर हो सकता है, फाइनेंशियल ट्रबल रुक सकती है आपकी, ये है नंबर 416-877-8134, 416-877-8134, 416-877-8134. Stay tuned. This is Lovey Dovey Show.

0: लवी डवी शो, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ, और बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लिसनर्स के कॉल आ रहे हैं और वक्त हो चला है 2:20, और हमसे रबते का नंबर है इन द स्टूडियो 416-593-0055। इट्स 416-593-0055, और शो के बाद हमसे आप जिस नंबर पर रबता कायम कर सकते हैं वो है 416-303-3639। आई रिपीट, 416-303-3639। और आमिर, एक बहुत अच्छा थॉट है जो कहता है, ऑन दिस रोड कॉल्ड लाइफ, लाइफ एक रोड की तरह ही है, हम हर सुबह एक जानी पहचानी या फिर अनजानी मंजिल की तरफ निकल ही पड़ते हैं। कहते हैं, ऑन दिस रोड कॉल्ड लाइफ यू हैव टू टेक द गुड विद द बैड, स्माइल थ्रू द सैड, लव व्हाट यू हैव एंड चेरिश व्हाट यू हैड, Always forgive but never forget. Learn from your mistakes but never regret. People change, things go wrong, but always remember life goes on.
1: वाह, जिंदगी चलती रहती है, उतार चढ़ाव जरूर आते हैं, नशेबो फराज का आपको सामना करना पड़ता है। कहीं आपको लगता है रास्ता बहुत आसान है, लेकिन रास्ता जब आप चुनते हैं तो तब अंदाजा होता है कि उतना आसान नहीं जितना आपने सोचा था।
0: बम्प्स हैं और
1: जी बिल्कुल, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है जिंदगी में, वो लोग जिन्होंने चैलेंज लेना चैलेंज करना सीखा नहीं है, उन्होंने जिंदगी के राज को पाया नहीं है। हर मुश्किल में, हर कठिन और दिक्कत तलब मरहले में जो चेहरे पे मुस्कुराहट को सजाए रखते हैं, जिंदगी उनका इस्तकबाल करती है। और वो जो हिम्मत हार जाते हैं, पसपाई इख्तियार कर जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, उनके लिए जिंदगी वाकई बहुत मुश्किल हो जाती है। जिंदगी वैसी ही है जैसी आप सोचते हैं।
0: क्या बात है। और कहते हैं ना, माजी को अपना दोस्त बना लीजिए, नहीं तो वो आपका जो आज है वो खराब करके रख देगा। तभी जो पिछली बातें हैं, जहां
1: माजी का कोई फोन नंबर मिल सकता है।
0: माजी अपना फोन नंबर बदलता रहता है और कहता है कि फोन पे डिपेंडेंट बिल्कुल ना रहिए, बस दिल का जो नंबर है वो डायल करते रहिए। और जो पिछली कई माजी में हमारे लिए बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, अपने प्रोफेशन के लिहाज से, अपने रिश्तों के लिहाज से, अपनी फैमिली के लिहाज से, पढ़ाई लिखाई बचपन के लिहाज से, उनको अपने साथ एक बहुत अच्छी यादों की तरह रखिए। जब भी जरूरत हो, दिल के लॉकर से निकाल के, अकाउंट से निकाल के उसको इस्तेमाल किया, वापस सेविंग में डाल दिया। लेकिन उससे ज्यादा अगर आपने उसको आज पे हावी होने दिया
1: जी बिल्कुल,
0: तो शायद, क्योंकि वो आज का टाइम हो सकता है कल वाला ना हो फॉर द टाइम बीइंग, तो फिर हमें अनोइंग लगता है, इरिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, हमारा आज जो है उसको भी खराब कर देता है।
1: आज में रहिए, जैसे हम हमेशा कहते हैं, लम्हे मौजूद में रहिए, आप बहुत खुश रहेंगे, यही पैगाम है। खुशियां जितनी आपको चाहिए उतनी बांटने लगें, आपकी जिंदगी में बढ़ जाएंगी।
0: बिल्कुल,
1: आपको मजा जितना चाहिए, लुत्फ जितना चाहिए वो बांटने लगें, आसानियां जितनी चाहिए वो बांटने लगें, आपकी जिंदगी में वाफिर मकदार में मौजूद होंगे। स्टे ट्यून्ड, दिस इज लवी डवी शो।
2: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट वन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: मम्मा, why don't you go to work now?
7: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है, एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
8: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
7: क्या वो मदद करेंगे?
8: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई, तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस
9: एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री.
10: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट. डायरेक्टली कॉल सैयद इमरजा ऑफ सैयद लॉ. सैयद लॉ से सैयद इमरजा,
9: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले.
10: कॉल सैयद इमरजा 416-937-5046. दैट इज 416-937-5046.
11: सिर्फ मॉर्गेजेस. दैट्स राजीव तलवार, द मॉर्गेज सुपरस्टार. मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार. मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा. तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं. कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 905-819-1001. License number 12374.
12: Nikki Gandhi of Home Life Miracle Realty brings you brand new freehold townhomes in Brampton. Mavis Road and Ray Lawson Boulevard ke Asan se intersection par Rollingwood Towns launching June 1st. Starting price just from $600,000. 3 se 5 bedroom options available. Approximately 1300 se 1900 square feet ke layouts available. Extended deposit structure, extended closing available and great incentives for first time home buyers. Early launch pricing or limited release ke liye exclusively call Nikki Gandhi at 416-456-3815. That's 416-456-3815. Your trusted listing agent for Rollingwood Towns for VIP access, pricing and floor plans. Don't miss this opportunity.
13: The Lovey-Dovey Show, driving you home. A melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada. Monday to Friday,

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह $500 से $1500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584
3: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, सजेगी शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
4: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
5: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.
2: लवी डवी शो, आप हैं शिवानी और आमिर के साथ, आमिर और शिवानी के साथ, और दोपहर का टाइम है। कहते हैं ज़िंदगी जो है ना, देखिए आफ्टरनून का टाइम बड़ा अलग है, हम सुबह में करते थे, अभी इस वक्त लोग दौड़ भाग एक दूसरे काम के लिए कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल से पिकअप करने जाना है, लेडीज़ की एक अलग मसरूफियत है, जॉब वालों की एक, कुछ लोग हैं अभी फारिग होने वाले हैं वो अपना बस वाइंड अप कर रहे हैं, कुछ लोग एक घंटे के बाद वाइंड अप करेंगे तो जल्दी जल्दी अपना काम कर रहे हैं। रोड्स पर बहुत सारे लोग हैं, दे आर लिसनिंग टू लवी डवी शो विद द लवी डवी एटीट्यूड, दैट्स व्हाट मैटर्स, राइट? और कहते हैं लाइफ जो है वो एक म्यूजिक की तरह होती है। लाइफ इज लाइक म्यूजिक, इट हैज हाई नोट्स, इट हैज लो नोट्स, जैसे म्यूजिक में हाई नोट्स होते हैं, लो नोट्स होते हैं। नो मैटर हाउ हाई और लो योर नोट्स मे बी, कीप इन ट्यून विद गॉड एंड यू विल नेवर गो आउट ऑफ ट्यून इन द म्यूजिक ऑफ लाइफ।
8: क्या बात है, आपने बड़ी अच्छी तशबीह दी है, यानी जिंदगी को म्यूजिक की तरह रखा है। मैं इसको यूं कहना चाहता हूं, जैसे जिंदगी में कोई बड़ा खुशगवार, खुशनुमा, खूबसूरत वाकया होता है तो वो किसी फिल्म के आइटम सॉन्ग की तरह होता है। आप उसको बड़ा एंजॉय करते हैं, आप उसमें रहने लगते हैं, आप उसका लुत्फ लेने लगते हैं, मज़ा लेने लगते हैं। और कभी कभी जैसे फिल्म में एक सैड सॉन्ग होता है, आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ना खुशगवार और बहुत अफसोसनाक लम्हे आते हैं, परेशान कुन लम्हे आते हैं, यू फील डाउन, यू फील टेरेबल। एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी हीरो हीरोइन का मिलाप फिल्म में बहुत देर के बाद होता है और उसे हम विसाल कहते हैं आम जुबान में, और आप चाहते हैं कि फिल्म वहाँ ठहर जाए, اب نہ ہیرو ہیروئن سے بچھڑے اور نہ ہیروئن ہیرو سے.
2: اس چکر میں لوگ پوری فلم دیکھ لیتے ہیں.
8: پوری فلم زندگی کے بھی کچھ لمحے ایسے ہی ہوتے ہیں.
2: ہاں جی.
8: ہمارا جی کرتا ہے بس یہاں ٹھہر جائے زندگی. یہی ہے زندگی اور یہی ہے زندگی کا حاصل. لیکن زندگی کو آگے بڑھنا ہے, فلم کو ختم ہونا ہے, اس میں انٹرولز بھی آنے ہیں اور فلم کے بعد فلم کی صرف یاد رہ جائے گی. اسی طرح سے اگر فلم میں میسج اچھا ہے, ہیرو ہیروئن دونوں سلامت رہے فلم کے اینڈ کے بعد, تو ہم خوش رہتے ہیں کہ یار ہیرو بھی زندہ تھا, ہیروئن بھی زندہ تھی, مل لیے, ویلن کی کہانی ختم ہو گئی,
2: دے لیوڈ ہیپیلی ایور
8: آفٹر. لیکن اگر دونوں میں سے ایک بھی چلا گیا زندگی میں, تو پھر ہم بڑے افسردہ ہو جاتے ہیں اور وہ فلم ہمارے ذہنوں میں ثبت ہو جاتی ہے کہ کاش ہیروئن زندہ رہ جاتی ہے نا, ہمارے دل میں خلش رہتی ہے. تو زندگی بھی ایسی ہی ہے, ہم سوچتے ہیں کاش ہم یہ کر جاتے, کاش یہ غلط کام نہ ہوتا, یہ خراب کام نہ ہوتا, یہ رانگ ڈوئنگ نہ ہوتی. تو اس لیے پچھتاووں سے بچیے.
2: ہر کسی کی لائف میں کچھ کاش ضرور رہ جاتا ہے.
8: کاش ضرور رہ جاتا ہے. بالکل بالکل بالکل.
2: یہ کہتے ہیں نا کہ ہر آفٹرنون میں میں لائف سے ایک بات کہتی ہوں کہ زندگی تو آ بس بیٹھ جا میرے ساتھ چائے پی, تو بھی تھک گئی ہوگی مجھے بھگاتے بھگاتے.
8: زندگی چائے اکیلی چائے پہ خوش نہیں ہوتی.
2: اچھا.
8: اس کو پورا مرغن کھانا کھلانا پڑتا ہے, اس کے لیے پورا اہتمام کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے شائیے, زہرانے, دوپہر کا کھانا, شام کا کھانا, منچنگ سب کرانا پڑتا ہے, پھر بھی خوش نہیں ہوتی. یہ زندگی کبھی خوش ہوتی نہیں, آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے زندگی کے ساتھ, مجھے لگتا ہے ایسا.
2: چلیے دوپہر میں آنے کی خوشی میں آپ کی بات مان لیتے ہیں.
8: بالکل. اور دوبارہ زندگی اگر آپ کے ساتھ رجوع کرے تو آلو بینگن ضرور کھلانا. ریڈیو ٹورنٹو کینیڈا کی گھڑیوں پر 2:42 ہوئے, آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا آج 3 تک. نمبر ہے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کا 416-593-0055. اسٹے ٹیون, دس از لوی ڈوی شو.

0: और साहब बात करेंगे आपकी हेल्थ के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से। जैसे आप अपने दांतों का ख्याल रखते हैं, सुबह ही जाग के आप ब्रश करते हैं, उसके बाद आप अपनी स्किन, अपनी जिल्द का ख्याल रखते हैं, जनरल बॉडी हेल्थ बहुत प्यारी है आपको, इसी तरह से सर के बाल पूरे होना, सेहतमंद होना, पायदार होना, जड़ों का मजबूत होना, उनका सर पर मौजूद रहना, ये सब बहुत ज़रूरी है। वक्त से पहले अगर जड़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से जड़ रहे हैं तो ख्याल करने का वक्त है। इसके लिए ज़रूरी है बात कीजिए एक ऐसी प्रैक्टिशनर के साथ, क्लिनिशियन के साथ, और एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने ये स्लोगन आपको दिया है कि ना सिर्फ बाल झड़ने बंद हो जाएंगे बल्कि नए आने भी शुरू हो जाएंगे, एंड इट विल ओनली टेक यू 3 सेशंस। यहाँ ब्रैम्पटन में भी और मिसिसागा में भी जहाँ भी इनसे मुलाकात करना चाहें बात कर सकती हैं, मुलाकात कर सकती हैं। नवीन, वेलकम करते हैं आपको।
1: जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग।
0: आप कैसी हैं आफ्टरनून में, आपको कैसा लग रहा है आज?
1: बहुत अच्छा लग रहा है जी, मैं जागी जागी सी हूँ।
0: ये तो आपने कुछ ज्यादा ही ईमानदारी की बात कर दी।
1: जी बिल्कुल।
0: हाँ, माइक्रो नीडलिंग कैसे ख्याल आया आपको करने का?
1: ये आमिर जी, पहले मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, टू बी ऑनेस्ट। मैं मेकअप में और बाकी चीजों में तो काफी सालों से हूँ, सेमी परमानेंट मेकअप में, बट ये स्कैल्प माइक्रो नीडलिंग मैंने अपने ऊपर करवाई जब मेरे बहुत बाल गिर गए और मुझे लग रहा था कि मैं गंजेपन की तरफ जा रही हूँ, एंड इट वर्क वंडर्स फॉर मी, एंड दैट वॉज द टाइम आई डिसाइडेड कि ये मैंने कोर्स करना है, ये एक एडिशनल कोर्स मैं करूँगी और जिनको जरूरत है उनकी हेल्प करूँगी, एंड इट हैज़ बीन एन अमेजिंग जर्नी सिंस देन।
0: बिल्कुल ठीक। अगली बात मैं ये जानना चाहता हूँ, कितने लोगों का इलाज अब तक कर चुकी हैं, कितने लोग आपसे फैजयाब हो चुके हैं, और उनके बाल जब वापस देखती हैं आए हुए तो आपको क्या महसूस होता है?
1: महसूस तो बहुत अच्छा होता है, बस ये लोगों का जो आप पूछ रहे हैं उसमें ये है कि मेरे फोन में 90% सरों की तस्वीरें हैं, बिफोर एंड आफ्टर की, विदाउट हेयर एंड विद हेयर, और बहुत खुशी होती है देख के, और ऑफकोर्स व्हेन पीपल कॉल मी और कंसल्टेशन करते हैं तो मैं उनको पिक्चर्स सेंड करती हूँ ताकि उनको आइडिया हो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट।
0: मान लीजिए 70% बाल गिर गए हैं, 70% गिर गए हैं, तो आप वहां से भी वापस ला सकती हैं बालों को या फिर कहानी खत्म हो गई 70% गिरने के बाद?
1: 70% अगर गिर गए हैं लेकिन यू हैव सम हेयर, कुछ हेयर अभी, मतलब कुछ बाल हैं आपकी स्कैल्प पे, तो वी कैन वर्क ऑन देम और कुछ बाल आपके वापस आएंगे, बट ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स के कंसल्टेशन करें, पिक्चर्स भेजें, मैं आपको बताऊंगी, एंड देन वी कैन यूज दिस टेक्निक, स्कैल्प माइक्रो नीडलिंग जिसको कहते हैं, और आपके हेयर फॉलिकल्स को हम एक्टिवेट, बेसिकली जो डेड हो गए हैं ना फॉलिकल्स, उनको हम जगाते हैं, उठाते हैं और उससे ग्रोथ होती है।
0: बिल्कुल ठीक है। यहाँ नंबर दे रहा हूं मैं नवीन जी का, इनसे बात कीजिएगा, 647-960-8097। नंबर दोबारा बता रहे हैं, 647-960-8097। आखिरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ नवीन, कि ये बताइए कि कहाँ कहाँ सर्विसेज आप देती हैं और कितनी देर में ये 70% गिरे हुए बाल वापस आ सकते हैं?
1: 3 सेशंस आर रिकमेंडेड, 3 वीक्स के गैप के साथ, बेसिकली आप समझ लें कि महीने में एक सेशन आपने करवाना है। 3 सेशंस आर रिकमेंडेड कि वो आप जरूर करवाएं टू गेट यू नो बेस्ट रिजल्ट्स, और ब्रैम्पटन में है लोकेशन मेरी और ओकविल में है।
0: ब्रैम्पटन और ओकविल में आप ट्रीटमेंट करती हैं, स्टूडियोज आपके पास मौजूद हैं, और 3 सेशंस में बाल गिरने भी बंद हो जाएंगे, नए आने भी शुरू होंगे। ये नंबर मिलाएंगे आप 647-960-8097। थैंक यू वेरी मच नवीन,
1: बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी।
2: लवी डवी सॉन्ग ऑफ द डे इज ब्रॉट टू यू बाय रूहानी कॉलेज। आंखों में बसा है डॉक्टर बनने का सपना या सोच रहे हैं मसाज थेरेपिस्ट का शानदार करियर हो अपना, तो बस आपको है रूहानी कॉलेज ही चुनना। बेहतरीन पढ़ाई से शानदार कमाई वाले करियर के सफर में आपका हम सफर, रूहानी कॉलेज। रूहानी कॉलेज, यहाँ सपने सच में सच होते हैं। 905-731-2555, 905-731-2555, रूहानी कॉलेज।

0: बच्चों का बढ़िया फ्यूचर चाहते हैं, रिटायरमेंट पर बेहतरीन और इंडिपेंडेंट लाइफ चाहते हैं, बीमारी या डिसेबिलिटी की सूरत में फैमिली की प्रोटेक्शन चाहते हैं या फिर सुपर वीजा इंश्योरेंस चाहते हैं, सेविंग कैसे करनी है और पैसे से पैसा कैसे बनाना है, इन सब के लिए तो सिर्फ लवजोत कौर को ही फोन मिलाना है। RESP, RRSP, ट्रेवल इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए कॉन्टेक्ट लवजोत कौर, जो मेजर कैनेडियन इंश्योरेंस कंपनीज के साथ काम करती हैं और आपको बेस्ट रेट्स दिलाती हैं। कॉल कीजिए लवजोत कौर 416-877-8134। इट्स 416-877-8134।
1: और लवजोत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम का एंड है, तो क्या कहना चाहेंगी आप इंश्योरेंस के हवाले से हमारे सुनने वालों को?
2: मैं सभी को यही बोलूंगी कि आप ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी, कम से कम एटलीस्ट $25 $30 की कोई मामूली सी भी इंश्योरेंस लेके एटलीस्ट अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें। इट्स काइंड ऑफ सेम वे जैसे अगर आपने फोन लिया होता है उसको आप गार्ड से प्रोटेक्ट करते हो, स्क्रीन प्रोटेक्टर से प्रोटेक्ट करते हो, तो इंश्योरेंस इज समथिंग कि आपको अपनी फैमिली को कोई भी रिस्क आ रहा है, कोई इन फ्यूचर, वी डोंट नो व्हाट फ्यूचर इज होल्डिंग फॉर अस, तो आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो। फोन तो एक सिर्फ एक नॉन लिविंग थिंग है,
1: बिल्कुल ठीक।
2: उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो तो फैमिली, जिसके लिए आप सारी लाइफ काम कर रहे हो, सारा हार्ड वर्क कर रहे हो, तो उसको क्यों नहीं। और अगर आप यंग हो तो आप अपनी इंश्योरेंस जो है आपके फोन के बिल के से भी कम से आप ले सकते हो और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो।
1: बहुत अच्छा पैगाम है, ये कह रही है प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन and protection, protect yourself and protect your family, protect your income, dial this number 416-877-8134, it's 416-877-8134। Lovjot, bahut shukriya aaj hame join karne ke liye, thank you very much.
3: और इसी के साथ अब लेते हैं आपसे इजाजत। लवी डवी शो पर आमिर और शिवानी कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी वक्त पर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस और हमें इतने खूबसूरत से वेलकम देने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे रब्ते का नंबर है 416-303-3639, 416-303-3639। और कल तक के लिए नमस्कार।
1: यहाँ हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है इस पैगाम के साथ के नए मोड़ आते हैं जिंदगी में, नए रास्ते चुनने पड़ते हैं, नई दिशा, नई सिमत, नई डायरेक्शन का तायुन करना पड़ता है। जिंदगी एक जगह ठहरने का, सिर्फ एक ही काम किए जाने का, एक ही नुक्ते पर रह जाने का, अटक जाने का, लटक जाने का, ठहर जाने का नाम नहीं है। जिंदगी चलते रहने का नाम है, तब्दीली का नाम है, चेंज का नाम है, तनवो का नाम है, डाइवर्सिटी का नाम है। इस चेंज को जितनी जल्दी, इस तब्दीली को जितनी जल्दी कबूल कर लेंगे, जिंदगी उतनी ही कामयाब और आसान हो जाएगी। अपना ध्यान रखिए। रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से अगले प्रोग्राम तक के लिए शिवानी और आमिर तोफैल को इजाजत दीजिए। हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ द डे एंड हे।

0: You're listening to CMR FM 101.3. Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: The opinions stated by the various contributors to Sean Express are not to be considered as endorsed by Sean Express or CMR. They represent the opinions of the individual or business in question. All information given on this radio show is for education and entertainment purpose only. Moreover, the health tips given on this radio show should be cleared with a physician or nutritionist. We make no guarantee about the accuracy of information presented on this show.
2: Sean Express, Masi ki Rail Gari, CMRP Station, 101.3 FM par aa chuki hai.
3: Jalda pe sunane aayi, subah manane aayi, chatpate gossip ke saath masti lutane aayi. Aayi Sean Express, masti ki Rail Gari, aayi Sean Express, masti ki Rail Gari.
4: Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी,
5: एक ड्राइव इन मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आपकी ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव. Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी, ड्राइव टाइम शो विद शालिनी.
4: शालिनी ब्रॉट टू यू बाय Sean Media.
6: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं शालिनी आप लोगों का वेलकम करती हूं Sean Express मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3. नया मंडे, नई शुरुआत और नई एनर्जी के साथ आपका स्वागत है. दोस्तों, वीकेंड की मेमोरीज अपनी जगह हैं, लेकिन आज का दिन नए गोल्स, नए आइडियाज और नई पॉसिबिलिटीज का दिन है. अपनी स्माइल को ऑन कीजिए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए और खुद से कहिए, दिस वीक इज माइन. आज का पॉजिटिव विचार कहता है, हर हफ्ता एक नया मौका है खुद को पहले से बेहतर बनाने का. कहते हैं कि हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, इस दिल में अभी जान बाकी है. जो मेहनत से दोस्ती कर ले, उसकी हर मंजिल की पहचान बाकी है. तो दोस्तों, मंजिल आपकी आ चुकी है मस्ती की रेलगाड़ी और 4 बजे तक हमारा आपका साथ रहेगा बरकरार. सबसे पहले आज से शुरू करेंगे शो की हम ताजा खबरों के साथ. शिफाली हमारे साथ जुड़ेंगी लेटेस्ट खबरों के साथ, जिसमें होंगी भारत की खबरें और इंटरनेशनल खबरें Sean Express पर. गुड आफ्टरनून Sean Express News Bulletin, brought to you by Sean Media.

0: नमस्कार, शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में सवार हो चुके हैं आप, और ये है न्यूज़ जंक्शन। तो शायर शारिक कैफी साहब के अल्फाज के साथ आगाज़ कर रहे हैं आज के इस खास सेगमेंट का, जो कुछ यूं है। फिर से एक बार देखना है जहां, फिर कोई गोद में उठाए मुझे। बचपन की ख्वाहिश ऐसी ही होती है और उन्हीं ख्वाहिश पर है ये शेर। तो पहले रुख कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। ईरान ने अमेरिका के साथ सीज फायर वार्ता फिलहाल रोक दी है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक तेहरान ने कहा कि जब तक लेबनान में इजरायली हमले नहीं रुकते, तब तक मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। रिपोर्ट के अनुसार ईरान का कहना है कि लेबनान में शांति बनाए रखना सीज फायर की अहम शर्तों में शामिल था, लेकिन अब लेबनान समेत कई मोर्चों पर इस समझौते का उल्लंघन हो रहा है। अमेरिका के जॉर्जिया में शादी के कुछ घंटों बाद भारतीय मूल के पायलट की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। उनकी पत्नी घायल हो गई और करीब 6 घंटे तक मलबे में फंसी रहीं। डेव फीजी और जेस्नी की शादी 29 मई को डॉसनविल के द रिवर वेडिंग एवेन्यू में हुई थी। समारोह में करीब 400 मेहमान शामिल हुए। नवविवाहित जोड़ा शादी के बाद हेलीकॉप्टर से अटलांटा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बढ़ती उम्र और शरीर की कमजोरी को रोकने के लिए 26 अरब डॉलर यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए का बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट शुरू किया है। न्यू हेल्थ प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी नाम के इस प्रोग्राम में मिनी पिग्स, विशेष प्रजाति के सुअर के अंदर इंसानी अंग उगाने जैसी टेक्निक्स पर काम किया जाएगा। और अब रुख कर लेते हैं भारत से जुड़ी खबरों की तरफ। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके 6 जून को भारत लौटेंगे। इसके बाद वे दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में वे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे। दिपके ने इसकी जानकारी अपने एक्स अकाउंट कॉकरोच इज बैक पर दी है। कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की हालिया कॉकरोच टिप्पणी के बाद सामने आया। सीजेपी के इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीबीएसई की टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि छात्रों की आंसर शीट को ऑटोमेटिक रोबोटिक स्कैनर के बजाय मोबाइल फोन से स्कैन किया गया। राहुल गांधी ने छात्र सार्थक सिद्धांत की एक्स पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि अगस्त में ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम का टेंडर दोबारा जारी किया गया था। अमृतसर में दिन दहाड़े एक सरकारी टीचर की हत्या कर दी गई। वो अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़कर घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कुछ हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। आरोपियों ने तेज धार हथियारों से उन पर हमला किया और उनका गला काट दिया। अधिक खून बहने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। भारत में राहत की खबर आने को है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिनों में केरल पहुंच सकता है। आमतौर पर मानसून 1 जून के आसपास केरल पहुंचता है, लेकिन इस बार इसमें थोड़ी देरी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम अनुकूल है। बंगाल की खाड़ी के कई इलाकों में भी मानसून आगे बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने पहले अनुमान लगाया था कि मानसून 26 मई को केरल पहुंचेगा। गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। रिपोर्ट्स में मौत की वजह उम्र से जुड़ी हुई दिक्कतें बताई जा रही हैं। उनकी करीबी दोस्त मंगला खालिटकर ने बताया कि सुमन ने रात करीब 8 बजे रविवार को अंतिम सांस ली। वे पिछले कुछ दिनों से अपने ही गाए हुए गाने सुन रही थीं। उन्होंने बहुत शांति से दुनिया को अलविदा कहा। डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में रणबीर कपूर के भगवान राम का किरदार निभाने पर फिल्म मेकर इम्तियाज अली ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रणबीर के साथ रॉकस्टार और तमाशा जैसी फिल्मों में काम कर चुके इम्तियाज ने फिल्म बीट को दिए इंटरव्यू में रणबीर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि रणबीर एक प्योर एक्टर हैं और पर्दे पर कुछ भी कर सकते हैं। इम्तियाज के मुताबिक भगवान राम का किरदार निभाना खुद रणबीर के लिए भी काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि वे जिस भी किरदार को निभाते हैं उससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में न्यूज जंक्शन का ये स्टॉपेज यहीं तक। शुक्रिया।
1: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: जी दोस्तों, विन लाइफ टाइम एक ऐसी जगह है जहां पर आपको पहले ट्रेन किया जाता है स्क्रैच से, उसके बाद आपको एक एक्सपीरियंस ट्रेडर बनाया जाता है। आपको बताया जाता है कि कैसे अपने रिस्क को मैनेज करना है और कैसे कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ पैसा कमाना है एवरी सिंगल डे। हार्ट ऑफ मिसिसागा में था सेमिनार जो आप सभी लोगों ने अटेंड किया इस वीकेंड, और बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में एक विनिंग टीम का साथ अपने साथ जुड़ा है। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं राफी जी, रिनाउंड ट्रेडर एंड ट्रेनर फ्रॉम विन लाइफ टाइम। राफी जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
2: ठीक ठाक, गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स।
1: थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे राफी जी। और देखिए, अब नया हफ्ता शुरू हो चुका है, तो हम चाहेंगे हमारे नए लिसनर्स के लिए आप बताएं कि विन लाइफ टाइम किस तरह का इंस्टीट्यूशन है और कौन कौन सी ऐसी USPs हैं विन लाइफ टाइम की जो आपको बाकियों से जरा अलग जो है दिखाती हैं।
2: देखिए, हमारे पास एक ऐसा AI बेस्ड पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो कोई भी सीख सकता है। 2 offices हैं, 30 से ज्यादा स्टाफ हैं और 6 mentors हैं। लाइव स्ट्रीम जाता है, तो कोई ऐसी चीज हम नहीं करें जो क्लेम ऐसे करें और कल उसका प्रूफ ना देख सकें। तो 2008 से हमने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कि कोई भी आके सीख सकता है, और बेस्ट पार्ट यह है कि विदाउट अपनी फंडिंग से।
1: क्या बात है, तो फंडिंग मतलब नहीं लगानी, बगैर अपने पैसे इन्वेस्ट किए हम ट्रेड कर सकते हैं, तो ये किस तरह से होता है राफी जी?
2: इस तरह है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको एज ए ट्रेडर हायर कर लेती हैं और उनका कैपिटल यूज होता है। सिर्फ और सिर्फ आप उनका प्रोप्राइटरी एक थोड़ा सा टेस्ट होता है कि कैपिटल मैनेजमेंट का, वो आप हमारे सॉफ्टवेयर के बिना आप उसको इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर सारी की सारी फंडिंग वो थर्ड पार्टी ले जाती है।
1: Wonderful. और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, कंसिस्टेंटली पैसा कमाने के लिए कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो हमें होनी चाहिए?
2: ये सबसे पहले बता दूं, जो नहीं जरूरत, ना फाइनेंस की जरूरत है, ना अकाउंटिंग की, ना कंप्यूटर की, ना कुछ इस तरह एनालिसिस की। सिर्फ सिर्फ आप में क्वालिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन हो, मोटिवेटेड हो, आप पेशेंस हो, आप हमें फॉलो इंस्ट्रक्शन कर सकें, एंड दैट्स अबाउट इट।
1: वंडरफुल। तो क्या रहेगा पहला स्टेप, कैसे शुरुआत की जाए इस काम की?
2: पहला स्टेप है कॉल करें हमारे फोन नंबर पे या वेबसाइट पे विजिट करें, और हमारा आने वाला सैटरडे का 1 PM का सेमिनार अटेंड करें, और फिर आपको सॉफ्टवेयर दिखाया जाएगा, सारा ट्रेडिंग के बारे में बताया जाएगा, एंड देन यू डिसाइड।
1: वंडरफुल। और दोज हु कैन नॉट कम ऑन सैटरडेज, वो वीकडे में आकर भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये काम होता है और आप के लिए ये काम है कि नहीं। नहीं का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अलग अलग जॉनर के लोग जो हैं इस काम को सक्सेसफुली कर रहे हैं, जहां पर रिस्क को पूरी तरह से मिनिमाइज किया जाता है। सो वेल, राफी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और यहाँ पर मैं लिसनर्स को बता दूं, winlifetime.com विजिट करें, 10 नंबर के फासलों पर है ये अमेजिंग सी अपॉर्चुनिटी। 9052061008, that's 9052061008, right away call कीजिएगा। All the best Rafi ji, we'll talk to you soon again, take care.
2: Thank you ji, take care.
1: You're most welcome.
3: Jamming as much variety into your workday as possible. Radio Resync complete. Hit music. Hit after hot hit.
1: एक हिट के बाद दूसरा हिट, यहाँ पर सेगमेंट होता है मस्ती की रेलगाड़ी पर। और आज बॉलीवुड का जब हमने कैलेंडर खोला तो 2 बहुत महान हस्तियां हैं जिनका बर्थडे है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली हस्ती की। कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी स्माइल और चार्म सीधे दिल में उतर जाते हैं। रोमांस हो, सिंप्लिसिटी हो, या हो पावरफुल एक्टिंग, हर रोल में परफेक्शन देने वाले एक ट्रू जेंटलमैन एक्टर कहे जाते हैं आर माधवन। उनका आज बर्थडे है और साउथ सिनेमा से शुरुआत की इन्होंने, और फिर बॉलीवुड में स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाना नॉट इजी, बट ही डिड इट। उनकी एक्टिंग बड़ी नेचुरल है और स्क्रीन प्रेजेंस है एकदम एफर्टलेस, ऐसा लगता है नेक्स्ट डोर नेबर है हमारे।

कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप किया जाए। ओरिजिनली आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे लेकिन एज लिमिट की वजह से नहीं कर पाए। एक्टिंग से पहले टेलीविजन शोज और एड्स में काम किया, वहीं से इन्हें पहचान मिली। फिल्म रॉकेट्री में उन्होंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि डायरेक्शन और राइटिंग भी की है और इनकी पर्सनालिटी बहुत ही काम है, इंटेलिजेंट है, ग्राउंडेड है, जो उन्हें एक्स्ट्रा स्पेशल बनाती है। तो चलिए दोस्तों आपको लिए चलते हैं तनु वेड्स मनु के इस आइकॉनिक सॉन्ग की तरफ और इस फिल्म में थे आर माधवन विद कंगना रनौत। मस्ती की रेलगाड़ी पर

0: अपनी पावर ड्राइव विद जॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812.
1: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200. 905-362-2200.
0: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
1: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
2: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
3: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स।
2: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ।
3: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुंचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन।
2: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल।
4: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ। ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स। संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी

0: के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त है, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल i4 इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
6: I'm afraid we're going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekin. I have first-time home buyers clear an amazing opportunity. Freehold townhomes from $499,000 and detached homes from $605,000. First-time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first-time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
3: पुराना गाना बनाए दीवाना, शोर एक्सप्रेस पर खोले यादों का पिटारा.
4: जी दोस्तों, यादों का पिटारा खोलने जाते हैं और आज बॉलीवुड के सेकंड चैप्टर में बात करते हैं एक ऐसी लेजेंडरी एक्ट्रेस की जिनका नाम आते ही बॉलीवुड का गोल्डन एरा याद आ जाता है. एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी सिंप्लिसिटी, ग्रेस और पावरफुल एक्टिंग आज भी अनमैच्ड मानी जाती है. जी हाँ, बात कर रहे हैं टाइमलेस आइकॉन नरगिस दत्त जी की. और बहुत छोटी उम्र में नरगिस ने काम करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे बन गई बॉलीवुड की मोस्ट रिस्पेक्टेड एक्ट्रेसेस में से एक. और उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल थी, एक्सप्रेशंस इतने सोलफुल थे और हर एक रोल में एक इतना इमोशनल डेप्थ देखने को मिलता था कि दिल कहता था भाई वाह, एक्टिंग हो तो नरगिस जैसी. और इनकी सबसे ज़्यादा आइकॉनिक फिल्म की बात करूं जिसने उन्हें एक रातों रात लेजेंड बना दिया, दैट फिल्म वॉज मदर इंडिया. बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल था, सेल्फ रिस्पेक्टिंग मदर का रोल था जो आज भी इंडियन सिनेमा के ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंसेज में काउंट किया जाता है. राज कपूर के साथ उनकी पेयरिंग एकदम आइकॉनिक जोड़ी बन गई थी. और ये कहा जाता है इनका जो असली नाम था वो था फातिमा राशिद, और उन्होंने नरगिस नाम अडॉप्ट किया फिल्मी करियर के लिए. और मदर इंडिया के दौरान एक फायर सीन में सुनील दत्त ने उनकी जान बचाई थी और बाद में दोनों ने शादी कर दी और जिंदगी भर साथ निभाने का प्रण लिया. तो उन्हीं को डेडिकेट करते हैं आज का अगला गाना. आपकी नजर करेंगे मस्ती की रेलगाड़ी पर CMRFM 101.3 और ये गाना आप तक पहुंचा रहे हैं यश विंडोज एंड डोर्स. और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं और खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चरर करते हैं और खुद ही उनके एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम जो है इंस्टॉल करती है आपकी प्रॉपर्टी पर. कोई मिडल मैन नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सीधे फैक्ट्री से आपके घर तक. फ्रेंचाइज ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं यश विंडोज एंड डोर्स में. राइट अवे कॉल करें धर्म जी को 416-732-3600 और इसके साथ साथ अगर आप घर में ऑनिंग एंड कैनोपी लगवाना चाहते हैं तो कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी से बात करें जो लार्जेस्ट ऑनिंग सप्लायर है कैनेडा वाइड. टॉप क्वालिटी मटेरियल्स, डिजाइंस भी बहुत अमेजिंग है, प्राइसिंग भी ग्रेट है. और इनका जो स्पेशल ऑफर है फ्री बारबेक्यू मिल रहा है विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल. पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी, रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स, एवरीथिंग टुगेदर. 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन, कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी 416-831-4790. दैट्स 416-831-4790. और ये जो पुराने दौर का गोल्डन हिट है आप तक पहुंचा रहे हैं देओल ट्रैवल भी. और लेटेस्ट इनकी जो डील्स हैं वो नोट कर लीजिए दोस्तों. टोरंटो से दिल्ली जा सकते हैं वन वे बिफोर मिड ऑफ जून 849 में दो लगेज के साथ. नाउ टोरंटो से दिल्ली जा सकते हैं आफ्टर मिड जून वन वे 999 में दो बैगेजेस के साथ. इन जुलाई टोरंटो से दिल्ली $1,049 में वन वे दो लगेज के साथ. लास्ट मिनट डील्स आर आल्सो अवेलेबल. टू लोकेशंस टू सर्व यू ब्रैम्पटन एंड इटोबिको 905-588-5100 एंड 905-588-4200, 588-5100 एंड 588-4200. जिया बेकरार है और छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है. शॉन एक्सप्रेस पर
5: अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वो दीदावर राजकपूत साहब थे, अब न जाने नरगिसी आँख वाली इंडस्ट्री को अगली सदी कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि राजकपूर फिर आए। उन्होंने जो किया कमाल किया, हटके किया, राजकपूर जैसा कलाकार फिर नहीं।

0: कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते अनादी टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, यह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक इजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होण वाला है तूफानी।
2: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
3: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
2: ਫੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार, पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई, वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलिनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट पूजा हट.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: Sean Express News Bulletin brought to you by Sean Media. News headlines sponsored by Anjum Qureshi. For all kinds of car accident claims, call 416-570-0157. That's 416-570-0157. शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी पर अब नजर डालते हैं आज की टॉप लोकल खबरों की तरफ। सबसे पहले, टोरंटो पुलिस सर्विस ने कैनेडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी काउंटरफिट जर्सी सीजर करी है। मिसिसागा के एक वेयरहाउस से करीबन 3.5 मिलियन डॉलर की फेक जर्सीज बरामद किए गए हैं। इसमें फीफा, नाइकी, एडिडा और प्यूमा की ब्रांडिंग शामिल है। पुलिस को यहां से 16,000 से ज्यादा जर्सीज, फ्लैग्स और नकली वर्ल्ड कप ट्रॉफीज भी मिली हैं। अब बात ब्रैम्पटन की एक बेहद दुखद खबर की। कैनेडी रोड नॉर्थ और विलियम्स पार्कवे के पास एक घर में एक न्यूबॉर्न इन्फेंट मृत पाया गया है। इस मामले में 23 साल की एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, जो बच्चे की मां मानी जा रही है। उस पर चाइल्ड बॉडी कंसीलमेंट का चार्ज लगाया गया है और पुलिस अब ये जांच कर रही है कि बच्चा जन्म के वक्त जीवित था कि नहीं था। उधर हैमिल्टन से बड़ी अपडेट आई है, जहां मिसिंग 48 ईयर के मार्सिन सिंडोर का शव बरामद हुआ है। पोस्टमार्टम में होमिसाइड कंफर्म हुआ है और पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है। उधर वॉन में हुए एक डेडली डबल शूटिंग केस में नया मोड़ आया है। पुलिस ने 2 लोगों को चार्ज किया है, जबकि एक सस्पेक्ट अभी भी फरार है। केसर और फॉरेस्ट ड्राइव एरिया में हुई इस घटना में 2 लोगों की मौत हुई है। सस्पेक्ट की SUV बाद में गिरी हुई जली हुई हालत में मिली थी। उधर फीफा वर्ल्ड कप से पहले टोरंटो में काम करने का तरीका भी बदलता जा रहा है। यूबीसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अब एम्प्लॉयज को मैच डेज पर वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे रही हैं, ताकि ट्रैफिक और क्राउड से बचा जा सके। एजुकेशन सेक्टर से लेटेस्ट खबर आई है कि ग्लोबल रैंकिंग्स में कनेडियन यूनिवर्सिटीज पीछे जा रही हैं। 38 में से 37 यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग नीचे आई है। हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो अभी भी कनाडा की टॉप यूनिवर्सिटी बनी हुई है। आखिर में बात मौसम की। आज GTA में मौसम रहेगा सुहावना, सनशाइन के साथ, हाई ऑफ 19 डिग्रीज एंड लोज ऑफ 13 डिग्री सेंटीग्रेड। आप सुन रहे हैं शालिनी के साथ मस्ती की रेलगाड़ी ऑन CMR FM 101.3। गुड आफ्टरनून। News headlines sponsored by Anjum Qureshi. For all kinds of car accident claims, call 416-570-0157. That's 416-570-0157.
2: बॉलीवुड में रोजाना बदले जमाना। शॉन एक्सप्रेस पर ये रहा लेटेस्ट गाना।

0: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
2: लेक डेटा प्लान सी, पर टोयोटा टंड्रा दे बिना सकून नहीं, शोर मिलिया। जेकर तुसी अपने स्थानक टोयोटा डीलर तो टंड्रा ले आओ, ता एस दी 11,000 पाउंड तक दी टोइंग कैपेसिटी दे नाल तुसी फैसला करोगे कि रुकना किथे है। रेड टेक डेज दा लाभ लाओ। लीज करो 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स DRD ऑफ रोड $172 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.29% APR ते $5,800 डाउन दे नाल। विजिट shoptoyota.ca जा अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जाओ।
3: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम, संजीव पुरी।
4: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है।
3: यू विल गेट फुल रिफंड इफ सुपर वीजा इज डिक्लाइंड।
4: इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232, 890-3232।
5: Another Don Clean with the Don Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.
8: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
9: I'm afraid we're going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3. शॉन एक्सप्रेस म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस इम्प्रेस इम्प्रेस.
3: वेलकम बैक दोस्तों, मस्ती की रेलगाड़ी पर आप सभी लोगों का स्वागत है. डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो 416-569-7812 416-569-7812. और अब बारी आती है आज के दिन को सेलिब्रेट करने की. क्या क्या होने जा रहा है आज का दिन आपको बताते हैं. कौन सी ऐसी बातें हैं जो आज के दिन को खास बनाती हैं. सबसे पहले आज है डेयर डे, यानी आज कुछ नया ट्राई करो, थोड़ा रिस्क लो अपनी जिंदगी में, क्योंकि लाइफ बिगिंस आउटसाइड योर कंफर्ट जोन. इसके अलावा फ्लिप अ कॉइन डे भी है. अगर आपको किसी डिसीजन में कोई भी कंफ्यूजन है, देन फ्लिप अ कॉइन टुडे. हेड या टेल्स, आज अपने लक को डिसाइड करने दो. इसके अलावा फूड लवर्स के लिए आज है नेशनल ऑलिव्स डे, यानी हेल्दी स्नैकिंग का परफेक्ट एक्सक्यूज है. नेशनल नेल पॉलिश डे भी है आज. और न्यू नेल्स न्यू कॉन्फिडेंस, आज ही जाइए अपने नेल प्रिंट लीजिए, वंडरफुल से अपने नेल्स को प्रिंट कराइए. नेशनल हेजलनट केक डे भी है. और ग्रास पे बेयरफुट वॉक करने का भी दिन है, यानी नेशनल बेयरफुट डे और इसके साथ साथ नेशनल हेजलनट केक डे. आप अच्छा सा केक लीजिए और ग्रास के ऊपर बेयर फुट वॉक कीजिए, कितना मजा आएगा मुझे जरूर बताइएगा कैसा रहा. इसके बाद आज है इंटर जनरेशनल डे, यानी डिफरेंट जनरेशंस के बीच कनेक्शंस को सेलिब्रेट करने का दिन है. और अच्छी सी आप ड्रेस पहन लीजिए, क्योंकि आज है वेयर अ ड्रेस डे. किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो ज़रूर अच्छी सी ड्रेस पहनिए. किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, किसी को अप्रिशिएट करना और किसी के चेहरे पर स्माइल लाना चाहते हैं तो आज है से समथिंग नाइस डे. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सैल्यूट करेंगे छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि आज है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे, बचपन की इनोसेंस और हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करने का दिन. मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMRFM 101.3. गुड आफ्टरनून.

0: इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: एक लाइफ है जिसे लव है,
2: ये कहते मुझसे सब है,
3: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है।
4: हाँ?

0: one-stop solution for all your mortgage needs. Bank declined mortgage for self-employed, quick closing in 48 hours or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry, Mukesh Chauhan hai.
2: दोस्तों, मुकेश चौहान आपकी मदद करते हैं रीफाइनेंसिंग में, डेट कंसोलिडेशन में. 55 साल से ज्यादा की उम्र है तो मॉर्गेज अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो रिवर्स मॉर्गेज की मदद से आप अपने ही घर में इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं. होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए, लो इनकम लो क्रेडिट से परेशान हैं, पावर ऑफ सेल की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या फिर आपको अपने बिजनेस के लिए चाहिए वर्किंग कैपिटल, सो अप टू $1 million की वर्किंग कैपिटल भी मिल सकती है. तो आप नंबर नोट करें सबसे पहले, रिनाउंड मॉर्गेज ब्रोकर मुकेश चौहान फ्रॉम मॉर्गेज डिलिजेंट, 647-512-7000. मुकेश जी, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू?
3: शालिनी जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ. रिनाउंड तो आप ही हैं.
2: ठीक है, लेकिन रिनाउंड मॉर्गेज ब्रोकर नहीं हूँ, लेकिन
3: यस, मगर आप भी हैं, आपका बड़ा नाम है.
2: आपके साथ बात करते करते मैं जरूर रिनाउंड मॉर्गेज ब्रोकर हो सकती हूँ. मुझे लगता है जो नॉलेज गेन करते हैं ना आपसे हम हफ्ते में कई बार, तो बस मुझे लगता है आई विल बी परफेक्ट
3: मॉर्गेज ब्रोकर. डबल पावर, डबल पंचेस,
2: वंडरफुल. तो आज जो है जी, बड़ा अच्छा दिन है मुकेश जी. आज पता है क्या, आज का दिन है डेयर डे, यानी कुछ ना कुछ डेयरिंग काम करना चाहिए. तो अब अगर हमारे जो लिसनर्स हैं वो कुछ डेयरिंग करना चाहते हैं, अपनी मॉर्गेज को रिन्यू करना चाहते हैं, कुछ अच्छा बड़ा घर लेना चाहते हैं, तो व्हाट इज योर एडवाइस, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट
3: रिन्यूअल? ओके यस, ओके, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल द लिसनर्स. नमस्ते, आदाब, सत्रियाकाल, दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर. रिन्यूअल्स एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत इमोशनल डिसीजन है और एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव डिसीजन है ये. तो रिन्यूअल के जितने भी लोगों की रिन्यूअल्स आ चुकी है आने वाली इस साल, तो उनके लिए मैसेज यही है कि अपनी रिन्यूअल्स के टाइम पे अपने जितने भी आपके कमिटमेंट्स हैं उनको आप उनको पूरा कर सकते हैं. पहले सबसे पहले आपके पास अपना, देखिए मैं बस कॉमन क्वेश्चन आते हैं वो मैं पहले बता देता हूँ. क्या सर हमें दोबारा से इनकम डॉक्यूमेंट देने होंगे? क्या हमारी जॉब दोबारा वेरीफाई होगी? क्या हमारा रेट जो है कम होगा, ज्यादा होगा, वेरिएबल लेना है, फिक्स लेना है? बहुत सारे ऐसे प्रश्न है, तो उसके लिए देखिए ऑन एयर तो पॉसिबल नहीं है, बट ये है कि मैं आपको एक एक करके आंसर दे सकता हूँ इस चीज का. पहली बात है आपके पास रिन्यूअल के टाइम पे देखिए पेनल्टी नहीं पे करनी, ये तो हर कोई जानता है, हर कोई समझता है. उसके टाइम पे अगर आपने बाय एनी चांस सेकंड मॉर्गेज ले रखी है, आपने लाइन ऑफ क्रेडिट ले रखी है, या आपने किसी को पर्सनली पैसे देने हैं, तो ये सारे चीजें डिस्कस करें अपने बैंकर के साथ. आपको लग रहा है आपकी इनकम अच्छी है, क्रेडिट अच्छा है, सब कुछ ठीक है, अगर ये नहीं भी करवाना, अभी जिस तरह की सिचुएशन है जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, आपको महीने की किस्त अपनी इंस्टॉलमेंट कम करनी है, एमोर्टाइजेशन के लिए बात करें, आप पहले बैंक को रीच आउट करें, बैंक से पूछें, साथ साथ लाइन ऑफ क्रेडिट भी साथ साथ चाहिए उसके लिए भी पूछें. मगर आपको लग रहा है कि इनकम इश्यूज हैं या क्रेडिट इश्यूज हैं या आपके कुछ और इश्यूज हैं, या आपने कंज्यूमर प्रपोजल कर दिया है, या आपने बैंकरप्सी कर दी है, डर रहे हैं, आपको सेकेंड ओपिनियन चाहिए है, या आप मेरी तरह किसी भी प्रोफेशनल को रीच आउट करें. आई एम हेयर टू हेल्प यू फॉर अ रिन्यूअल. रिन्यूअल इज अ प्ले कार्ड, इज अ बिग टाइम, इज एन अपॉर्चुनिटी टू, इसमें $2,000 to $3,000 की महीने की सेविंग हो सकती है आपकी. $2,000 to $3,000 की किसी भी इंडिविजुअल की सैलरी होती है. गिव मी अ कॉल, दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर फ्रॉम मॉर्गेज डिलिजेंट. नंबर 1-647-512-7000, 647-512-7000.
2: जी, और मुकेश जी, अब जो है बैंक जब डिक्लाइन कर देता है हमारी मॉर्गेज को, उस वक्त आपकी एक्सपर्टीज कैसे काम आ सकती है?
3: बिल्कुल, देखिए बैंक डिक्लाइन की बात करते हैं, यस, द ब्रोकर चैनल पे देखें आप, इम्पोर्टेंट चीज यही समझनी है आपको
4: कि मैं पहले खुद एडवाइस करता हूँ पहले बैंक जाइए. अगर बैंक आपको डिक्लाइन करता है, नंबर वन रीजन है बैड क्रेडिट है, 600 से क्रेडिट स्कोर कम है आपका. अच्छा, इसके अलावा इनकम इश्यूज हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इनकम बनाते हैं डिक्लेयर कम करते हैं, या कंज्यूमर प्रपोजल या बैंकरप्सी करती हैं, उस सूरत में मेरी सर्विसेज, मैं अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज से आपको हेल्प कर सकता हूँ. आपको मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग के अंदर ये रिन्यूअल के टाइम पे आपको अपने मल्टीपल डेट्स पे करने हैं, इक्विटी निकालनी है, तो रीफाइनेंसिंग वुड हेल्प यू, स्पेशली बैंक हैज डिक्लाइन योर मॉर्गेज. मेरे पास बहुत सारे केसेस आ रहे हैं शालिनी जी, ट्रक इंडस्ट्री में आपको पता है एक बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग आया हुआ है, इमिग्रेशन इंडस्ट्री के अंदर, ऐसे रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर, राइट, कुछ चार पांच बिजनेस के अंदर आया हुआ है. बट आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू गाइस. आई कैन इमेजिन घर में कोई सिकनेस हो गई है या किसी का ले ऑफ हो गया, बिजनेस में स्लो डाउन हो चुका है आपका, एंड यू आर कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. आई एम हेयर टू हेल्प यू. देर इज नो कंसल्टिंग फी, कुछ नहीं है. मिसिसागा में ऑफिस है मेरा. कम, लेट्स टॉक ओवर द फोन, या इन पर्सन मिलना चाहें दैट्स मच बेटर. This is Mukesh Chauhan, mortgage broker. Back to you, Shalini.
2: क्या बात है मुकेश जी. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो प्राइवेट मॉर्गेज है वो हमें कैसे मदद कर सकती है मोस्ट चैलेंजिंग वक्त में?
4: देखें, आपने दो तीन पेमेंट, मॉर्गेज की पेमेंट मिस करी है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट मिस करी है, तो उसी बैंक के साथ रिन्यू करना या उसको कंटिन्यू करना चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. ठीक है, पहली बात है. साथ साथ आपने कंज्यूमर प्रपोजल या बैंकरप्सी की है, आपने आपने प्रॉपर्टी टैक्स बिल नहीं पे किया तीन तीन साल तक, आपने सीआरए के ड्यूज भी आप फॉल बिहाइंड है, आपको पता है वो इवेंचुअली ये लीन आती है आपके घर के ऊपर, राइट, सीआरए की. इन सारी चीजों से बचने के लिए प्राइवेट मॉर्गेज, शालिनी जी, यू वॉन्ट बिलीव, प्ले अ वेरी गुड रोल. मैं, मुझे पता है लोगों को डर ही होता है, हाई इंटरेस्ट रेट है, हाई फी है, लैंडिंग फी है. मैं बता रहा हूँ रीजनेबल रेट के साथ आपको प्राइवेट मॉर्गेज में हेल्प कराऊंगा, आपको एडवाइस दे सकता हूँ आपको. अगर आपको नहीं लेनी है तो सेकंड ओपिनियन भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं. मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 3 महीने से लेके 1 साल के लिए लीजिए, ज्यादा टाइम के लिए मत लें. मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी. अगर आपको किसी को पता ही नहीं है कि वो प्राइवेट मॉर्गेज कितने अरसे के लिए लेगा, तो मैं उसे एडवाइस नहीं करूंगा लेने के लिए. आपको पता होना चाहिए आपको शुरू कब करना हो, एंड कब करना है. थैंक यू सो मच वंस अगेन. एनी कंसर्न, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, टू इम्प्रूव योर फाइनेंसेस, 2 से 3 हजार डॉलर की सेविंग करनी है, अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना है, feel free to contact me. This is Mukesh Chauhan, mortgage broker from Mortgage Diligent. Number to call me 647-512-7000, 647-512-7000. Shalini ji, bahut bahut dhanyawad, aur aapse baat hoti hai dobara fir.
2: बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी. 647-512-7000 है दोस्तों नंबर. और दोस्तों, मस्ती की रेलगाड़ी पर सवार हैं सीएमआरएफएम 101.3. और फिर से बता दूं देओल ट्रैवल के लेटेस्ट फेयर अपडेट्स. टोरंटो से दिल्ली वन वे जा सकते हैं 849 में दो बैगेज के साथ बिफोर मिड जून, और आफ्टर मिड जून 999 में वन वे दो बैगेजेस के साथ टोरंटो से दिल्ली. नाउ टोरंटो से दिल्ली आप जा सकते हैं जुलाई में जाना हो $1049 में दो लगेज के साथ. लास्ट मिनट डील्स आर ऑल्सो अवेलेबल. टू लोकेशंस टू सर्व यू, ब्रैम्पटन एंड इटोबिको, 905-588-5100 एंड 905-588-4200, 588-5100 एंड 588-4200. और इसके साथ साथ अगला गाना स्पॉन्सर कर रहे हैं यश विंडोज एंड डोर्स. वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में आपको मिलते हैं. ऑल ओवर ऑन्टारियो जो है सर्विसेज देते हैं, खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, और इनकी जो एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम है खुद ही प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है. नो मिडल मैन, नो कॉम्प्रोमाइज, सीधे फैक्ट्री से आपकी प्रॉपर्टी तक. एक्सेप्शनली गुड स्टाइल जो है, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, प्राइस ऐसी जो आपकी पॉकेट को सूट करे. अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, फ्रेंचाइज ऑप्शन देख रहे हैं, तो यश विंडोज एंड डोर्स में बात करें और ग्रोइंग टीम का हिस्सा बने. 416-732-3600, 416-732-3600. और वैनगार्ड पेस्ट कंट्रोल, योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ. रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल पेस्ट कंट्रोल करते हैं. वाइल्ड लाइफ रिमूवल एक्सक्लूजन, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड है. आप राइट अवे कॉल करें अयान काशिफ जी को. अगर आप चूहे, खटमल, कॉकरोच और इस तरह की चीजों से परेशान है, वाइल्ड लाइफ भी, 647-966-4355, और अगर आपको अपने घर में कोई भी काम कराना हो, कोई भी होम रिपेयर करानी हो, इंस्टॉलेशन करानी हो, इंटीरियर या एक्सटीरियर, बाथरूम में कुछ काम हो, बेसमेंट में कुछ ठीक कराना हो, टाइल्स करानी हो ठीक, फ्लोरिंग ठीक करानी हो, पेंट कराना हो चाहते हैं घर में, तो अजीम से बात करें, ही गेट्स इट डन राइट द फर्स्ट टाइम. ग्रेट रिव्यूज 6472808806 मस्ती की रेलगाड़ी पर आप हैं सवार CMRFM 101.3. आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी. अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड. फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812 416-569-7812.
5: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना. साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर.
6: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर.
5: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स. बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी.
7: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ. ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ.
8: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ.
9: ਫੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263. ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ.

इसी गाने के साथ आपको छोड़े जाते हैं और कल होगी फिर से मुलाकात मस्ती की रेलगाड़ी पर CMRFM 101.3 शो के बाद. हमारा डायरेक्ट नंबर 416-569-7812 416-569-7812. कल तक के लिए दिए शालिनी को इजाजत. नमस्कार.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.
3: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
4: जो हो आपके दिल के करीब,
3: जो मनाए आपके त्योहार,
4: रखे चुटकुले तैयार,
3: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
4: जहाँ मचे शायरी की धूम,
3: जो दे खबरें अप टू डेट
4: और दे ढेरों इनाम।
3: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
4: जतिन के संग
3: ऑन CMR 101.3 FM। ट्यून इन मंडे टू फ्राइडे और लॉग ऑन टू CMR.FM।
5: हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और वनकम। हवाओं में आज एक अलग सा सुरूर है, हवाओं में आज एक अलग सा सुरूर है। दिल को किसी की यादों का छा रहा फितूर है। धड़कने थमसी गई है कुछ इस कदर। लगता है मोहब्बत का मौसम आया जरूर है। बिंदु भाइयों, मोहब्बत जिंदगी में करे और जिंदगी आपसे मोहब्बत करे तो जीने का मजा ही कुछ और होता है। ये हिट वॉइस हम है आपकी दोस्त जतीन।

0: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
1: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
0: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
1: डॉक्टर नील गजर, 735 ट्वीन एवेन्यू स्वीट 16 मिसिसागा, कॉल 289-401-0009।
2: Imagine over 1,000 exotic birds and animals roaming wild. Come face to face with lions and nature's most amazing creatures, all closer than you'd ever imagined. African Lion Safari, Canada's original safari adventure. African Lion
3: Safari. Get closer and begin your adventure today at lionsafari.com.

0: at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: घर कहीं भी लेना हो

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आएं, तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
4: Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
5: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
4: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
6: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
7: वक्त जो है वो बदल चुका था। रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना, पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था। ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे, पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं। और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का ताता शुरू हुआ, उससे पूरे एफएम रेडियो का समीकरण ही बदल गया। एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।
8: जी मित्रों भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। आइए नजर करते हैं अराउंड द कनाडा। कनाडा पोस्ट हड़ताल पर बड़ा अपडेट, आज सामने आएंगे वोटिंग के नतीजे। कनाडा पोस्ट के करीब 55,000 कर्मचारियों के बीच पिछले 2 साल से चल रहा विवाद आज एक नए मोड़ पर है। 5 साल के नए कॉन्ट्रैक्ट और वेतन वृद्धि को लेकर किए गए मतदान के नतीजे आज जारी किए जाएंगे। इससे साफ होगा कि कर्मचारी नए समझौते को स्वीकार करते हैं या फिर हड़ताल का रास्ता चुनते हैं। टोरंटो पुलिस की बड़ी कामयाबी, देश के इतिहास में नकली सॉकर जर्सियों की सबसे बड़ी खेप जब्त की गई। टोरंटो पुलिस आज दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़े फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के नतीजों का खुलासा करेगी। पुलिस ने कनाडा के इतिहास में नकली सॉकर जर्सियां की अब तक की सबसे बड़ी खेप जब्त की है। राजनीति, आर्थिक मंदी को लेकर पियरे पुलिवर ने की इमरजेंसी डिबेट की मांग। कनाडा में नौकरियों के नुकसान और आर्थिक विकास दर नेगेटिव होने के बाद देश में टेक्निकल रिसेशन की आहट है। इसे लेकर कंजर्वेटिव नेता पियरे पुलिवर ने सरकार पर निशाना साधा है और संसद में इस मुद्दे पर आपातकालीन बहस की मांग की है। टोरंटो में शुरू हुआ वीडियो गेम मंथ, महीने भर सजेगी 50 से अधिक महफिलें। गेमिंग के शौकीनों के लिए टोरंटो से बड़ी खबर है। मेयर ओलिविया चो की पहल पर आज से शहर में वीडियो गेम मंथ की शुरुआत हो रही है। इस पूरे महीने टोरंटो में 50 से अधिक इवेंट, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे, जिनमें से कई इवेंट्स बिल्कुल मुफ्त है। नेशनल एक्सेसिबिलिटी वीक, रिंक हैंसन फाउंडेशन ने किया $40,000 के ग्रांट्स का ऐलान। दक्षिण कोरिया की कंपनी हनवा कनाडा में बनाएगी सैन्य वाहन। कनाडा के रक्षा क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण कोरिया की दिग्गज कंपनी हनवा ने घोषणा की है कि वह कनाडा में बख्तरबंद सैन्य वाहनों के निर्माण के लिए सुल्ट सेंट मैरी के अलगोमा स्टील प्लांट के स्टील का इस्तेमाल करेगी। यह डील कनाडा के आगामी पनडुब्बी बेड़े के टेंडर से भी जुड़ी हुई है। और कनाडाई स्क्रीन अवार्ड्स 2026 माइक मेयर्स को मिला एकेडमी आइकॉन अवार्ड। हाँ जी विंद्र भाइयों, ये थी अराउंड द कनाडा की छोटी सी खबरें। ये हिट वॉइस हम मैं आपके दोस्त जतीन, डिटेल जानकारी weeklyvoice.com पर।

0: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545.
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
3: हाँ जी विनर भाइयों, ये है रेडियो वॉइस जतिन के संग. आइए सीधे चलते हैं आयशा मुनव्वर जी के पास. बहनर भाइयों, उनका नंबर जरूर डायल करें 416-428-2165. कर्जा बढ़ता है, गार्निशिंग का नोटिस आ गया है, मैक्सिमम कर्जा माफ करवा देंगे आयशा मुनव्वर और मैनी हुसैन जी. 416-428-2165. आइए सीधे चलते हैं आयशा जी के पास. आयशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस.
4: थैंक यू वेरी मच जतिन जी, क्या हाल है? ठीक ठाक.
3: बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं?
4: मैं बिल्कुल ठीक हूँ.
3: वंडरफुल. प्लीज आपकी वंडरफुल सर्विसेज के बारे में पहले बताएं.
4: जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि कर्जे में आना यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने ना सुना हो. सो लॉट्स ऑफ टाइम लोग कर्जे के प्रॉब्लम के नीचे आ जाते हैं, तो हमारी मेन सर्विसेज में आ जाते हैं कर्जे को माफ करवाना, कंज्यूमर प्रपोजल्स, बैंक्रप्सी की सर्विसेज में भी हम हेल्प आउट करते हैं, इसके अलावा इंसॉल्वेंसी काउंसलिंग्स और क्रेडिट को दोबारा एस्टैब्लिश करके आपको दोबारा फाइनेंशियल ट्रैक पे हैप्पी हैप्पी लाइफ जो है गुजारने में मदद देते हैं.
3: वंडरफुल. बहन और भाइयों, कॉल करना है 416-428-2165. आयशा जी, ये बताएं कि अपॉइंटमेंट लेना क्यों जरूरी है?
4: बहुत जरूरी है जतिन जी. ऐसा है कि देखिए, ये फाइनेंशियल हेल्थ है. आपने कभी किसी डॉक्टर को फोन करके कहा कि बस मेरे पेट में दर्द हो रही है, मुझे कोई दवाई दे दो? वो कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, क्योंकि यू नेवर नो दर्द किस वजह से है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और क्या इलाज है. तो सेम ये आपके फाइनेंसेस हैं. जब तक हम प्रॉपर तरीके से रिव्यू ना कर लें, कर्जा लिया कैसे गया, कैसे इस्तेमाल हुआ, कौन से बैंक हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, क्या वापस आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एसेट्स कौन से हैं जिनको बचाना है, और आगे फ्यूचर में कैसे आपने चलना है, प्रोसेस क्या होगा, तो ये सब चीज़ें 5 मिनट में नहीं बताई जा सकती और ना डिस्कस की जा सकती हैं. हमारा काम है कि प्रोफेशनल और रिस्पॉन्सिबल एडवाइस देना, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
3: वंडरफुल. ये भी बताया कि कौन से डेट्स सेटल कर सकते हैं.
4: जी, ऑल काइंड ऑफ अनसिक्योर्ड डेट्स कैन बी सेटल्ड, जैसे लाइन ऑफ क्रेडिट्स हो गए, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, स्टूडेंट लोन्स हो गए. स्टूडेंट लोन हैज टू बी 7 ईयर्स आफ्टर डेट ऑफ फिनिशिंग ऑफ स्टडीज. रेवेन्यू कैनेडा के डेट्स हो गए. इसके अलावा अगर आपने कोई बिजनेस वगैरह के ऊपर जो है गारंटीज दी हुई हैं और बिजनेस अब नहीं चल रहा, तो वो गारंटीज वगैरह भी जो है वो सेटल हो सकती हैं. तो बेसिकली ऑल काइंड ऑफ अनसिक्योर्ड डेट्स कैन बी सेटल्ड.
3: और आपने गारंटीज की बात की, तो कई बार हम सुनते हैं कि गारंटीड कर्जा माफ किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं.
4: इस गारंटी से मैं बहुत ज्यादा कहते हैं ना, मैं मुखालिफ हूँ इस गारंटी के.
3: अच्छा.
4: उसका रीजन ये है कि अक्सर मैं देखती हूँ कई रेडियो स्टेशन पे लोग बैठे हैं गारंटीज कर रहे हैं. बेसिकली सबसे पहले तो ये अनएथिकल है, आप किसी तीसरी पार्टी के बिहाफ पे गारंटी नहीं कर सकते. इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि लेट सपोज जैसे आप किसी को प्रपोज करते हैं, तो जब तक अगला पर्सन हाँ या ना कर ले, आप कैसे मानेंगे कि जी काम हो गया? तो इसलिए वी हैव टू प्रपोज एन ऑफर कि जी ये अमाउंट हम आपको ऑफर कर रहे हैं, बैंक्स को हम प्रपोज करते हैं, एंड देन सब्जेक्ट टू क्रेडिटर अप्रूवल. बैंक्स ने हमें एक्सेप्टेंस देनी होती है कि जी हाँ हमने मान लिया, या कोई और हम जो है वो ऑफर लेकर आ रहे हैं. तो इसलिए गारंटी बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन हम ये कहते हैं कि मैक्सिमम कर्जा माफ हो जाएगा. वो हर पर्सन के लिए फर्क भी हो सकता है.
3: बहुत खूब. आपका कॉन्टेक्ट नंबर दे दे प्लीज.
4: जी, कॉन्टेक्ट नंबर है 416-428-2165.
3: आयशा मुनव्वर और मैनी हुसैन जी से आज ही करें बात और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ाइए अपना एक और कदम. आयशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
4: थैंक यू वेरी मच जतिन.
0: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545.

0: Five.
1: डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, फैमिली डेंटिस्ट, केयरिंग फॉर ऑल योर डेंटल नीड्स, एक्सेप्ट कर रहे हैं पेशेंट्स जिनके पास CDCP यानी कि कैनेडियन डेंटल केयर प्लान है। अगर आपने ये प्लान रिसीव नहीं किया है और आप एलिजिबल है तो इस प्लान में एनरोल होने के लिए विजिट करें CDCP वेबसाइट। CDCP की वेबसाइट विजिट करके एनरोल हो जाइए और कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट का। बेंद्र भाइयों, आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले 905-564-2021 905-564-2021। डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, आपके फैमिली डेंटिस्ट। हाँ जी बिंद्र भाइयों, रेड वॉइस और हमें आपके दोस्त जतीन आपके लिए रेड वॉइस फिर से शुरू कर रहा है अफ्रीकन लायन सफारी कॉन्टेस्ट। बिंद्र भाइयों, देना होगा आपको जवाब। आप जीत सकते हैं फैमिली पास या फिर सिंगल पास अफ्रीकन लायन सफारीज के। आइए आपको बताता हूँ आज का सवाल। आज का सवाल बहुत ही सिंपल है, अफ्रीकन लायन सफारी कहाँ पर है, क्या एड्रेस जानते हैं आप? अगर जानते हैं तो हमें कीजिए ईमेल contest@weeklyvoice.com contest@weeklyvoice.com। आप जीत सकते हैं अफ्रीकन लायन सफारीज के पासिस। उनकी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा। ये हिड वॉइस, हम है आपके दोस्त जतीन।
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Don Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Don Platinum, the better grease getter.
1: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम,
5: संजीव। शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है। इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232
6: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Just specialized in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
7: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते अन्ना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देन के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी।
8: प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर।
9: एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 416-660-8545।
1: जी मित्र भाइयों, बॉलीवुड की अजीब दास्तान जतीन के संग आज सुमन कल्याणपुर की बात करेंगे। बिंदर भाइयों, संगीत की दुनिया से एक बहुत बड़ी उदास कर देने वाली खबर आई। हमारी प्यारी सुरीली और पद्म भूषण से सम्मानित गायिका सुमन कल्याणपुर जी अब हमारे बीच नहीं रही। 89 इयर्स की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुमन कल्याणपुर जी की जिंदगी की अजीब दास्तां। सुमन कल्याणपुर जी की आवाज इतनी बारीक, मीठी और सुरीली थी कि शुरुआती दौर में लोग उनकी आवाज को महान गायिका लता मंगेशकर की आवाज समझ बैठते थे। यहाँ तक कि उस दौर में जब रेडियो सिलोन पर गाने बजते थे तो कई बार गलती से सुमन जी के गानों में लता जी का नाम अनाउंस कर दिया जाता था। हाँ जी, खुद दूरदर्शन के मशहूर शो छाया गीत में एक बार उनके गाने को लता जी का गाना बता दिया गया था, जिसके बाद सुमन जी की बेटी ने फोन करके इस गलती को सुधारा था। है ना अजीब दास्तान। हालांकि सुमन जी ने हमेशा कहा कि मेरी आवाज प्राकृतिक रूप से ऐसी है, मैंने कभी लता दीदी की नकल नहीं की, वो मेरी अच्छी सहेली है। बिंदर भाइयों, एक किस्सा याद आता है। 1960 के दशक में रॉयल्टी के मुद्दे को लेकर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब जी के बीच एक बड़ी अनबन हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ गाने से इनकार कर दिया था। अब फिल्म मेकर्स के सामने बड़ा संकट था कि रफी साहब के साथ ड्यूएट कौन गाएगा। तो फिल्म इंडस्ट्री की नजर सुमन कल्याणपुर पर गई थी। सुमन जी ने उस दौर में मोहम्मद रफी साहब के साथ एक के बाद एक 140 से ज्यादा सुपरहिट गाने दिए, जो आज भी अमर है। है ना बेनर भाई, अजीब दास्तान। सुमन कल्याणपुर जी को रफी साहब के साथ गाने का यूं ही मौका मिल गया और उन्होंने 140 नगमे गा लिए। सुमन कल्याणपुर जी की आवाज में वो नगमे कौन से थे? आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। मोहम्मद रफी साहब के साथ गाया यह गाना आज भी हर शादी और पार्टी की जान है। हेमंत कुमार के साथ उनका गाना ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, जब जब फूल खिले का ये नगमा कौन भूल सकता है, तुमने पुकारा और हम चले आए। राजकुमार फिल्म का ये नगमा रफी जी और सुमन कल्याणपुर जी ने गाया। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, हर रक्षाबंधन पर ये गाना तो बजता ही है। सुमन जी की आवाज और जिंदगी इम्तिहान लेती है, नसीब फिल्म का ये नगमा, उसमें आवाज दी थी सुमन कल्याणपुर जी ने। हाँ जी मित्र भाइयों, सुमन कल्याणपुर जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में उनकी सुरीली आवाज हमेशा जिंदा रहेगी। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। यही डू वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: आप शेरों, हाथियों और चीतों को बिल्कुल करीब से देखना चाहते हैं, तो पहुंचिए अफ्रीकन लायन सफारी बिंदर भाइयों कनाडा के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ एडवेंचर पर। पहुंचना होगा 1386 कूपर रोड कैम्ब्रिज। आज ही टिकट बुक करें lionsafari.com पर। ये हिडन वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।
1: रेड्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान सुनो।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50 7070 सेंट बारबरा बुलेवार्ड मिसिसागा. मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5 to 10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12 to 3, डिनर 5 to 10. वेडनेसडे को बंद, मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं. कॉल करें 9057952299 या विजिट करें gurulakshmi.com. गुरु लक्ष्मी, साउथ इंडिया के स्वाद का

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: कैंपिंग दा प्लान ता मस्त सी पर टोयोटा टकोमा दी बिना सारे लोग जिथे तुसी भी पहुंचे उथे जेकर रेड टैग डेज च तुसी टकोमा ले आओ ता इस दी जबरदस्त समर्था ते दमदार आई फोर्स इंजन तुहानू ले जावे थोड़ा होर दूर सकून दे होर नेड़े रेड टैग डेज दा लाभ लाओ लीज करो 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 $114 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.69% ते $4900 डाउन दे नाल विजिट shoptoyota.ca जा अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जाओ
4: हाँ जीविंदर भाइयों रेड वॉइस और हमें आपके दोस्त जतीन आप के लिए रेड वॉइस फिर से शुरू कर रहा है अफ्रीकन लायन सफारी कॉन्टेस्ट बिंदर भाइयों देना होगा आपको जवाब आप जीत सकते हैं फैमिली पास या फिर सिंगल पास अफ्रीकन लायन सफारीज के आइए आपको बताता हूँ आज का सवाल बहुत ही सिंपल है अफ्रीकन लायन सफारी कहाँ पर है क्या एड्रेस जानते हैं आप अगर जानते हैं तो हमें कीजिए ईमेल contest@weeklyvoice.com आप जीत सकते हैं अफ्रीकन लायन सफारीज के पासिस उनकी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा ये हिड वॉइस हम है आपके दोस्त जतीन
5: प्रतिष्ठा परंपरा और अनुशासन इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर एडवर्टाइजिंग इंटरव्यूज टॉक शोज इन तीन स्तंभों के लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545
4: हाँ जी मित्र भाइयों ये वॉइस और हमें आपके दोस्त जतीन आइए करते हैं अराउंड द इंडिया एक नजर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरे सीजन आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी जीती चैंपियन बनने पर आरसीबी को ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिली जबकि रनर अप गुजरात टाइटंस को 12.5 करोड़ रुपए से संतोष करना पड़ा व्यक्तिगत पुरस्कारों में राजस्थान के 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का दबदबा रहा उन्होंने सीजन में सबसे ज्यादा 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप का टाइटल अपने नाम किया वैभव को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इमर्जिंग प्लेयर और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन समेत कुल 5 अवार्ड मिले इनसे उन्हें 45 लाख रुपए और एक कार मिली वहीं गुजरात के कगिसो रबाड़ा ने 29 विकेट लेकर पर्पल कैप अपने नाम की राजनीति की ओर नजर करें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने तिरुचिरापल्ली रैली में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकारों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी के विधायकों और कार्यकर्ताओं को लेकर बड़ा बयान दिया उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस टीएमसी कार्यकर्ताओं को पार्टी छोड़ने के लिए धमका रही है ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोलकाता में उन्हें रोका गया तो वे दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेगी वैश्विक तनाव विशेषकर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते गतिरोध के कारण भारतीय सर्राफा बाजार यानी कि शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट देखी गई सोना 25,500 रुपये तक टूटा है वहीं चांदी की कीमतों में 5,000 रुपये की भारी गिरावट दर्ज की गई और भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए साइफ महिला चैंपियनशिप 2026 के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। क्रिकेट के गलियारों में इस समय रन मशीन विराट कोहली की जमकर चर्चा हो रही है। खेल विशेषज्ञ 2016 के उनके रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन की तुलना साल 2026 के उनके मैच विनिंग इंपैक्ट के साथ कर रहे हैं। सबका मानना है कि मैदान पर इंपैक्ट टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा विराट कोहली एक्स फैक्टर है। हाँ जी मित्र भाइयों, ये थी अराउंड द इंडिया की खबरें। ये हिट वॉइस हम है आपके दोस्त जतीन।

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232
4: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
5: यहाँ से आपको ढाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा. 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 और 10, ब्रैम्पटन. टेलीफोन 905-799-9400.
6: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
7: Another Don Clean with the Don Ducks.
8: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
9: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
8: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
9: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
8: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
9: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
8: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
7: Dawn Platinum, the better grease getter.
10: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
11: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
12: वक्त जो है वो बदल चुका था. रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना, पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था. ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे, पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं. और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का ताता शुरू हुआ, उससे पूरे एफएम रेडियो का समीकरण ही बदल गया. एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545.
13: हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन. आइए नजर करते हैं अराउंड द बॉलीवुड आज की टॉप खबरें. IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की लगातार दूसरी खिताबी जीत के बाद सोशल मीडिया पर अनुष्का शर्मा और विराट कोहली छाए हुए हैं. मैदान पर अनुष्का के फ्लाइंग किस और जीत के बाद दोनों के डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस अनुष्का को RCB का लकी चार्म बता रहे हैं. फिल्म अल्फा के सेट पर आलिया भट्ट और बॉबी देओल के बीच अनबन की अफवाहों पर आखिरकार बॉबी ने चुप्पी तोड़ी है. इन खबरों पर हंसते हुए बॉबी ने कहा, लोग वाकई बहुत वेले हैं. उन्होंने साफ किया कि सेट पर ऐसा कुछ नहीं है और वे आलिया के साथ काम करने को लेकर बेहद उत्साहित है. बंदर भाइयों, बॉलीवुड अभिनेता तरुण वरुण धवन ने अपनी पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए वरुण धवन की आवाज, चेहरे और नाम का इस्तेमाल कर बनाए जा रहे फर्जी विज्ञापनों और डीप फेक वीडियो को तुरंत हटाने का आदेश दिया है. दिग्गज फिल्म मेकर इम्तियाज अली ने अपकमिंग फिल्म रामायण में भगवान राम का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर का खुलकर समर्थन किया. इम्तियाज ने कहा कि रणबीर एक ऐसे बेहतरीन एक्टर है जो पर्दे पर कुछ भी कर सकते हैं और इस बेहद खास किरदार में पूरी असलियत और गहराई लेकर रणबीर आएंगे. हाँ जी बिंदर भाई, और बॉलीवुड को अपनी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिलीज का इंतजार है. बिग स्क्रीन पर कई दिनों से बिग बजट फिल्म रिलीज नहीं हुई है। दर्शकों को भी इंतजार है कि बिग बजट बिग स्टार्स की फिल्में आए और धुरंधर के बाद धुरंधर जैसी कमाई करे। ये हिट वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: हाँ जी मेरे भाइयों, रेड वॉइस और हमें आपके दोस्त जतीन आपके लिए रेड वॉइस फिर से शुरू कर रहा है अफ्रीकन लायन सफारी कॉन्टेस्ट। बंदर भाइयों, देना होगा आपको जवाब। आप जीत सकते हैं फैमिली पास या फिर सिंगल पास अफ्रीकन लायन सफारीज के। आइए आपको बताता हूँ आज का सवाल। आज का सवाल बहुत ही सिंपल है, अफ्रीकन लायन सफारी कहाँ पर है, क्या एड्रेस जानते हैं आप? अगर जानते हैं तो हमें कीजिए ईमेल contest@weeklyvoice.com। आप जीत सकते हैं अफ्रीकन लायन सफारीज के पासिस। उनकी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा। ये हिड वॉइस, हम है आपके दोस्त जतीन।
1: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50-70-70 सेंट बारबरा बुलेवार्ड मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5-10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12-3, डिनर 5-10। वेडनेसडे को बंद, मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं। कॉल करें 9057952299 या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरु लक्ष्मी साउथ इंडिया के स्वाद का असली तड़का।
2: रेड्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
3: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
2: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
4: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
5: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दाँत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
5: डॉक्टर नील गजर, 735 ट्वीन एवेन्यू, स्वीट 16, मिसिसागा। कॉल 289-401-0009।
6: प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 416-660-8545।
7: हाँ जी मेरे भाइयों, ये हेड वॉइस और हमें आपके दोस्त यतीन। आइए करते हैं जिंदगी की बात। एक बार एक लड़की अपने पिता के पास गई और रोते हुए बोली, पापा मैं इस जिंदगी से थक चुकी हूँ, एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने आ जाती है, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूं। उस लड़की के पिता शेफ थे, उन्होंने मुस्कुराकर बेटी को देखा और कहा, चलो आज मैं तुम्हें कुछ रसोई में दिखाता हूँ। पिताजी ने गैस पर तीन अलग अलग बर्तनों में पानी उबलने के लिए रख दिया। पहले बर्तन में उन्होंने एक आलू डाला, दूसरे बर्तन में एक अंडा और तीसरे बर्तन में कॉफी के कुछ दाने, कॉफी बीन्स डाल दिए। बेटी चुपचाप खड़ी होकर ये सब देख रही थी और सोच रही थी, पापा इस मुश्किल वक्त में ये क्या अजीब काम कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद पिता ने बेटी से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? बेटी ने कहा, वही जो आपने उबाला है, आलू, अंडा और कॉफी। पिता ने कहा, जरा करीब से देखो, इन तीनों चीजों ने एक ही मुसीबत का सामना किया, वह था उबलता हुआ पानी, लेकिन तीनों का बर्ताव बिल्कुल अलग था। आलू जो उबलने से पहले बहुत सख्त और मजबूत था, उबलते पानी में जाते ही कमजोर और बिल्कुल मुलायम हो गया। अंडा जो पहले बहुत नाजुक था, जिसके अंदर का हिस्सा लिक्विड था, उबलते पानी में रहकर अंदर से सख्त और हार्ड हो गया। लेकिन कॉफी सबसे अनोखी थी, उसने उबलते पानी में जाकर खुद को नहीं बदला, बल्कि उस पानी को ही बदल दिया और उसे एक बेहतरीन खुशबूदार ड्रिंक बना दिया। और फिर पिताजी ने कहा कि जब मुश्किलें तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है, तो खुद से पूछना कि तुम क्या बनना चाहती हो, क्या तुम उस आलू की तरह बनना चाहती हो जो मुश्किल आते ही टूट जाए और कमजोर हो जाए, या उस अंडे की तरह जो मुश्किलों के थपेड़े खाकर अंदर से कठोर और कड़वा हो जाए, या फिर उस कॉफी बीन्स की तरह बनना चाहती हो जो मुसीबत आने पर अपनी कमजोरी दिखाने के बजाय उस पूरी परिस्थिति को ही बदल दे और चारों तरफ से अपनी खुशबू बिखेरे। आज मित्र भाइयों, चुनाव आपका है, मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में आती है, लेकिन विजेता वही बनता है जो कॉफी की तरह विपरीत परिस्थितियों को भी एक खूबसूरत मौके में बदल देता है। मुस्कुराते रहिए, खुद पर भरोसा रखिए, वरना जिंदगी इम्तिहान लेती है। कोई पास होता है, कोई पास होने की कोशिश में आगे बढ़ जाता है। ये द वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन। ये थी जिंदगी की बात।

जो भी मीट अगेन ऑन द डे जहाँ सूरज दादा ने खिल खिल के चमक चमक के कह ही दिया है कि भाई अब समर्स वाला वेदर लुक्स लाइक इज हियर टू स्टे। वो बात और है कि मौसम कैसा भी हो मंडे के मूड्स को ना फ्राइडे तो बना ही नहीं पाता है ना। फ्राइडे अपना अपना सा लगता है और ये मंडे ये हमेशा सौतेला सा ही लगता है, एक्सेप्ट फॉर दैट लॉन्ग वीकेंड वाला मंडे, वो डिफरेंट होता है। पर कोई नहीं, हम जो है साथ बना सकते हैं किसी भी दिन, कैसे भी दिन, कैसे भी पल को एक हैप्पी हैप्पी सी सौगात, है ना। सो ऑन दिस मंडे हो या फ्राइडे, हर पल ऑफ एनी डे कैन बी फन अगर जिंदगी के साथ अलाइन कर ले हम अपना मन वाली नोट। दिस इज स्वाति एंड पायस्विनी ऑन फिल्मी नुक्कड़ सी हमारे 101.3 एफएम पर सिंग कि आज हमारे साथ जुड़ेंगे प्रशांत जी हमारे अनवाइंड योर माइंड सेगमेंट के लिए, और आपकी तो पसंद की धुनें हम बजाते ही रहेंगे, गप्पे चलती रहेंगी। उसके लिए स्टूडियो का नंबर हैंडी जरूर रखें टू पार्टिसिपेट इन द सेगमेंट, या अपना सवाल ऑफ एयर भी हमसे पूछने के लिए, या फिर अगर आपको कोई बात करनी है खास हमसे या कोई रिक्वेस्ट है स्पेशल किसी स्पेशल के लिए, स्टूडियो का नंबर 416593 0055।

0: लेना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवर्टाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042, विजिट filminukkad.com।
1: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस। लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से। आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। Genesis Markham, डूइंग लग्जरी योर वे, अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
0: इस बायर्स मार्केट में घर का प्राइस बहुत कम मिल रहा है और रियल्टर्स कमीशन भारी पड़ रहा है, क्या करूं?
2: स्मार्ट सेलिंग प्राइस बेशक मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन माई रियल्टो के सेलर एडवांटेज प्रोग्राम से आप खुद डिसाइड करते हैं सर्विस पैकेज और कमीशन भी।
0: यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों मेरे हाथ में।
2: बिल्कुल, लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट फ्रॉम 0.99%। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माई रियल्टो। कॉल मी फॉर अ फ्री मार्केट इवैल्यूएशन एट 416-843-7600।
0: My property, my choice, my Realco, the real estate company. Or visit myrealco.com. Not intended to solicit buyers and sellers already under contract.
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
7: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
6: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
8: At Wayne's Auto Group, आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव, चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप। हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम, हर जर्नी को बनाए खास। Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ। ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज, ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स, फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर। Wayne's Auto Group is always there. Aaj hi visit kare waynesautogroup.com.
0: Get on your feet with Peppy Nukkad Beats.

पर प्रिटी वुमन की यहाँ पे तारीफ चल रही है और तारीफों से मुझे याद आया तो से समथिंग नाइस डे, किसे कुछ आपने कहा या नहीं, वो नाइस वाला नहीं कहा तो भाई अगली जून 1st आने का वेट बिल्कुल ना करें, वो नाइस नाइस जो स्टफ होता है ना जिसे सुन के मन तितलियों सा उड़ने लगता है और कूदने लगता है, वो आज ही कह डालो। उस भरोसे में ना रहो कि क्या कहना है क्या सुनना है, मुझको पता है उनको पता है, क्योंकि वो नाइस बातें सुनने कहने का ना अपना ही एक अलग मजा होता है ना। फिलहाल लेके चलते एक और तारीफों की तरफ सनमपुरी की आवाज में तलमीनुकर।

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: क्विक रिमाइंडर, आज भी है हमारा हर मंडे की तरह अनवाइंड योर माइंड सेगमेंट विद थेरेपिस्ट, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे रजिस्टर्ड सोशल वर्कर एंड साइकोथेरेपिस्ट प्रशांत शौरी जी। आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके

सवाल लो के लिए ही ये सेगमेंट बना है. इट्स अ कम्युनिटी सेगमेंट. स्टूडियो का नंबर रहेगा ड्यूरिंग द सेगमेंट 416-593-0055. आप अपना सवाल मुझे टेक्स्ट करके भी पूछ सकते हैं एट 647-830-5042. और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी डीएम कर सकते हैं अपना सवाल. इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दोनों पे मेरा हैंडल रहता है आरजे स्वाति टोरंटो. बहुत आसानी से मिल जाऊंगी. पर्सनल मैसेज में अपना सवाल भेज सकते हैं. अपना नाम बताने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप नहीं चाहे तो यू कैन कीप योर नेम एज अनॉनिमस और सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं. नोबडी नीड्स यू नो कि आप कौन हैं पूछने वाले. बस आप सवाल पूछें और जवाब आपको मिल जाएगा. स्टूडियो में जब आप कॉल करते हैं ड्यूरिंग द सेगमेंट तो हमारा टाइम इस सेगमेंट का रहेगा हर मंडे की तरह आज भी अराउंड 5:45 टू 5:50. जिन जिन को ये सेगमेंट आपको लगता है सुनना चाहिए उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचाइएगा. तो मिलते हैं अनवाइंड योर माइंड सेगमेंट में टुडे एट 5:45 5:50. स्टूडियो का नंबर अगेन 4165930055 एंड माई नंबर इज 647-830-5042.

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042, विजिट filminukkad.com।
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.

0: ஃபார் எனி இன்ஃபர்மேஷன் கால் சரப் சபர்வால் 6478648844. That's 6478648844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: Find out Thai Spring Special Mortgage Rates and Extra Promotion Ka with Amit Khurana. 5 years fixed 4.14%, 3 years fixed 4.19%, 5 years variable 3.55%, plus cash back from bank and special gift from Amit Khurana up to $1,500. Terms and conditions apply. Call Amit 647-341-2785, 647-341-2785 or visit amitkhurana.com.
4: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी. अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
5: नटवर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती.
6: मगर क्यों, पिताजी नहीं माने क्या?
5: वो बात नहीं है, हम जब भी घूमने जाते हैं तुम पता नहीं कौन सा रेडियो चलाते हो, ना वो गाने बजाते हैं ना तुम अच्छा गाते हो.
6: तो आप क्या गाना भी सीखना होगा?
7: सिर्फ CMR एट 5 PM पर ट्यून इन रहना होगा. रेडियो CMR एट 5 PM योर इवनिंग म्यूजिकल ड्राइव.

चार कदम. कहते हैं ना, गुड चप्पल्स कैन टेक यू टू गुड प्लेसेस एंड मे बी मोर देन दोस चार कदम्स. एंड फ्लाइंग चप्पल्स आर दोस ब्रह्मास्त्र फॉर मम्मी लोग्स. इट रिमाइंड्स मी दैट कम्स विद लिमिटेड सप्लाई दो, बट इट सॉल्व्स दोस घरेलू प्रॉब्लम्स समटाइम्स जो डांट डपट और प्यार व्यार भी कई बार नहीं कर पाता. किस किस ने कहीं खाई है बोलो तो. अच्छा एक बात तो है कि वो चप्पल की मार ना दैट वी ऑल चेरिश थ्रू आउट आवर लाइव्स नाउ इज ऑलवेज एट पार विद एनी अदर टाइप ऑफ दैट लव शव एंड प्यार व्यार. मानेंगे मेरी बात. एंड दिस डे जो बात हो रही है अभी के नेशनल फ्लिप फ्लॉप डे था कल, इन कंट्रास्ट टू दैट आज का दिन जो है वो है गो बेयर फुट डे. मतलब नंगे पांव ठंडी ठंडी घास को, रेतीले बीच को, समुद्र के ठंडे गर्म पानी को महसूस तो करो यार, क्योंकि ये एहसास चप्पल वप्पल पहन के तो नहीं ही आते है ना. इन शॉर्ट चप्पल कोई भी पहनो, माँ की उस फ्लाइंग चप्पल को मत भूलो क्योंकि वो आपको हमेशा सैनिटी में रखेगी और जमीन से जरूर जुड़े रहो. एंड यस, पहले पहनो चप्पल या नंगे पांव चलो. आइडिया इज कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के और अपनी धुन में पक्के बन. बस चलते चलो, सबके साथ चलो या एकला चलो, चलते चलो.

0: लाइफ सही है, टेंशन नहीं है, बस यही अप्रोच हमें लाइफ के लिए हमेशा रखनी है। हम कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसी हम बनते जाते हैं, वैसी परिस्थितियां फिर बनती जाती हैं और फिर वैसी ही जिंदगी में हम जीते रहते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी सोच को सही करना होगा। इतना तो मैं भी थेरेपी ले ही रही हूँ साथ में इस सेगमेंट के जरिए, अनवाइंड योर माइंड में। मेरा माइंड इतना अनवाइंड हो चुका है तो सोचा आपसे भी ये शेयर कर दिया जाए। वैसे इस सेगमेंट में हमारे साथ हमेशा से जुड़ते आए हैं प्रशांत शोरी जी, हमारे रजिस्टर्ड साइकोथेरेपिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, बहुत अरसे से बहुत लोगों की मदद करते आ रहे हैं व्हेन इट कम्स टू थेरेपी। आप एक बार उन्हें कॉल भी कर सकते हैं। उनका क्लिनिक का नंबर रहता है 905-405-8224, 905-405-8224। इस क्लिनिक के नंबर पे आप बात करते हैं और प्रशांत जी के लिए पूछते हैं तो आपका एक क्विक अपॉइंटमेंट उनके साथ फिक्स किया जा सकता है। प्रशांत जी बताते हैं कि पहले 15 मिनट का जो इनिशियल कंसल्टेशन होता है ओवर फोन, वो बिल्कुल फ्री होता है। वो कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री होती है जिसमें कि आप दोनों एक दूसरे से मिलकर समझते हैं वेदर दिस जोड़ी फिट्स ईच अदर और नॉट, और साथ में ये भी पता चलता है कि कितने दिन की आपको कंसल्टेशन चाहिए। कई बार बहुत छोटी सी कंसल्टेशन चाहिए होती है, कई बार कुछ सेशंस चाहिए होते हैं, कई बार बहुत सारे भी चाहिए होते हैं, पर वो एक इनिशियल कंसल्टेशन जो होती है वो एब्सोल्युटली फ्री होती है, उसका फ़ायदा ज़रूर उठाया करें। तो नंबर ऑफ द क्लिनिक इज 905-405-8224 और उनकी वेबसाइट रहती है iwantpeace.org। आज भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सुनिएगा ये सेगमेंट, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मैं कई बार जब पढ़ती हूँ मुझे ये समझ में आता है कि हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी हम सबके मन से वो सवाल उठे होते हैं हमारे मन में, और फिर उनके लिए जब टिप्स हमें मिलती हैं छोटी छोटी यहीं पर, तो उन्हीं को अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो भी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर होने लगती है। स्टूडियो का नंबर आपके सवालों के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, आप उन बातों से एग्री करते हैं नहीं करते हैं, वैसे कुछ एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं, उन एक्सपीरियंसेस से आपकी ज़िंदगी में आपने क्या परिवर्तन देखा या क्या सुधार ला पाए, वो भी आप हमसे सबसे शेयर कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055 for you to participate. Karte hain swagat Prashant ji ka. Prashant ji, welcome.
1: थैंक यू सो मच स्वाति जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो।
0: चलें, बहुत ही अच्छा सा वेदर होता जा रहा है। मैं देखती हूँ कि लोग इतने खुले मौसम में, जब खुले आम खुले में जाने का सोचते हैं बड़े दिल से, बस खुली खुली सी एक जिंदगी अच्छी, खुले विचारों वाली, वो भी हो जाती है तो कितना अच्छा हो जाता है। और मेरे ख्याल से ये सेगमेंट में हमारी प्रयास यही रहता है कि सबके कहते ना अच्छे विचार हों और उनके साथ एक अच्छी ज़िंदगी हम जी पाएँ। छोटी छोटी टिप्स जो आप देते हैं बहुत हेल्पफुल रहती हैं, तो उसके लिए आपका थैंक यू।
1: नो, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एज आई सेड, एंड आपका भी थैंक यू। इट्स व्हाट इज व्हाट शुड आई से, इट इज़ अ म्यूचुअल थिंग दैट वी स्टार्टेड, इट्स ऑलमोस्ट 18 मंथ्स।
0: या इट इज 18 मंथ्स, और मैं देखती हूँ कितने लोगों का, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास मैसेजेस आते हैं, लोग बताते हैं, मुझे लगता है बहुत लोगों को छोटी छोटी सी भी जब हेल्प मिल जाती है इसके ज़रिए, जब तक वो थेरेपी पर नहीं जाते, हर किसी को तो कई बार थेरेपी की भी ज़रूरत नहीं होती, कई बार छोटी सी एक सलाह, एक गाइडेंस जो कई बार इस सेगमेंट के ज़रिए उन्हें मिल जाती है, वो भी बहुत हेल्पफुल होती है। तो थैंक यू, टाइम निकालते हैं आप। अच्छा प्रशांत जी, आज मैं सीधे क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, क्योंकि मेरे पास दो क्वेश्चन हैं। मुझे लगता है ये जो सवाल मेरे सामने आए, ये मैंने बहुत लोगों के सुने हैं, पर भेजने वाला कोई एक ही है, तो शायद जब आप जवाब दें बहुत लोगों की मदद हो जाए। तो पहले क्वेश्चन में लिखने वाली लिखती हैं, और मैं इसलिए आई एम श्योर कि ये वाली हैं, जबकि मेरे पास नाम नहीं है इनका, क्योंकि वो ये कहती हैं कि माय हस्बैंड, तो आई एम श्योर ये वाली हैं। वो कहती हैं माय हस्बैंड इज़ वेरी नाइस टू एवरीवन, सबसे बहुत अच्छे हैं, बट एट होम वो बहुत क्रिटिकल रहते हैं, बहुत इम्पेशेंट लगते हैं और डिसरिस्पेक्टफुल भी हो जाते हैं। क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है उन्हें तो कहीं किसी से अगर जो बात करती होंगी तो लोगों ने ये कह देते होंगे, अरे यार तुम कैसे कह रही हो, तुम्हारा पति तो बहुत अच्छा है तुम कैसे शिकायत लेके आ रही हो। पर ऐसे में कई बार आप खुद पे भी डाउट करने लगते हैं, मुझे लगता है कि मैं सही सोच रही हूँ या बाकी लोग सही सोच रहे हैं, या ये बिहेवियर में ही चेंज है।
1: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एंड एज यू जस्ट सेड कि एक क्वेश्चन पूछता है उससे कईयों का फायदा होता है। And before answering that question, I will again mention that when people come to us for counseling, so we go in depth and we also ask so many counter questions to understand the unique circumstances that द पर्सन इज हैविंग, बट इन दिस केस इट इज अ वेरी जेनेरिक और जनरल क्वेश्चन, सो द आंसर विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड इन जेनरलिटी. तो ये डेफिनेटली पेनफुल है कि जब आप देखते हैं, आप खुद भी अपने हस्बैंड या वाइफ डजेंट मैटर उनके साथ होते हैं, आप देखते हैं किसी पार्टी में कहीं आप जा रहे हैं उनके साथ और बहुत ही अच्छा बिहेवियर उनका लोगों के साथ होता है, और वही जब आप पार्टी से निकलते ही गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है, तो आपको लगता है ये क्या हो गया, ये एकदम चेंज क्यों हो गया. तो उससे बहुत सारे फीलिंग्स आपके अंदर आने स्वाभाविक हैं, जैसे फीलिंग ऑफ हर्टफुलनेस, फीलिंग ऑफ कंफ्यूजन, फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट एंड समटाइम्स लोनलीनेस और कई बार सेल्फ डाउट, राइट, कि ये मेरे साथ ही क्यों ऐसे हैं.
0: और लोनलीनेस भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि उसमें आपको ये लगता है कि आप अकेले खड़े हैं उस सोच के साथ, उस एक्सपीरियंस के साथ. बाकी लोग तो बहुत तारीफ कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो आप किसी कहने लायक भी नहीं रहे.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो जब हम यही चीज काउंसलिंग में अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं
0: जी,
1: तो हम कोशिश करते हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि कैन यू गिव अस सम एग्जांपल्स ऑफ हाउ ही बिहेव्स डिफरेंटली एट होम, या हाउ डज हिज बिहेवियर अफेक्ट यू इमोशनली, या व्हाट डू यू विश दैट वाज डिफरेंट. तो ये सारी चीजें हम एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है ना, और हम इस तरह की चीजें भी पूछते हैं उनको, उनकी हेल्प करने के लिए, कि वो बिहेवियर कब हो रहा है आपके साथ, कोई स्पेसिफिक ट्रिगर है या कोई किसी फटीग के कारण है, किसी स्ट्रेस के कारण है, वर्क प्रेशर के कारण है, या इन जनरल किसी और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से है, तो वो भी ढूंढने की कोशिश करते हैं. क्योंकि कई बार जरूरी नहीं है कि आप इस चीज को जनरली बोलें कि बिहेवियर बाहर तो अच्छा है, मेरे साथ खराब है, उसका कुछ और हिडन रीजन भी हो सकता है. ठीक है ना, कि क्या ये कभी कभी ही होता है, या ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता है, या ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग पैटर्न है. तो ये सारी चीजें हम काउंसलिंग में डिस्कस करते हैं.
0: ओके, अच्छा, जैसे ऐसे देखा है कि बाहर वाले, एक चीज इसी में मुझे एक याद आ रहा है, एक और, कि बाहर वाले सब बहुत तारीफें करते हैं मेरे हस्बैंड की, और वो उन्हीं चीजों की तारीफें कर रहे होते हैं जो मुझे लगता है घर में वो बिल्कुल उलट हैं.
1: लेकिन एक बात और भी समझने की है, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी की बहुत तारीफ करते हो और उसकी घर में क्या हालत हो, हमें क्या पता है. ठीक है, तो क्या कहावत है, दूर के ढोल सुहावने, कुछ कहावत है ना
0: जी,
1: हाँ, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड.
0: बिल्कुल ठीक बात.
1: हाँ, तो लेकिन इसमें सबसे पहले तो आप अपने सेल्फ ब्लेम को एड्रेस करें. मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बहुत बार देखा है कि जो स्पाउसेस हैं इस केस में, जो वाइफ है, वो ऐसा कई बार अपने आप को समझाने लगती है, कहीं मैं ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव तो नहीं हूँ.
0: राइट,
1: ठीक है, मे बी आई एम द प्रॉब्लम, मैं ही प्रॉब्लम की जड़ हूँ, मेरे साथ ही ऐसा करते हैं और तो कहीं करते नहीं है ना. और अगर मैं बेटर हो जाऊं या मैं बेटर होती तो शायद मुझे भी डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलता. तो पहले तो इस गिल्ट से, इस सेल्फ ब्लेम से निकले, ये बहुत जरूरी है. और अगेन आई डोंट नॉट नो कि उनको ये है कि नहीं, हम तो सारे
0: सारी प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहे हैं.
1: और दूसरा ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि हमेशा ही आपके लिए बहुत काम आएगा, स्पेशली जब फैमिली डायनामिक्स की बात करते हैं, इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो, बच्चों के साथ हो, पेरेंट्स का आपस में हो, पति पत्नी का हो, अपने पेरेंट्स के साथ हो, उसमें कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज़ है. तो इसमें आप हमेशा ही स्पेसिफिक और बिना एक्यूज वाली स्टेटमेंट्स यूज करें.
0: ओके,
1: उससे हमेशा हेल्प होती है. यू आर ऑलवेज रूड टू मी, एक तो यही बात, इस बात तरीके से कहा जा सकता है. दूसरा, इसी बात को इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि आई फील हर्ट व्हेन आई एम स्पोकन टू, आई एम स्पोकन बाय यू टू हार्शली. ठीक है, आई वुड लाइक अस टू टॉक रिस्पेक्टफुली. तो इस तरह से आप उसी बात को पॉजिटिव तरीके से भी कह सकते हैं.
0: वेरी ट्रू.
1: और थोड़ी सी हेल्दी बाउंड्रीज भी रखें. ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड वर्बली अग्रेसिव है, डिसरिस्पेक्टफुल है, ठीक है ना, तो आप बहुत थोड़ा सा अफर्म होके ऐसा बोल सकते हैं कि आई एम विलिंग टू डिस्कस दिस विद यू, बट नॉट इफ यू आर यलिंग. ठीक है ना,
0: ओके, वेरी ट्रू.
1: और आई एम गोइंग टू स्टेप अवे एंड वी विल कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन when we both will be calmer.
0: Yes.
1: तो उसमें आपने उस पे भी दूसरे व्यक्ति पे भी ब्लेम नहीं डाला.
0: हुँ.
1: आपने उनको बोल दिया कि जब हम दोनों काम होएंगे तब बात करेंगे.
0: ठीक
1: है, अगले को लड़ने का एक और अपॉर्चुनिटी ना मिले. तुम मुझे अग्रेसिव बोल रही हो, एंग्री बोल रही हो, तुम भी तो
0: पहले पहले खुद को देखो.
1: हाँ, पहले खुद को देखो.
0: और
1: एक छोटी सी टिप जो हमेशा ही काम आती है कि अपने सपोर्ट सिस्टम्स को भी स्ट्रेंथन कीजिए. फ्रेंड्स, फैमिली, हॉबीज, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और इफ रिक्वायर्ड काउंसलिंग. तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं लाइफ में, क्योंकि आइसोलेशन जो है या आइसोलेशन की इवन जो फीलिंग है ये रिलेशनशिप्स को वर्सन ही करती हैं, बिगाड़ती ही हैं.
0: तो क्योंकि आप टू डिपेंडेंट हैं ऑलरेडी किसी पर.
1: हाँ,
0: वो जब चीज़ हटती है आपकी जिंदगी से या नाराज होती है वो आपसे, तो आपको ऐसा लगता है आप कुछ है ही नहीं मेरे लिए बचा.
1: कुछ है ही नहीं है, तो ये भी गलत है. हाँ, जैसे हमने पिछली बार या उससे पिछली बार कहा था ना, डेंजर्स ऑफ सिंगल आइडेंटिटी.
0: हाँ,
1: तो आपको कुछ और सपोर्ट सिस्टम भी होना चाहिए जो कि आपकी हेल्प कर सके. और लास्ट में एक चीज जरूर कहूंगा कि इवन दो इन मोस्ट ऑफ द केसेस दीज थिंग्स आर टेम्पररी एंड देयर इज अ क्योर, बट इन वेरी फ्यू केसेस इट हैपेंस दैट द बिहेवियर मे इंक्लूड सम अब्यूज. इट कुड बी कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म, इट कुड बी कॉन्स्टेंट ह्यूमिलिएशन, ठीक है ना, इंटिमिडेशन, कंट्रोलिंग बिहेवियर. ये सारी चीजें अगर लगातार है तो डेफिनेटली देन यू मे नीड सपोर्ट और हेल्प. एंड समटाइम्स अगेन इन दिस केस इफ थिंग्स डोंट गो वेल देन कपल्स काउंसलिंग इज आल्सो हेल्पफुल.
0: कपल काउंसलिंग
1: ये हमेशा देखा गया है. आई शुडंट से ऑलवेज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द पर्सन हु नीड्स इट मोर इज द वन हु इज लीस्ट इंटरेस्टेड. हाँ, तो आप अगर किसी को कहो, वो हमेशा एक पार्टनर दूसरे को बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है अगर इफ वी आर अनेबल टू रिजॉल्व इट देन लेट्स टॉक टू समवन. वो कहता है भाई तुम टॉक कर लो, मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो पता है मेरे में कोई
0: प्रॉब्लम है. हाँ,
1: तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम जाके सुधार लो.
0: हाँ,
1: तो ये भी एक बहुत क्या बोलते हैं ओपन माइंडेडनेस चाहिए इस चीज को एक्सेप्ट
0: कि अगर तुम्हें है प्रॉब्लम, किसी एक को भी प्रॉब्लम है और आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो कई बार किसी की मदद लें.
1: ठीक है भाई तुम्हें प्रॉब्लम है लेकिन मैं तुम्हारे लिए चलता हूँ.
0: हाँ, या मैं तुम्हारे लिए चलती हूँ या मैं तुम्हारे लिए चलता हूँ, सो दैट इट हेल्प्स बोथ ऑफ अस एट द एंड ऑफ द डे. क्योंकि रिलेशनशिप में तो दो जन है, इट्स एन इक्वेशन, ए इज इक्वल टू बी. तो बी एग्जिस्ट नहीं करेगा या पूरी तरह से नहीं होगा या होगी उसमें, तो फिर काम नहीं चलेगा. चले एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलते हैं. इस क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से जिन्होंने पूछा उन्हें भी मिला होगा थोड़ा बहुत, और जिन्होंने नहीं पूछा पर वो इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उन्हें भी शायद कुछ मिला हो. स्टूडियो के नंबर फॉर योर क्वेश्चंस 416593-0055.

0: ऑलराइट, हम आपका स्वागत करते हैं वापस इस सेगमेंट में अनवाइंड योर माइंड विद अ थेरेपिस्ट. हमारे साथ थेरेपिस्ट रहते हैं हमारे प्रशांत शोरी जी, हु इज अ रजिस्टर्ड साइकोथेरेपिस्ट एंड सोशल वर्कर. उनके क्लिनिक का नंबर फिर से याद दिला दूं, 9054058224. एंड रिमेंबर, पहले 15 मिनट की जो एक कंसल्टेशन होती है ओवर फोन, पहली कंसल्टेशन होती है जो, वो बिल्कुल फ्री होती है, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं अपनी छोटी बड़ी समस्या के लिए. साथ में अगर आप स्टूडियो इस वक्त फ़ोन करके अपना सवाल पूछना चाहते हैं, इवन ऑफ एयर पूछना चाहते हैं, बिना नाम बताए पूछना चाहते हैं, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर 4165930055. तो प्रशांत जी, हम बात कर रहे थे इस वक्त एक कपल के बारे में, और उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं. मैं कई बार देखती हूँ कि ऐसे ऐसे जोक्स चल रहे होते हैं कई बार कपल्स में, जो बाकी लोग हंस रहे होते हैं. एक बंदा या बंदी कहते हैं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ या कर रही थी. अब हस्बैंड बाद में या वाइफ बाद में कहते हैं कि नो, इट वॉज अ जोक, आई नो कि यू मेंट इट समवेयर एंड इट वॉज डिसरिस्पेक्टफुल. जो कई बार पब्लिकली लोग सोचते हैं कि ये मजाक है इन दोनों के बीच, कितनी हेल्दी रिलेशन में, दे कैन जोक अराउंड, यू नो. उस समय वो हंस भी देते हैं, लेकिन एक्चुअली घर जाके फिर झगड़ा भी होता है कि यू क्रॉस द लाइन, ये नहीं बोलना था. वो भी मुझे लगता है कि छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जो शायद हमें समझ में नहीं आती कई बार. एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, ये भी बहुत लोगों की परेशानी हो सकती है, हालांकि अदर वे राउंड हमारी सोसाइटी में हमने ज़्यादा देखी है, पर इसमें ये कहते हैं, द इंटरफेरेंस ऑफ माई मदर इन लॉ इन माई लाइफ हैज़ बीन टॉक्सिक एंड डिस्टर्बिंग my family harmony and my wife's behavior. इससे मुझे समझ में आ रहा है, लिखने वाले एक मेल हैं.
1: बिल्कुल.
0: It is unfair if I ask my wife not to communicate with her mother. इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो बहुत sensible भी है कहीं ना कहीं. Now what can I do in this situation? क्योंकि मैं बीवी को माँ से बात करने के लिए मना नहीं करना चाहता. ये अच्छी बात नहीं है मेरे behalf पर, और पर जब भी वो बात करती हैं तो मुझे लगता है उसके बाद डिस्टर्ब होती है घर की हार्मनी.
1: अच्छा जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यूजुअली ये क्वेश्चन दूसरी तरफ से आता
0: है. हाँ, वही मैंने कहा, हमारी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है जनरली दूसरी तरफ से आता है.
1: दूसरी तरफ से आता है क्योंकि हमारी जो फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं उसमें अभी भी पेरेंट्स इन लॉज जो है, मतलब आपके सास ससुर वो आपके साथ रहते हैं, हस्बैंड के पेरेंट्स, तो यूजुअली वाइफ्स को भी ये प्रॉब्लम होती है.
0: Right.
1: कि कुछ ना कुछ अनवांटेड इंटरफेरेंस. हाँ, और खामखा का क्रिटिसिज्म. तो खैर, एनीवेज, ये दूसरी तरफ से आया है.
0: या
1: व्हिच इज आल्सो कॉमन, एंड इंटरेस्टिंगली इट हैज बीन सीन दैट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मैरिटल प्रॉब्लम्स और डोमेस्टिक वायलेंस और वायलेंस इन मैरिजेस, वी यूजुअली अज्यूम कि ये हस्बैंड ने ही वाइफ पे किया होगा. इसमें विक्टिम है वो वाइफ ही होगी. तो ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे केसेस में उलट भी होता है.
0: राइट.
1: तो अब बात इसमें देखने वाली ये है कि बहुत सारी इसमें इश्यूज हम कर सकते हैं, अंडरलाइन इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं. अब हमें ये देखना है कि जो टॉक्सिक बिहेवियर इनको लग रहा है अपने मदर इन लॉ का, अगर हमें, अगर अगेन इफ आई विल बी टॉकिंग टू दिस पर्सन वन ऑन वन, तो फिर उसमें हम पहले ये ढूंढेंगे कि उसमें और स्पेसिफिक होंगे.
0: हाँ.
1: कि इज इट ओनली क्रिटिसिज्म, इज इट अनसोलिसिटेड एडवाइस, इज इट इंटरफेरेंस इन योर पेरेंटिंग स्टाइल. बहुत होता है कि हमने ऐसे पाला था, हमें पता है तुम गलत कर रहे हो.
0: हाँ.
1: तुम्हें क्या पता है, ठीक है ना, हमने तो पड़ोसियों के भी बच्चे पाल दिए थे,
0: तुम्हें पाल दिए, अब तुम हमें सिखा रहे हो.
1: ठीक
0: बात है.
1: मैं इतना एक्सपीरियंस है.
0: जी.
1: ठीक है. एंड इट कुड बी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट. ठीक है. एंड द मोस्ट कॉमन व्हिच आई हैव सीन ड्यूरिंग माय एक्सपीरियंस वर्किंग विद कपल्स इज दैट पेरेंट्स आर टेकिंग साइड्स ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स. सो इट इज अ नेचुरल ह्यूमन हैबिट टू टेक द साइड ऑफ देयर ओन, यू नो, चाइल्ड, चाहे वो गलत हो. और फ्रीक्वेंट कॉल और मैसेजेस और यूजलेस, मतलब टू मच ऑफ इंटरफेरेंस और बॉदरेशन,
0: टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन गोइंग आउट.
1: हाँ, या वो बार बार आपको कॉल कर रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं, बार बार आपको पूछ रहे हैं.
0: जी.
1: ठीक है. और अंडरमाइनिंग, ठीक है, योर पर्सनैलिटी और योर सेल्फ वर्थ
0: और कैपेबिलिटीज.
1: हाँ, तो ये कुछ भी हो सकता है.
0: राइट.
1: तो सबसे पहले तो हम यही चीज आइडेंटिफाई करते हैं इसमें।
0: और कई बार ये भी होता है कि मैंने कुछ केसेस में देखा है जहाँ पे बच्चों ने अपनी पसंद से शादी की होती है, पेरेंट्स पूरी जिंदगी एक्सेप्ट नहीं कर पाते अदर पार्टनर को।
1: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसमें अब आई होप कुछ पेरेंट्स भी सुन रहे हो, तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि अपना जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ओपन कम्युनिकेशन करके शादी से पहले बताओ, अच्छी तरह बताओ, ठीक है। और ये भी बताओ कि ये चेंज नहीं होगा जो भी है, लेकिन आप पहले कह देते हो ठीक है ठीक है, और बाद में कहते हो ठीक नहीं है, दैट इज नॉट फेयर, दैट इज नॉट फेयर टू योर चाइल्ड एज वेल एज योर चाइल्ड स्पाउस, दोनों के लिए अनफेयर है। तो अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, जो सबसे काम की चीज है, उसमें मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि ही शुड शिफ्ट हिज फोकस फ्रॉम द कंट्रोलिंग मदर इन लॉ टू स्ट्रेंथनिंग हिज मैरिज।
0: वेरी ट्रू, बहुत अच्छी बात कही आपने जी।
1: इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप उस चीज पे जोर क्यों लगा रहे हैं जो
0: जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है,
1: कंट्रोल में ही नहीं है। और अगर मैंने ऐसे भी बहुत सारे कपल्स देखे हैं जिसमें जो हस्बैंड है, मान लीजिए वो अपनी मदर को कहता है कि नहीं मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक कह रही है मामा, आप

0: अब हम जब काउंसलिंग करते हैं तो उसमें जैसे इसमें जो ये मेल हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, उनसे उनकी एक्सपेक्टेशंस भी हम एक्सप्लोर करते हैं।
1: अच्छा
0: आप अपने मदर इन लॉ के साथ हेल्दी रिलेशनशिप को कैसे डिफाइन करते हैं?
1: इंटरेस्टिंग
0: कौन सी बाउंड्रीज आपको रीजनेबल लगती हैं, कौन सी रीजनेबल नहीं लगती? ठीक है, कौन सी एक्सपेक्टेशंस हैं जो उनकी आपसे होनी चाहिए आपको रीजनेबल लगती हैं, और कौन सी एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं जो उनकी आपसे नहीं होनी चाहिए, जो कि अनरीजनेबल हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं ये हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि कई बार हमारे खुद के ही नज़रिए में कमी होती है और
1: हाँ
0: हम दूसरे को गलत समझते रहते हैं।
1: राइट right. और कोई हमें हमें कमी बताता है तो हम हर एक से कहते हैं ना, हर एक की सुनना भी नहीं चाहते हैं, किसी की सलाह हम लेना चाहते हैं पर हर एक से सलाह लेना भी नहीं चाहते. तो जब वो
0: हाँ
1: दे रहे होते हैं तो हमें ये भी लग रहा होता है कि ये क्यों बोल रहे हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी
0: तो इसमें एक छोटी सी चीज़ ये भी है कि आप अपनी वाइफ के साथ अपनी कम्युनिकेशन बेटर करें। ठीक है, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में कहा कि इन रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन इज द की, विच इज द की। यू कुड से द सेम थिंग डिफरेंटली एंड इट विल चेंज द होल, इफ इट विल चेंज द इफेक्ट एंड इमोशन। मदर इज रूइनिंग अवर मैरिज, ये भी कह सकते हो। आई फील एक्सट्रीमली हर्ट एंड डिसकनेक्टेड, ठीक है ना। वेन आई फील दैट अवर प्राइवेट डिस्कशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, बाय अदर्स ओपिनियंस,
1: राइट
0: ठीक है ना। अब इसी चीज को कितना ज्यादा अच्छे तरीके से कह दिया है ना। आप ब्लेम की बजाय अपनी फीलिंग्स, अपनी नीड्स और आप पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है,
1: वो आप
0: उस तरह
1: आराम
0: से अगर
1: से.
0: कम्युनिकेट करेंगे तो बेटर होगा। तो कुछ और पॉइंट्स भी हैं
1: चलिए
0: अगर
1: मैं
0: आप
1: एक
0: कहें।
1: छोटे से एक ब्रेक की तरफ चलती हूँ और स्टूडियो का नंबर फिर से बता देती हूँ, 416-593-0055. हम कर रहे हैं प्रशांत जी से बात इन द सेगमेंट अनवाइंड योर माइंड विद अ थेरेपिस्ट.

0: 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
2: अच्छा, ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना. अब ऐसे में सोचिए, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके $400 से $500 की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू $2,029, तो कितना अच्छा हो, है ना. यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स. तो भाई ये पॉसिबल है. कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 647-453-5353. उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं. 647-453-5353.
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त है, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आएं, तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
4: Unwind your mind with the therapist. Life sahi hai only on Film Nakal.

0: வெல்கம் பேக் ஃபில்மினுக்கு. சிஎம்ஆர் 101.3 FM பர் யூ ஆர் வித் ஸ்வாதி, பாயசினி அண்ட் பிரசாந்த் ஷோரிஜி, ஹமாரி ரெஜிஸ்டர்ட் சைக்கோ தெரபிஸ்ட் அண்ட் சோஷியல் ஒர்க்கர். இந்த செக்மெண்ட் அண்ட் வைண்ட் யுவர் மைண்ட் வித் தெரபிஸ்ட் ஃபில்மினுக்கர் ஹே. ஏ ஆப் சுன் ரே 101.3 FM. ஹம் பாத் கர் ரே தே பிரசாந்த் ஜி சே ஆப்கே சவாலோ கோ லேக்கர். ஆர் சவால் தா பிரசாந்த் ஜி இஸ் வக்த் வஹி ஆப் பதா ரே தே, குச் டிப்ஸ் தே ரே தே கி கேசே அப்னி, அகர் ஆப் கப்பல் ஹே, அப்னி ஆப் ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்ட்ரென்தன் கர்னே பே ஃபோக்கஸ் ஜியாதா கரே, ராதர் தென் ட்ராயிங் டு கண்ட்ரோல் வாட் இஸ் நாட் இன் யோர் கண்ட்ரோல், லைக் அ கண்ட்ரோலிங் மதர் இன் லா.
1: तो हमने जो पॉइंट्स अभी डिस्कस किए उसके अलावा तीन चार चीजें और हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा.
0: जी,
1: तो अगेन इन काउंसलिंग वी वुड आस्क क्वेश्चंस टू द पर्सन. उससे हमें ये भी कई बार देखने में मिलता है कि जो इंटरफेरेंस है ये बहुत बार एक्टिवेट कर देती है कुछ डीपर इश्यूज आप में. ठीक है ना, आप एक आपके मन में एक फीलिंग ऑफ डिसरिस्पेक्टफुलनेस आ जाती है, आपके मन में एक फियर आ जाता है कि जैसे आप इन्फ्लुएंस या कंट्रोल लूज कर रहे हैं अपनी फैमिली पे, अपनी वाइफ पे, अपनी लाइफ पे. ठीक है ना, और आप इनसिक्योर फील करने लगते हैं. और
0: क्योंकि ऐसा भी होता है ना, जैसे मैं वैसे याद करती हूँ, हम दोस्ती में भी देखते हैं इफ यू आर फ्रेंड और माय एनिमीज फ्रेंड. अब यहाँ पे एनिमी नहीं है वो, लेकिन अब दो गुट हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहा और जो बीच में दोनों का सबसे प्यारा बंदा है वो दोनों की तरफ है. तो उसमें ऐसा लगता है कि तुम मेरे हो या तुम उसके, अगर तुम उससे मेरी बुराई सुन रहे हो, तुम चाहे मान नहीं रहे हो पर सुन तो रहे हो, तो तुम मेरे कितने हुए थे ना. दोस्ती में भी कई बार स्कूल में हम कहते थे हाउ कुड यू.
1: ये पॉइंट नेक्स्ट है.
0: अच्छा ठीक है,
1: बिल्कुल मैं अभी उस पे आ ही रहा हूँ बस.
0: जी,
1: तो इसमें जो मैं कह रहा था जैसे इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन या द फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, और प्रीवियसली जो प्रीवियस वूंड्स होते हैं कई बार फैमिली रिलेटेड इश्यूज के, वो भी आपके कई बार उससे जिसको बोलते हैं पुराने घाव हरे हो जाते हैं, ताजा हो जाते हैं ना. और एक एक्सक्लूजन की फीलिंग आती है बहुत ज्यादा, जैसे आप पार्ट ऑफ द फैमिली नहीं है जैसे आपने अभी कहा. तो जो आपने अभी बात करी उसके बेसिस पे बेसिकली जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, तो हम लॉयलिटी टेस्ट लेते हैं अपने पार्टनर्स के. वी शुड अवॉइड डूइंग दैट. तो उसको बोलते हैं मेरे और मदर में से एक चुन ले. ठीक है, अपनी मैरिज और फैमिली ऑफ ओरिजिन में से एक चुन ले. दैट इज वेरी अनफेयर. तो ये तो बल्कि और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाएगा, और ज्यादा डिफेंसिवनेस को बढ़ाएगा, और ज्यादा आपका काम खराब होगा इससे. तो ये बहुत ही गलत अप्रोच है. ठीक है, और उसमें
0: थैंकफुली इस केस में उन्होंने पहले ही लिखा है कि दिस इज नॉट समथिंग आई एक्सपेक्ट हर टू डू. बट पॉइंट ये है कि ये जब उन्होंने सोचा है तो ये उन्हें सोल्यूशन कितना कहीं दिख रहा था कि ना ये बात, ना कहते ना, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कि ना ये बात करेगी अपनी मम्मी से और ना मुझे ये फीलिंग आएगी, तो यही किसी तरह हट पाए तो, पर ये हट नहीं सकता.
1: और अगर देखा जाए, अगर हम किसी को ऐसे फोर्स भी करें, वो मान भी ले, तो कैसे कोई खुश रह सकता है जब आप, अगर वो भी स्पेशली आपकी मदर है, फादर है, क्लोज फैमिली है, आप उनको कैसे छोड़ के रह सकते हैं.
0: बिल्कुल ठीक बात.
1: सो इसमें एक यूजफुल एक्सरसाइज ये हो सकती है, और जो इस केस में बहुत ज्यादा अप्लाई होती है, कि द पर्सन, द हस्बैंड इन दिस केस, शुड फोकस ऑन द थिंग्स दैट ही कैन कंट्रोल. He should not focus on the things that he cannot control. So वो क्या कंट्रोल कर सकते हैं कि उनके क्या रिएक्शंस हैं, उनका कम्युनिकेशन कैसा है. ठीक है, उनकी बाउंड्री स्टाइल्स कैसा है, वो बैलेंस्ड बाउंड्री स्टाइल्स है, बाउंड्री स्टाइल फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे. ठीक है, उनका अपना बिहेवियर कैसा है अपनी वाइफ के प्रति. ठीक है, जब वो अपनी वाइफ से बात करते हैं, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनका कम्युनिकेशन किस तरह का है. ये सारी चीजें उनके अपने कंट्रोल में है.
0: Right.
1: अगर वो इन सारी चीजों को ठीक कर ले तो 50% प्रॉब्लम तो खुद ही ठीक हो जाएगी. अब कौन सी चीजें हैं जो हम उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन्हीं पे ज्यादा जोर लगाते हैं. उनके मदर इन लॉ का जो ओपिनियन है, उनके मदर इन लॉ का जो बिहेवियर है, उनकी वाइफ की जो अपनी मदर के प्रति फीलिंग्स है,
0: ठीक,
1: ये सारी चीजें उनके आउट ऑफ कंट्रोल है.
0: राइट,
1: ठीक है ना. तो अगर हम जो चीजें, वो आपको मैंने पहले भी एक कहानी सुनाई थी कि एक लाइन में अगर मैं सुनाऊंगा, भी हमारे पास टाइम कम है, कि किसी से पूछा कि तुम्हारी जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, जितने भी फैमिली में झगड़े हैं, वो कैसे ठीक होंगे? वो कहते हैं एक मिनट में ठीक हो जाएंगे अगर बाकी सभी सुधर जाएं।
0: हाँ, आपने मुझे बताई थी, याद है मुझे, काफी पहले की बात है, और सब यही कह रहे होते हैं।
1: हाँ सभी। और दूसरे से पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, कहता मेरा भी यही ख्याल है, बाकी सभी सुधर जाएं तो ठीक हो जाए। तो अगर सभी बाकियों के सुधरने का वेट करते रहेंगे तो शायद ठीक कभी ना हो, अगर सभी खुद के सुधरने की कोशिश करते रहेंगे तो डेफिनेटली। और कई बार हम मन में एक इस तरह का ओपिनियन बना लेते हैं कि मेरे सुधरने से कुछ नहीं होगा, ठीक है।
0: हाँ, जैसे समाज को बदलने की बात आती है ना, हम ये कहते हैं मेरे अकेले करने से थोड़ी ना कुछ होता है, और
1: या मेरे,
0: ये कितना
1: बिल्कुल,
0: अच्छा एक्सक्यूज रहता है।
1: आप सुधर के देखो तो सही, 30 दिन, 60 दिन, कोई बात नहीं, बहुत लंबी जिंदगी है, 60 दिन खराब हो जाएंगे और क्या होगा, ठीक है ना। आप 2 महीने कोशिश तो करो, आप अपना बिहेवियर इतना अच्छा करो, अपने रिएक्शंस जो हैं उन पे मॉनिटर करो, अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथन करो, अपने बिहेवियर को बेटर करो, ठीक है। अब जब किसी कॉन्फ्लिक्ट में आप डिस्कशन में हो, उस वक्त अपनी लैंग्वेज पे फोकस करो कि दूसरा हर्ट तो नहीं हो रहा उसमें। डेफिनेटली वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, वी आर इमोशन ड्रिवन क्रिएचर्स,
0: वेरी ट्रू।
1: सो दूसरा कोई भी मूर्ख नहीं है, वो आपको समझेगा। तो इसमें एक जो लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा, वो हमने पिछली पिछले क्वेश्चन में भी कही थी और इसमें भी कहूंगा, कि कई बार क्या होता है कि इश्यू आपके हाथ से निकल जाता है और रेकरिंग हो जाता है, बार बार बार बार बार बार, कई महीने कई साल आपके खराब होने लगते हैं, रेजेंटमेंट और ज्यादा बढ़ती जाती है, आर्ग्यूमेंट्स और ज्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगते हैं, ठीक है। और आप एज अ कपल अपनी लाइफ में ही स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं
0: हाँ, और एक
1: और
0: एक्सटर्नल फैक्टर है जिससे आप अपनी दोनों की लाइफ में फर्क आ रहा है।
1: इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि लेट अस अज्यूम इन दिस केस दैट मदर इन लॉ इज इंटरफियरिंग अ लॉट, शी इज थिंकिंग दैट दिस गाय हैज सम इश्यूज, सम प्रॉब्लम्स, और जब उसके बेसिस पे आपकी लड़ाई बढ़ती है तो मदर इन लॉ अपनी बात को और जस्टिफाई करेंगी, फिर वो कहेंगी मैंने तो पहले ही कहा था
0: सही बात है, आप उनकी उनकी बातों पर खरा उतर रहे हैं इस तरीके से
1: जी।
0: जी
1: इसलिए उस चक्कर में एक थर्ड पार्टी हेल्प, इट कुड बी अ वेरी गुड फ्रेंड, इट कुड बी अ वाइज पर्सन इन योर फैमिली, इट कुड बी अ काउंसलर, इट कुड बी एनीवन हु इज अनबायस्ड, नॉन जजमेंटल।
0: जी
1: इसलिए आप उनमें से किसी की भी हेल्प लें, और डेफिनेटली इट इज नॉट समथिंग दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन का अगर एक लाइन में आप आंसर चाहेंगी, अपने और अपने वाइफ के रिलेशनशिप पे फोकस करें, उसको स्ट्रेंथन करें। वो जैसे आप तो आपका तो शो ही फिल्मी नुक्कड़ है,
0: जी
1: तो आप तो ऐसे दर्जनों और हजारों गाने चलाती होंगी
0: जी
1: जिसमें वो कहता है कि क्या है, बहुत गाने हैं जिसमें वो कहता है अगर हम दोनों,
0: भी अगर अगर तुम साथ हो तो बस दुनिया पार कर सकते हैं,
1: हाँ
0: तो ये तो झगड़ा है छोटा सा,
1: तुम साथ देने का वादा करो, क्या
0: तो
1: गाना है
0: मैं
1: कैसे,
0: यूं ही, वो तो मस्त
1: अच्छा मैं सुना क्या था, मतलब अगर दोनों आपस में ठीक है
0: ठीक
1: तो कोई
0: है
1: कुछ
0: तो कोई
1: हाँ, तो क्या
0: दिक्कत नहीं है
1: करेगा मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा
0: बस।
1: कोई।
0: हाँ बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात अगर मैं नटचल में मैं भी बोलूं कि आप दोनों अगर टीम हैं
1: बस
0: तो एवरी आउटसाइडर जो जो भी आपके बाहर है, इट कैन बी योर मदर फादर, इट कैन बी योर सिस्टर ब्रदर, और भी कोई बहुत क्लोज भी, लेकिन अगर आप दोनों टीम हैं तो दूसरा बंदा बिगाड़ना चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ तो
1: बिल्कुल
0: खैर इंटेंशन बिगाड़ने की होती भी नहीं है कई बार पेरेंट्स की, वो सिर्फ अपने मन की बात कर रहे होते हैं और उन्हें जो भी फियर्स होते हैं, लेकिन कोई
1: बिल्कुल
0: चाहता भी है तो भी नहीं कर सकता अगर आप दोनों एक टीम हैं तो।
1: बिल्कुल।
0: दैट्स अ
1: अपने
0: वर्ड
1: रिलेशन को जितना स्ट्रेंथन करेंगे, जितना उस पर काम करेंगे, जितनी उसमें ढूंढ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स करेंगे, तो ये तो सब कुछ भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
0: बिल्कुल ठीक बात। चलें, थैंक यू सो मच प्रशांत जी, आज भी बहुत अच्छा सेशन रहा, हमने दो तीन क्वेश्चंस लिए, टाइम इतना ही होता है, बट कोशिश रहेगी कि हम जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहे हम जितने ले पाए हम लेते रहे। प्रशांत जी की क्लिनिक का नंबर मैं एक बार फिर देना चाहूँगी, 905-405-8224, आप मुझसे भी ले सकते हैं, नंबर नहीं लिख पाए हैं। उनकी वेबसाइट रहती है iwantpeace.org, आप उस पर भी जाकर भी अपना सवाल छोड़ सकते हैं, अनॉनिमस छोड़ सकते हैं, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई आइडेंटिटी आपको रिवील करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सवाल पूछें और अगली बार आपको आंसर मिलने के चांसेस ज़रूर रहेंगे। थैंक यू प्रशांत जी, फिर करते हैं अगले हफ्ते बाद।
1: थैंक यू स्वाति जी, थैंक यू एवरीवन।

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस। लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से। आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। Genesis Markham, डूइंग लग्जरी योर वे। A proud member of Wayne's Auto Group.
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
4: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
5: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
4: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
6: फायदा उठाएं स्प्रिंग स्पेशल मॉर्गेज रेट्स एंड एक्स्ट्रा प्रमोशन का विद अमित खुराना। 5 इयर्स फिक्स्ड 4.14%, 3 इयर्स फिक्स्ड 4.19%, 5 इयर्स वेरिएबल 3.55%, प्लस कैशबैक फ्रॉम बैंक एंड स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अमित खुराना अप टू $1500। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कॉल अमित 6473412785, 6473412785 और विजिट
7: अमितखुराना.com। एट वेन्स ऑटो ग्रुप आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव। चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप, हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम, हर जर्नी को बनाए खास। वेन्स ऑटो ग्रुप, हमेशा आपके साथ। ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज। Offering 9 brands across 15 dealerships, from first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. Aaj hi visit karein waynesautogroup.com.
0: Exclusively picked. Look.

0: To advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. your prime drive time show, call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: Don Valley North Hyundai pe ho rahi hai. Zabardast Hyundai Sunday ki ultimate saving sale on May 24th. Inventory par huge bonus offers. Deals itni zabardast ki miss nahi kar sakte. Sunday, May 24th ko apne calendar mein mark kar do. Don Valley North Hyundai par hamari team baat karti hai. Hindi, Urdu, Punjabi aur Tamil mein. Visit kariye donvalleynorthhyundai.com. Woodbine Ave or Denison
2: Don
1: Street.
2: Don Valley North Hyundai, Cooper, doing business your way.
1: Member of Wayne's Auto Group.
3: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर
4: यहाँ से आपको ठाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन टेलीफोन 905-799-9400
5: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर
6: घर कहीं भी ले

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे। डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस मई 16 तक। लीज रेट्स एज लो एज 2.9% अप टू 24 मंथ्स। सेलेक्ट डेमो व्हीकल्स पर सेविंग्स अप टू $4,989 इंक्लूडेड। बेस्ट सिलेक्शन के लिए डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस जल्दी विजिट करें। जल्दी करें, ऑफर एंड्स मई 16th। विजिट donvalleynorthlexus.com टुडे। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
7: Follow us on Facebook. Filmi Nukkad, it's the free time.

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: He's breaking through the midfield.
2: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाएं डबल एंट्रीज। विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी लें और हर एक के साथ पाएं एक एक्स्ट्रा एंट्री। आज ड्राइव करें, कल जीतें। Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेन्स फ्रॉम ऑलस्टेट की मिसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेन्स एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेन्स एट 6474535353, 6474535353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 ki annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
7: Lake day ka plan tha, aur Toyota Tundra ke bina sukoon nahi, shor mila. But when you get a Tundra at your local Toyota dealer, to iski up to 11,000 pounds ki towing capacity se, aap decide karenge ki rukna kahan hai. Take advantage of red tag days. On now. Lease a 2026 Tundra 4x4 Crew Max TRD Off-Road from $172 weekly for 36 months at 4.29% APR with $5,800 down. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
6: विंटर्स में हमारे व्हीकल्स थोड़ी एक्स्ट्रा केयर मेंटेनेंस मांगते हैं और उसके लिए गो टू माय मैकेनिक ऑटो एंड टायर। सभी तरह की मैकेनिकल रिपेयर्स और टायर सर्विसेज के लिए अब वहाँ किसी भी ऑयल चेंज और सर्विसेज के साथ गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री विंटर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन। गेट अ $20 ऑफ ऑन ऑल सिंथेटिक ऑयल चेंज सर्विसेज। मिशलन टायर्स के ऑथराइज डीलर है ये। एंड यू कैन गेट अप टू $150 रिबेट जब आप 4 नए टायर्स खरीदते हैं। इंश्योरेंस से ये डायरेक्ट डील करते हैं। विजिट देयर मार्कम स्टोर एट मिडलैंड एंड स्टील्स और स्कारबरो स्टोर मिडलैंड एंड एल्समियर पर। For details, visit mymechanicauto.ca.
0: You are tuned into CMR at 5 PM with RJ Swati on Filmi Nukkad. It's the free time.

और साथ में ऑल्सो बर्थडे है जिनको जाना जाता था सुपर एक्ट्रेस के नाम से ही नहीं बट ऑल्सो एज अ जेम ऑफ ए पर्सन द फाइनेस्ट एक्ट्रेस ऑफ 50s एंड अ प्रोमिनेंट सोशल वर्कर एन इंडिपेंडेंट वुमन ट्रूली एन इंस्पिरेशन. अगर जो आप इनके बारे में पढ़ेंगे या कुछ यूट्यूब वीडियोज मैंने खोल के देखे तो वाकई बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपको इनके बारे में पता चलेंगी. नरगिस दत्त की हम बात कर रहे हैं एंड हियर इज अ सॉन्ग फ्रॉम चोरी चोरी.

0: न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
1: पेश खिदमत है आज की अहम खबरें। इसराइल के लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर फजाई हमलों के खिलाफ ईरान ने अमरीका के साथ जारी जंगबंदी मुजाकरात पर बातचीत से इनकार कर दिया। इसके बाद सदर ट्रंप ने एक बयान में कहा कि उन्होंने इसराइली वजीर आजम से बात करके उन्हें हिजबुल्ला पर हमला करने से रोक दिया है। उनका कहना था कि मेरी हिजबुल्ला के साथ भी अच्छी बातचीत हुई है और इसराइल और हिजबुल्ला एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। ईरानी वजीर खारजा का कहना था कि जंगबंदी में लेबनान भी शामिल है और खिलाफ वर्जी के नतायज के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल होंगे। वाज़ेह है कि नेतन्याहू ने इसराइली फौज को बेरूत के जुनूबी इलाकों में अहदाफ पर हमलों का हुक्म दिया था। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराकची ने इसहाक डार को फोन करके कहा है कि पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए मदद जारी रखे। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काया कालास ने कहा है कि अमरीका ईरान जंग में पाकिस्तान की सालिसी को यूरोप में कदर की निगाह से देखा जाता है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नाराज हुकूमती अरकान ने मरकजी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि इमरान खान की रिहाई के लिए मौसर तहरीक चलाई जाए। उधर अलीमा खान ने साबिक आर्मी चीफ की इमरान खान से मुलाकात की खबर को बेबुनियाद करार दे दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान ने रावलपिंडी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया पहला वनडे मैच 5 विकेटों से जीता था। इन खबरों की तफसील आप सुन सकेंगे रात 8 बजे।
2: खास खास खबरें जुबैरुद्दीन साहब आपके लिए पेश किया करते हैं। स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 416-593-0003। गैलेक्सी इंटरनेशनल एक्सचेंज का आज का रेट है 201 रूपये। डेबिट और ईमेल ट्रांसफर के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं। वहां अकाउंट नहीं है, कैश या बैंक ड्राफ्ट भी हासिल कर सकते हैं। घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए। gondalbrothers.com पे आप लॉग इन हो जाइए। आज का रेट है 201 रूपये। कॉल कर लीजिए 905-306-0000 905-306-0000। आज मंडे है। अंजुम करीज साहब एक्सलेंट के हवाले से गुफ्तगू क्या करती हैं। मॉर्गेज की मालूमात शिराज हुसैन साहब आप तक पहुंचाएंगे। कनेडियन इंग्लिश हेडलाइन 7:30 बजे, तफसीली खबरें 8 बजे, जबकि लाइव कॉल्स आपके लेंगे। और भी कुछ मौजूदात होंगे हमारी और आपकी बातें, लेकिन ये सब कुछ सुनने के लिए आप हमारे साथ रहना है अब से 9 बजे तक। मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूं। मेरे शेर पारे सामिन, माल जमा करने में इंसान जिंदगी खर्च कर देता है, आखिर वो देखता है कि उसका दामन माल से भर गया है लेकिन जिंदगी की मता खत्म हो गई है। वो सोचता है कि सब कुछ किस लिए था, ये इब्तला क्या थी, इसने क्या देकर क्या हासिल किया। जिंदा रहने के लिए सब कुछ था तो जिंदगी कहां गई, जब वक्त था माल नहीं था, अब माल है तो वक्त नहीं है। वो हैरत से देखता है अपने आप को, अपनी नाकबत अंदेशियों को, अपने माजी और अपने नामालूम मुस्तकबिल को। रात आए तो किरणें याद आती हैं। इंसान एक और मर्ज में भी मुब्तला है, खुदाई करने की ख्वाहिश ने इससे इंसानियत छीन ली है। जो इंसान न बन सका वो और क्या बनेगा। हर आदमी भागे चला जा रहा है, क्या कयामत आने वाली है, कुछ अजाब नाजिल हो रहा है। इंसान के पास मसरूफियत है, फुर्सत नहीं, उसके पास वक्त नहीं है। खुशी मिले तो हंसने का वक्त नहीं, गम मिले तो रोने का वक्त नहीं। अजाब तो यह है कि उसके पास अपनी जात के लिए भी वक्त नहीं है, वो अपने काम में मुब्तला है। काम, काम और सिर्फ काम। ये काम किस काम का जब इसके अंजाम का ही पता नहीं। इंसान जल्दी में है, उजलत में है, वो इब्तला में जकड़ा हुआ है। आसमान की तरफ देखता है तो पांव तले की जमीन निकल जाती है, जमीन की तरफ देखता है तो सर पर आसमान गिरने का खतरनाक है। इंसान क्या करे, इंसान वही करे जो उसे करना चाहिए। ये जिंदगी पहले भी थी और उसके बाद भी रहेगी। आपके होने से फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन आपके ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारिए, अच्छा वक्त गुजारिए, बेहतर वक्त गुजारिए। जब तक आप हैं, आपकी सेहत है, सभी कुछ है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ।

0: बटकड़ाही की पिकरिंग लोकेशन में आपके लिए 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता, ऐसा जायका जो आपने पहले कभी चखा ही ना हो। इसके अलावा बटकड़ाही की रिवायती कड़ाही, गोट पाए, निहारी, खोए वाले चने, स्मोकी कीमा, बटर और सेसमी नान, लस्सी और बेशुमार आइटम्स। केटरिंग के लिए स्मॉल और लार्ज ट्रेज अवेलेबल है जिसमें आपके पसंद की बेशुमार डिशेज। रेस्टोरेंट के साथ 150 लोगों तक की पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल जिसमें मेहंदी, बर्थडे, वेडिंग, फैमिली या कॉर्पोरेट इवेंट्स अरेंज किए जा सकते हैं। बुकिंग के लिए अभी कॉल कर लें बटकड़ाही 820 किंगस्टन रोड पिकरिंग 9058390002। बटकड़ाही जहां 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता।
1: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहां से लेने हैं?
2: हां, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस जहां स्पेशल सेल चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
1: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
2: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
1: दैट्स वंडरफुल।
2: वहां से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
1: ब्रैम्पटन में ये कहां पे है?
2: ऑन बवेट, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट brampton appliances.ca।
3: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
4: जी हाँ, 416-570-0157 अंजुम कुरैशी साहब के रब्ते का नंबर है। खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाए, कार एक्सीडेंट हो जाए, आप गिर जाएं, आपको टिकट मिल जाए, बिल्कुल परेशान ना हो, फ्रॉम द सीन कॉल कर लीजिए। मैक्सिमम कंपनसेशन आपको दिलवा देंगे। वेरी रिनाउंड लॉ फर्म है जिसे बहुत अरसे से फदर वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम इसके साथ काम कर रहे हैं। आपके अपनी ज़ुबान में बात करते हैं, इसी प्रोफेशन से फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम, मोर देन 2 डेकेड से इसके साथ मुंसलिक हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। जिम कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम और तमाम सुनने वालों को भी आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आने का मकसद आपको ये याद दहानी कराना कि हमारी लॉ फर्म ना सिर्फ आपके क्लेम को प्रोसेस करते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। हम अंटारियो में रहते हैं, हमारे लिए सबसे अच्छी बेस्ट बात यह है कि अगर हमारा एक्सीडेंट एट फॉल्ट हो या नॉट एट फॉल्ट हो, दोनों सूरतों में इंश्योरेंस कंपनी आपको इनकम रिप्लेसमेंट देती है। आपको अगर आपकी गाड़ी अगर आप फुल कवरेज है तो आपको उसके पैसे मिलते हैं और आपको ट्रीटमेंट के पैसे मिलते हैं और जाकर एक लमसम अमाउंट भी मिलता है। लेकिन अगर आप नॉट एट फॉल्ट होते हैं तो आपको आपकी इंश्योरेंस कंपनी भी टेक केयर करती है और थर्ड पार्टी भी आपकी टेक केयर करती है। लेकिन इन तमाम तरह चीजों को इस तरह दो लम्हे में समझना या दो लम्हे में बयान करना मुमकिन नहीं होता। ये बहुत ज्यादा जो है लंबी चौड़ी बातें होती हैं, आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ, किस तरह हुआ, क्या सरकमस्टेंसेस थे, वो आपको टिकट मिली नहीं मिली, अगर आप समझते हैं कि आप नॉट एट फॉल्ट हैं, आपके पास क्या प्रूफ है, तो ये तमाम तरह जब आपका एक्सीडेंट होता है तो एक लॉयर उन चीजों को पूरा पूछता है। और हम इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके पास कोई आता है, अगर कोई कार एक्सीडेंट होता है, आपसे कोई आके बैठ के बातचीत करता है, पूछता है कि आप ठीक हैं, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, आप उनका नंबर जरूर ले लीजिए। क्योंकि बाज़ औक़ात लोग एक्सीडेंट करके कसूर करके भी जाकर अपना बयान बदल देते हैं और जब इंश्योरेंस कंपनी को कोई विटनेस नहीं मिलता, कोई प्रूफ नहीं मिलता, तो या तो आप ना चाहते हुए भी आप एट फॉल्ट आ जाते हैं या दोनों पे 50-50 स्प्लिट कर दिया जाता है और आप बेबस होते हैं क्योंकि आपके पास कोई विटनेस नहीं है, कोई डैश कैम नहीं है। तो आजकल जो ना सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर $40 का डैश कैम मिलता है वो लगाने से आपका बहुत ज्यादा बचत होती जाती है। हमेशा डैश कैम लगाइए, अगर कोई कार एक्सीडेंट हुआ है, कोई आपके पास आया है, आप उनका नंबर ले लीजिए। और फिर जहां तक हम अपने लॉ फर्म की बात करते हैं, अरसे दराज से आपको सर्व करते हैं, मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी, किसी भी कार एक्सीडेंट में आप मुझे कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। जिंदगी रही तो फ्राइडे को फिर हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा।
4: थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अंजुम कुरैशी साहब, फ्राइडे आपसे फिर बात करते हैं। थैंक यू, नंबर नोट कीजिए 416-570-0157, 416-570-0157। रोज एक नई बात करते हैं, अब फिर अमरीकी सदर कह रहे हैं कि उनके ख्याल में आइंदा एक हफ्ते के दौरान ईरान से माहदा तय पा जाएगा। ABC न्यूज अमेरिकन चैनल है, उसको इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि माहदे के तहत जंग बंदी में तोसी की जाएगी, अब नए हुरमस को दोबारा बहरी आमदरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान से अमरीका के मुजाकरात तेजी से जारी हैं, इन्हें पैगाम में तातुल के ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं है। अमरीकी सदर का कहना था कि पैगाम की मौतली का मतलब यह हरगिज नहीं कि अमरीका फिर से फौजी कार्रवाई शुरू कर दे, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन बस सबकी दुआ यही है कि किस तरह से ये मामला हल हो जाए, मुज़ाकरात हों।

मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। मैं अक्सर सोचता हूं फूल कब तक शरीके गिरियाए शबनम ना होंगे। दिलों की उलझने बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। जमाने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम ना होंगे। अगर तू इत्तफाकन मिल भी जाए तेरी फुरकत के सदमे कम ना होंगे। हाफिज, उनसे मैं जितना बदगुमा हूं वो मुझसे इस कदर बरहम ना होंगे। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे।

0: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
1: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast corner of Pape and Martimore. Har kisam ki gaadiyon ki journal aur electrical repair ke liye tashreef laiye. Oil change, tire change, lights repair, brakes, suspension, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज, इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज्ड टायर्स भी अवेलेबल हैं, ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी. मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782, 416-466-8782. टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस, 921 पेप एवेन्यू. अलकरम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं. आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए. अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स. शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे. आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा. 9058280009. It's 905-828-0009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers, farmaish aapki, guarantee hamari.
2: बारबेक्यू टुनाइट की दूसरी लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में. 200 से ज्यादा लोगों की गुंजाइश, बड़ी पार्टीज भी आप अरेंज कर सकते हैं. बारबेक्यू आइटम्स, बिहारी कबाब, सीख कबाब, कड़ाही, बिरयानी, ताजा नान और बेशुमार डिशेस. जायका वही और खूबसूरत सेकंड लोकेशन. पार्टीज की बुकिंग या मालूमात के लिए कॉल कीजिए 9052829868. बारबेक्यू टुनाइट की सेकंड लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन Mississauga mein, 905-282-9868.
3: Apna hum safar, Global Travel and Tours.
4: Global Travel and Tours, Mississauga.

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर। कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट हैं। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं, लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 6472714147।
3: जी हाँ, 6472714147 ये शिराज हुसैन साहब का डायरेक्ट नंबर है। और ईस्ट में भी और वेस्ट में दोनों में इनके ऑफिस हैं, रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप। मॉर्गेज के हवाले से अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, रियल स्टेट की कोई मैटर्स हो, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। 6472714147 हमारे साथ मौजूद है, खुश आमदीद कहेंगे। शिराज साहब अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं?
3: बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आजकल क्या सूरत हाल है मॉर्गेज की, आसानी से मिल रही है या मुश्किल है, या आपके थ्रू आसानी से मिल जाती है?
4: बात आसानी है, मुश्किल के लिए बात यह है कि आप डील को लेके कैसे प्रेजेंट कैसे करते हैं। मेन चीज है डील को रेडी करना।
3: ठीक है,
4: बहुत ऐसे हमारे पास क्लाइंट आ रहे हैं, अभी भी आप देखें कि जो न्यू फर्स्ट टाइम बायर्स है ना, यकीन करें उनको किसी चीज का नॉलेज नहीं है, उनको इतना नहीं पता होता कि नोटिस ऑफ असेसमेंट क्या है, T1 क्या है, फर्स्ट टाइम बायर है, तो वो जब ऐसे ही पकड़ के किसी कहीं चले जाते हैं ना तो डील खराब कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि हम उनको पहले पूरा गाइड करते हैं, यार ये चीजें होती क्या, आप कर क्या रहे हैं, तो उनकी पूरी फाइल को हम रेडी करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि ये चीजें आप बैंक की रिक्वायरमेंट है, ये चीजें ऐसे चाहिए, तो वो पूरा हम उसको रेडी करने के बाद जब बैंक में फाइल भेजते हैं ना, तो शुक्र अल्लाह का कि अभी तक जितनी डील कर रहे हैं हम उनको क्लोज कर रहे हैं। आगे से फर्स्ट टाइम बार जो नए आ रहे हैं उनके लिए उनको हम गाइड करते हैं कि किस चीज समझाते हैं, तो वो इजी हो जाता है फिर अप्रूवल लेना बैंक से।
3: सही, अभी HST में कुछ रिबेट मिल रहा है, फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए तो काफी रिबेट्स हैं, लेकिन मसला सिर्फ क्वालिफिकेशन का आता है, तो क्या कम डाउन पे भी क्वालिफाई हो जाते हैं फर्स्ट टाइम होम बायर?
4: बिल्कुल, फर्स्ट टाइम हम 5% पे डील्स क्लोज कर रहे हैं, बहुत हमारी डील्स है जो 5% पे जा रही है फर्स्ट टाइम बायर के लिए। और बिल्कुल, और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, बैंक के भी प्रोग्राम्स होते हैं जिसपे फर्स्ट टाइम बायर है उनको हम क्वालिफाई करते हैं। आपके पास मल्टी प्रॉपर्टीज है, आपके पास कॉर्पोरेशन के प्रॉपर्टीज है, तो बहुत ऐसी चीजें हैं, अगेन वही नॉलेज कि बैंक ऑफर क्या करता है, बहुत ऐसी चीजें हैं जो आम लोगों को पता ही नहीं है बैंकिंग के बारे में कि बैंक कर क्या रहा है, तो वो हम उनको फिर गाइड करते हैं।
3: 6472714147 शिराज साहब के रास्ते के। अच्छा, बहुत से लोगों की रिन्यूअल आने इस साल, बहुत से लोगों की जो है रिन्यूअल होगी मॉर्गेज की, एक तो ये बताएं बहुत से लोग थे जो किसी प्रॉब्लम में बी लेंडर के पास प्राइवेट उन्होंने मॉर्गेज ली हुई थी, क्या उनके लिए कोई हेल्प हो सकती है कि वो ए लेंडर पे चले जाएं, और क्या जरूरी है कि 2-3 महीने पहले आपसे रब्ता करें ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व किया जा सके?
4: बिल्कुल ऐसी तो हम बहुत डील्स कर रहे हैं, आपको पता जो हालात चल रहे हैं, जो प्रीवियस व्यू है तो पहले भी चल रहे थे ऐसे पास में, तो लोगों ने सेकंड मार्गेजेस ली हुई है, क्रेडिट कार्ड मैक्स कर चुके हुए हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट मैक्स कर चुके हुए हैं, और हम उनको क्या करते हैं, वो जब हमारे पास आते हैं हम उनका वो सब कुछ पे ऑफ करा रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि जिसकी रिन्यूअल आ रही है वो हमसे कम से कम एक महीना हमें पहले कॉल करें, कॉल करके हमें बताया हमारी रिन्यूअल आ रही है, तो हम उनकी उनको अगर बी साइड पे हैं तो उनको ए साइड में लेके आते हैं, अगर प्राइवेट मॉर्गेज है तो उसको पे ऑफ कर रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुत ऐसे लोग हैं जो सेकंड मॉर्गेज को पे ऑफ नहीं कर पा रहे, उनके घर पावर ऑफ सेल पे जा रहे हैं। मेरे पास लोग ऐसे आते हैं, ये कहते हैं यार ये घर पड़ा हुआ है हम क्लोज नहीं कर पाते, तो हम कहते हैं यार आप छोड़ो ना, ऐसे जो घर है आपका चल रहा है उसको जाया ना करो, तो हम उनकी हेल्प करके उनके जितने मैटर मसले चल रहे हैं उसको हम क्लियर करते हैं और मॉर्गेज करा के दे रहे हैं।
3: वेरी राइट, 6472714147। बिजनेसेस भी बड़े इफेक्ट हुए हैं और बाज़ूकात उनको कुछ पैसे चाहिए होते हैं थोड़ा सा चीजें बेहतर करने के लिए, तो ये बिजनेस लोन या लाइन ऑफ क्रेडिट के हवाले से आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं?
4: बिजनेस लोन तो हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं न्यू बिजनेस के लिए, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई फ्रेंचाइज बाय करना चाह रहा है, कोई ब्रांड न्यू लोकेशन ओपन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए तो हम बैंक से लोन करा के दे रहे हैं अप टू $500,000 का। बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए अगर आपकी बिजनेस रनिंग पे है तो उनको हम ऑपरेटिंग लाइन ऑफ क्रेडिट करा के दे रहे हैं, पर्सनल लाइन ऑफ क्रेडिट है, कुछ लोन्स भी बिजनेसेस के लिए अवेलेबल है हमारे पास, तो हमें कॉल करें अगर किसी भी तरह की इनको हेल्प चाहिए लोन में लाइन में तो हम इनकी हेल्प कर सकते हैं।
3: 6472714147 رابطے کے نمبر ہیں۔ ماشاء اللہ سے آپ ایونٹ آرگنائز بھی کرتے ہیں، پروموٹر بھی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کا ایک اور شو میں نے سنا ہے، بلال سعید صاحب آ رہے ہیں 29 اگست کو، میں چاہوں گا تھوڑا سا اس حوالے سے بتا دیجیے ہمارے سننے والوں کو۔
4: بالکل، بلال سعید کا ہم شو کر رہے ہیں 29 کو، اور رائٹ آفٹر 10 دن بعد ایک اور شو کر رہے ہیں، تو بیک ٹو بیک دو شو ہے ہمارے۔
3: زبردست،
4: تو ابھی بلال سعید کا ہم نے اناؤنس کیا ہے، نیکسٹ والا ہم نیکسٹ ویک کریں گے اناؤنس۔ تو بلال سعید کے لیے ہم نے ٹکٹس آلریڈی اویلیبل ہیں، سیل پہ آ چکی ہیں ایونٹ برائٹ آرٹ سی اے پہ۔ تو بلال سعید آپ کو پتا ہمارے پاکستانی پنجابی ریپر بھی ہیں، تو ان کے گانے بڑے فیمس ہیں، انہوں نے بڑے بڑے بڑی فلموں میں گانے دیے ہیں، تو ان کا ہم شو کر رہے ہیں۔ جہاں آپ کو پتا سال میں ایک دو شو تو سال
3: کرتے ہیں، بالکل صحیح۔
4: تو انٹرٹینمنٹ کمیونٹی کے لیے اتنی اسٹریس ہے، تو یہ تھوڑا سا اسٹریس ادھر آ گیا نا تو ریلیکس ہو جاتے ہیں لوگ۔
3: بالکل ٹھیک ہے جناب، آپ اس حوالے سے بھی انفارمیشن لے لیجیے ان سے، کچھ اسپانسر کرنا چاہیں شو کو تب بھی آپ 6472714147 پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ شراز بھائی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا، اور ان شاء اللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر بات کرتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ نمبر نوٹ کیجیے، شیراز حسین، رائل فائنینشیل گروپ، 6472714147 رابطے کے نمبر 4165930003۔ آج ہم کینیڈا میں پاکستانی کمیونٹی کی ایک ایسی معروف اور محترم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جن کی خدمات کو طویل عرصے تک یاد رکھا جائے گا۔ خالد عثمان صاحب کے انتقال کی خبر نے نہ صرف ان کے اہل خانہ، دوستوں اور ساتھیوں بلکہ پوری پاکستانی کمیونٹی کو غمزدہ کر دیا ہے۔ خالد عثمان صاحب سیاست، سماجی خدمت اور فلاحی سرگرمیوں کے میدان میں ایک فعال اور مؤثر کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ وہ کمیونٹی کے مسائل کو سمجھتے اور ان کے حل کے لیے ہمیشہ پیش پیش رہتے تھے۔ خاص طور پر فنڈ ریزنگ کے شعبے میں ان کی خدمات نمایاں تھیں، جہاں انہوں نے مختلف فلاحی، تعلیمی اور انسانی ہمدردی کے منصوبوں کے لیے لوگوں کو متحد کیا اور ضرورت مندوں کی مدد کو اپنا مشن بنایا۔ چاہے پاکستان کے ہاسپٹلز ہوں یا کینیڈا کے ہاسپٹلز یا یونیورسٹیز، انہوں نے اس حوالے سے انتھک محنت کی۔ ان کی شخصیت میں خلوص، محبت، شائستگی اور خدمت کا جذبہ بہت نمایاں تھا۔ وہ ایسے انسان تھے جو لوگوں کو جوڑنے کا ہنر جانتے تھے اور جن کی موجودگی ہر محفل میں مثبت توانائی کا باعث بنتی تھی۔ ان کے دوست، ساتھی اور جاننے والے آج انہیں ایک ایسے شخص کے طور پر یاد کر رہے ہیں جس نے اپنی کمیونٹی کے لیے بے لوس خدمات انجام دی اور اپنی زندگی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں صرف کی۔ بے انتہا انرجیٹک شخصیت، ہمیشہ مسکرانے والے، آلویز اسمائلنگ فیس، ان سے مل کر انسان خود میں ایک انرجی، توانائی محسوس کرتا تھا۔ خالد عثمان صاحب اگرچہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن ان کی خدمات، ان کی یادیں اور ان کا مثبت اثر ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ان کی کمی یقیناً محسوس کی جائے گی، مگر ان کا کام اور ان کا نام آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال رہے گا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی جوائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے، درجات کو بلند کرے اور ان کے اہل خانہ اور عز و اقارب کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔

0: मोहम्मद सलमान।
1: मॉर्गेज हो तो वही जो आपके लिए हो सही,
0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
2: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888। इट्स 437-237-8888। लाइसेंस नंबर 12458।